0: काफी रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और आकाशिक हीलिंग भी आती है मुझे, करुणा रेकी, आकाशिक हीलिंग एंड पास्ट लाइफ के बारे में भी, मतलब रिग्रेशन जो बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी मुझे आता है। तो बेसिकली ये सब एक इसी लाइन में ही डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी में,
1: जी
0: और ऑटोमेटिक राइटिंग भी मुझे आती है, एंड लाइक सोल से कनेक्ट करना भी आता है। तो
1: जी
0: ये सब अलग अलग पार्ट ही हैं इसी लाइन के, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ काफी टाइम से। अब तो मुझे मेरे ख्याल से 15 साल हो गए,
1: जी
0: ऊपर ही हो गए होंगे, तो बस।
1: बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, आपने जाना कि सुनीता मैम बेसिकली एक हीलर हैं, एक चिकित्सक हैं। चिकित्सक मतलब वो जो हील करते हैं, जो हम लोगों को उचित बनाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं। बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, जाहिर सी बात है, जब आप हील करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मानसिकता के लिए कोलैबोरेट करते हैं, तो बात जिस विषय में हो रही है इस प्रोग्राम में, मैं उस विषय में आपसे पूछना चाहूंगा। बात आध्यात्मिकता की है, स्पिरिचुअलिटी की है, और जैसा मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हैं। तो आपके हिसाब से, आपके परसेप्शन से, आपकी समझ से आध्यात्म की क्या परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी?
0: स्पिरिचुअलिटी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इट्स अ पाथ। तो इसमें ये रहता है कि आप अपने आप पे काम करते हैं, मतलब कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ,
1: जी
0: मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आता है,
1: जी
0: तो जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, दिस ये एक पार्ट हो गया आपका स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। ये तो मतलब बहुत लंबी यात्रा रहती है, लंबी जर्नी है। तो ये तो जस्ट एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रही थी, कि जब हम खुद ये सोचना या कॉन्शियस होते हैं, कि अवेयरनेस होता है हमारे अंदर, बिकॉज यूजुअली लाइफ में क्या भाग दौड़ चलती रहती है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन सबका चलता ही है।
1: जी
0: इसके ओवर एंड अबाउट दैट, जब आपको लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर भी कुछ पावर है, कुछ शक्ति है,
1: जी
0: तो उस शक्ति से जब हम जानना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में हम कोशिश करना चाहते हैं जुड़ने की, तो ये एक चलने लगे हम स्पिरिचुअल पथ पे। तो यही मेरे हिसाब से तो यही है कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लाइफ लॉन्ग तो क्या, मतलब लाइफ्स की जर्नी रहती है स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली हमारा सोल इसीलिए ही जन्म लेता है ताकि हम अपने आप पे काम करते रहें। मेन पर्पस तो हमारा सोल का वही रहता है,
1: जी
0: आत्मा का, कि आत्मा की शुद्धि हो, और उसी पे ही कैसे हम अलग अलग अपने विकार जो है वो नष्ट करते जाएं। इसीलिए जन्म जन्मांतर की मेरे ख्याल से ये जर्नी रहती है, यात्रा रहती है। एंड यही है कि कब इंसान मतलब बहुत दुर्लभ से ये मानते हैं हम लोग कि ये जीवन मिलता है, हर इंसान को ये योनि नहीं मिलती इंसान की, बहुत जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उनको ये योनि में जन्म मिलता है। तो इसका हमें बहुत फायदा उठाना चाहिए इस चीज का, कि
1: जी
0: हम ही एक ऐसे हैं इंसान की जो योनि बोलते हैं, जो उस स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी और में ये पावर नहीं है, मतलब जैसे जानवर हैं, झाड़ है, पत्थर है, नदियां हैं, इनमें ये पावर नहीं होता, समझ नहीं होती। हम इंसान जब जन्म लेते हैं, वी हैव दैट पावर एंड द नॉलेज, ज्ञान जो हमें है उस प्रकृति का। तो इसे

0: हमें बहुत दुर्लभ मानना चाहिए कि हम इतने थैंकफुल रहना चाहिए कि वी आर सो हैविंग दिस प्रेशियस लाइफ,
1: जी
0: तो ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और इस पे काम करना जरूरी है मेरे ख्याल से, हर आत्मा को करना चाहिए, पर हर एक का अपना समय रहता है।
1: तो दोस्तों, आपने जाना कि कितने आसान शब्दों में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान शब्दों में सुनीता मैम ने हमें बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैम, मुझे आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने सबसे पहले कब सुना? किसने बताया आपको कि स्पिरिचुअलिटी कोई चीज होती है, कोई प्रैक्टिस होती है, एक धारा है जीवन की? सबसे पहले आध्यात्म से आपका परिचय कब हुआ?
0: मेरे ख्याल से मोस्टली जैसे हम फैमिलीज में देखते हैं, ये बचपन से ही हमारे माता पिता ही हमें बचपन से कुछ न कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं और कनेक्ट करवाते हैं उस हायर पावर से, तो वो तो आगे चल के हमें पता पड़ता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, बट मोस्टली तो ये सबके जीवन में बचपन से ही वो संस्कार डाले जाते हैं हर फैमिलीज में,
1: जी
0: तो वहां से ही स्टार्ट होता है ये बचपन से, हर फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बट मेरे तो फैमिली में मैं बोलूंगी वहीं से ही स्पिरिचुअलिटी का मुझे ज्ञान बचपन से ही रहा, नॉलेज रहा, इनडायरेक्टली हमेशा स्टोरीज वैसी सुनाई गई, गाइड किया गया, या बुक्स ला के दे दिए पढ़ लो, गाने सुनाए, मंदिर में ले जाना, तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया।
1: जी वेरी नाइस। जाहिर सी बात है, हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज हमेशा से रही है कि हमारे घर से ही हमको अध्यात्म के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम पड़ता है, और यही चीज सुनीता मैम ने भी बहुत क्लियरली बताई, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे एक प्यारा सा भजन सुनने के बाद मैं सुनीता मैम से और बातचीत करूंगा। हमारे साथ बने रहिए।

0: तो सुनीता मैम, आगे बढ़ते हुए प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या अध्यात्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को लर्न करने के लिए क्या हमें किसी टीचर की, गुरु की, किसी टीचिंग्स की जरूरत है?
1: स्पिरिचुअलिटी जैसे मैं अभी आपसे बता रही थी कि ये एक पाथ है, जर्नी है, एक पथ है। तो
0: जी
1: इसमें हर एक किस टाइम पे वो कॉन्शियस होता है आत्मा, कि उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे मैं कौन हूँ। जब वो क्वेश्चन करना शुरू करती है आत्मा, तो वो जब इस पथ पे चलना शुरू करती है आत्मा लेवल पे,
0: जी
1: तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूं से आ जाता है कि मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। अब आगे आ जाता है कि गुरु की जरूरत है।
0: जी
1: मेरा मानना ये है कि जब आप खुद अवेयरनेस में रहते हैं, तो गुरु अपने आप आपके पास आते हैं। जब आप रेडी होते हैं,
0: जी
1: तो गुरु अपने आप आपके पास आएंगे। आपको कहीं गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती,
0: ओके
1: पर हाँ, गुरु की जरूरत रहती है जब आपकी आत्मा उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो तैयार होती है कि मुझे और ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो जैसे आप अलग अलग तरीके से इंसान का अलग अलग मार्ग रहते हैं ना, कोई भक्ति मार्ग करता है, कोई कर्म योग की करता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कोई भजन जाता है करने, कोई चैरिटी में बिलीव करता है। हर एक का डिफरेंट वे है कि वो कैसा चाहते हैं, जिससे उन्हें वो पीस मिलता है। अल्टीमेटली ये इस जर्नी इज मोर लाइक पीस, पीस ऑफ योर ओन सोल।
0: जी
1: तो वो हम खोजने वही निकलते हैं पीस को। क्यों? क्योंकि मन आत्मा बड़ी दुखी है, अंतरात्मा दुखी रहता है। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, तो खोजना शुरू करती,
0: जी
1: मैं कौन हूँ, क्या करें, किधर जाएं। कोई सोचता है चलो भगवान की पूजा कर लें, हमारा थोड़ा ये तकलीफ कम हो जाएगी। कोई बोलता है मैं थोड़े बुक्स पढ़ लूं, है क्या। कोई बोलता है मैं भजन कर लूं। तो जब हम वो ढूंढना शुरू करते हैं, तो ये एक स्टार्ट होती है जर्नी की। और आगे चल के जैसे आप तैयार होते जाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से गाइडेंस गाइडेंस देने वाला, हेल्प करने वाला कोई तो ऐसा गुरु मिल ही जाता है जो आपको इस जर्नी पे आगे ले जाता है।
0: जी बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है सुनीता मैम, बतला भी रही हैं ये, और ये बहुत नेचुरल सी बात लगती है कि अगर कोई मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो जरा आसानी हो जाती है, फिर चीजें जरा इजीली समझ में आ जाती हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस की बात है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे या सोचेंगे उस बारे में, तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आप कुछ कह रही हैं मैम?
1: यही मैं बोल रही थी कि गुरु जब हमें आता है हमारे लाइफ में, तो वो उसका बहुत मतलब, अब आप समझिए कि आप और ऊपर जर्नी में जाने ही वाले हैं, आप एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करने वाले हैं। और वो गुरु के साथ से ही, एक बोलते हैं ना, गुरु ही हमें जो भव सागर से पार लगा देता है। तो वो बहुत हेल्प हो जाती है गुरु के पथ तो रहता है, पर गुरु के मार्ग में जब आजू बाजू में जो जंगल में हम जब चलते हैं, तो आपके जो भेड़ भेड़िए जो भी हैं, वो सब कोई तकलीफ नहीं देता, क्योंकि गुरु का साथ रहता है। आप आराम से वो पथ क्लियर कर लेते हैं।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। तो मैम, जाहिर सी बात है, हम लोग आध्यात्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, बिल्कुल साथ साथ ही चलता है, वो है धर्म, रिलीजन। आपके हिसाब से मैम, धर्म और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इनमें क्या फर्क है?
1: धर्म अगेन ये एक टूल है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: एक मींस टुवर्ड्स एन एंड है।
0: जी
1: तो एंड तो वही है स्पिरिचुअलिटी
0: ओके
1: सबकी, उस आत्मा से, उस सोर्स से कनेक्ट होना है। तो हमें उस ऊपर वाले में विलीन होना है। तो विलीन होने का मार्ग अलग अलग, जैसे टूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना रिलीजन के आप वो अचीव नहीं कर सकते। रिलीजन एक हेल्प हो जाता
0: जी जी
1: जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे चम्मच से खाना नहीं बनेगा या बड़े चम्मच ही चाहिए या ये, बट सही चम्मच अगर होता है तो एक आसान हो जाता है। तो
0: जी
1: मेरा मानना है कि रिलीजन का भी उतना ही काम है, उससे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। रिलीजन शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ, फिर आप भटक गए हो।
0: जी जी यू आर एब्सोल्युटली
1: तो
0: एब्सोल्युटली राइट मैम।
1: भटकना नहीं है, अगर आपने पाथ में जो आपका है वो पाथ से भटकोगे तो फिर इस वेद विवाद में ही अटके रहोगे, मेरा ये रिलीजन उसका वो रिलीजन उसका। हर रिलीजन का आप अगर ध्यान से पढ़ें, वही
0: जी
1: बोलता है सोर्स एक है, कनेक्ट उसी से होना है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। कोई रिलीजन, जहां तक मुझे पता है, हर रिलीजन में ये चीज तो रहती ही है।
0: ओके
1: तो दिस आर ऑल जस्ट लाइक अलग अलग क्रिएशन है, बट अगेन इट्स जस्ट टूल्स, यू नो, अ वे जो हमें हेल्प करता है टू अचीव एन एंड।
0: ब्यूटीफुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बताया है मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और आध्यात्म के बीच का फर्क। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से भजन का आनंद लें और फिर सुनीता मैम से बात करने के लिए हम वापस हाजिर होंगे।

0: बहुत सुंदर। एक और शब्द यहां पर मौजूद है इन्हीं इसी पूरे गुलदस्ते में, इन्हीं फूलों के साथ एक और फूल, मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अब जाहिर सी बात है जितना मैं समझता हूं छोटा मोटा, आपकी प्रैक्टिसेस में भी ध्यान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। तो क्या मेडिटेशन ध्यान किए बगैर भी, मान लीजिए मुझे मेडिटेशन नहीं आता, ध्यान लगाना नहीं आता, उस तरीके के ध्यान नहीं लगा पाता, मैं एक साधारण सा देहाती व्यक्ति हूं, तभी भी क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं बिना मेडिटेशन किए?
1: इसका मैं सिर्फ एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि आप ध्यान किसे कहते हैं, है ना, वो जानना जरूरी है। ध्यान का मतलब क्या है
0: जी?
1: मैं सरल भाषा में अगर कहूं कि जब आप किसी गार्डन में जाते हैं, आपने एक सुंदर सा फूल देख लिया जो आपको पसंद है
0: जी,
1: और आप उस फूल पे ध्यान से देख रहे हो बड़े प्यार से और उसका आनंद ले रहे हैं, है ना, कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कितना सुंदर है, इतना पीसफुल लग रहा है, इतना, मतलब काफी टाइम से मैंने इतना सुंदर फूल नहीं देखा, उससे नजर नहीं हटती। अब आप मुझे बताइए उस टाइम पे आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं? नहीं आते,
0: नहीं आते हैं, उस वक्त कुछ नहीं आता,
1: आप जस्ट फोकस्ड हैं उस पे और एक सेंस ऑफ पीसफुलनेस है, ब्लिस है, शांति है।
0: करेक्ट,
1: तो ये एक मेडिटेशन है।
0: ओके
1: इसे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन क्या होता है, जब हम उस स्टेट में रहते हैं जहां हम अपने मन को शांत कर पाते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई गाना सुन लीजिए और आपको बहुत मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पीसफुल लग रहा है, कितने टाइम बाद इतना अच्छा गाना सुनने मिला, कुछ म्यूजिक सुन लिया, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज जस्ट अ वे जिसमें आपको बहुत, और इससे आपका कनेक्शन हो रहा है सोर्स से। ये एक एग्जाम्पल बेसिक लेवल पे मैं आपको दे रही हूँ, फिर वो चाहे आप भक्ति के मार्ग के करें, भजन कर लें, जब हम भजन भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं तो हम उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं ना, जहाँ बिल्कुल ब्लिसफुल लगता है, पीसफुल लगता है।
0: जी जी, यू आर सो एब्सोल्युटली।
1: अब रहा आपका क्वेश्चन कि मेडिटेशन
0: किए बगैर, जी
1: हाँ, अब ये तो मैं बता दिया कि मेडिटेशन के बगैर नहीं, आप कर ही रहे हैं मेडिटेशन, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में आपका मेडिटेशन हो रहा है, आपको पता नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट ये है कि क्यों करना चाहिए और क्या है इसका, उसका मैं ये बोलूंगी कि ये भी एक अनदर एग्जांपल मैं दूंगी कि आप अपने आप को समझिए, आप एक लैम्प है।
0: ओके,
1: ठीक है, अब लैम्प है तो आपको वायर तो डालनी पड़ेगी ना प्लग में,
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: स्विच भी ऑन करना पड़ेगा, तभी तो अंदर से पावर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और फिर लैम्प में लाइट आना शुरू होती है। तो ये मेडिटेशन उसी तरह काम करता है कि हमें उस सोर्स से पावर मिलता है
0: जी,
1: शक्ति मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं।
0: ओके,
1: और उसमें हमारी आत्मा को तृप्ति फील होती है और उसमें से हमारे लाइट आना शुरू होती है, तो आत्मा शाइन होना शुरू होती है। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप एक लैम्प है।
0: ऑलराइट जी,
1: तो ये है। तो जब मेडिटेशन, मेरे ख्याल से कि अलग अलग वे होते हैं, बट जैसे हम, जैसे भी हम अपने, मतलब सोल लेवल पे, आत्मा लेवल पे जब हम कनेक्ट करते हैं, जहां हमें पीसफुल लगता है, बहुत मन शांत रहता है, माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है, ये भी एक मेडिटेशन ही है।
0: ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पिक्चराइज करके, बिल्कुल जैसे एक एक एक फिल्म जैसी दिखा दी कि किस तरीके से आप एक मेडिटेटिव स्टेज में होते ही हैं, फिर आप चाहे महसूस करें उसको या ना करें, ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने बात बताई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो दोस्तों बस एक प्यारे से भजन को सुने और फिर वापस से इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी से भरपूर भरी हुई बातों के लिए हम सुनीता मैम के पास वापस हाजिर होते हैं।

0: बहुत सुंदर सुनीता मैम, आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और जितना भी आप स्पिरिचुअलिटी को समझती हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी अपना लेने से या आध्यात्मिक हो जाने से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है? मतलब अपने पर्सनालिटी में, अपने चरित्र में, अपनी शख्सियत में, अपनी जिंदगी को जीने के लिए? तो सवाल यह हुआ मैम कि क्या आध्यात्म हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर कुछ असर डालता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, 100%। क्योंकि आध्यात्म में इसमें क्या रहता है कि जब आप सबसे पहले ना अवेयरनेस मोड में रहते हैं, ठीक है, आप अवेयरनेस मोड में रहते हैं तो आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना होता है कि मेरे पास ये क्या थॉट आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है।
0: जी।
1: तो आप उस अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन फोकस करते हैं, एज अ आउटसाइडर साइड में खड़े रहते हैं आप अपने आप को देखते हैं कि मेरे दिमाग में ये

0: थॉट आ रहा है, मेरे दिमाग में ये सही आ रहा है, मेरे दिमाग में ये गलत आ रहा है, जब हम ये करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, थॉट से ही तो बिल्ड होता है ना कि आपके जो एक्शंस हैं, तो
1: जी
0: द बिगिनिंग इज थॉट, थॉट से आता है एक्शंस, एक्शन से आ जाता है आपका कैरेक्टर, सही है। तो ये तो सभी को पता है, वो कैरेक्टर से फिर आपके थॉट से आ जाता है, एक्शंस एक्शन से आ जाता है, हैबिट हैबिट से आ जाता है आपका कैरेक्टर। तो द फर्स्ट स्टेप इसी का यही रहता है कि जब आप अवेयरनेस में हैं, आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, है ना।
1: जी
0: जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, शायद मैं इसको थोड़ी और तरीके से अच्छे से हैंडल कर ली होती सिचुएशन, शायद मेरे को थोड़ा शांत होके कुछ और वे में भी हैंडल कर लेना चाहिए था, या किसी से जेलसी आ गई, हाँ किसी से। अब आपको एज ए ह्यूमन बीइंग रियलाइजेशन तो होता है कि गुस्सा आ रहा है, जेलसी है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सब हमारे विकार हैं जिस पे हम वर्क करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे तो आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स और ये नहीं एकदम नॉन एग्जिस्ट हो जाते हैं, बट आप अवेयर हो जाते हैं और आप इस पे काम करने लगते हैं। जब आप इस पे काम करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, तो जब आप अपनी गलतियां शुरू कर देखना शुरू करते हैं, मेरे से गलती हो गई, और हम अपने आप को कितनी जल्दी से माफ कर देते हैं ना, अरे गलती हो गई छोड़ दो, जानबूझ के नहीं किया, बट अगर किसी और ने वही गलती कर ली, इतना गुस्सा आ जाता है, इतनी गलती कैसे चल रही। तो जब हम अवेयरनेस मोड में रहते हैं, तो हम वो रियलाइज करते हैं कि जब मैंने गलती की तो माफ कर दिया, सामने वाले से भी गलती हो गई, जाने दो। तो यू बिकम एम्पैथेटिक, एम्पैथी
1: जी
0: तो रहती है, एम्पैथी आ जाती है, तो सामने वाले के जरिए से आप उनको, सामने वाले को भी अपने तरह देखने के, अपने प्लेस में रख के देखना शुरू कर देते हैं। तो वो उस हिसाब से क्या आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं, आपके आसपास में देखिए फिर अच्छा माहौल रहेगा। तो इस तरह से जो आप बोल रहे हैं पॉजिटिविटी में कैसे काम करता है, ये जस्ट एक मैं बता रही थी कि हाउ इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी नॉट ओनली इन यू बट इट हेल्प्स द होल एटमोसफियर, पूरा पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प करता है।
1: बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मैम आपने। जाहिर सी बात है, आध्यात्म चीज ऐसी है, एक प्रैक्टिस इस तरह की है कि हमें पॉजिटिव रहने में हमेशा बहुत बहुत मदद उससे मिलती है। ये बात प्रैक्टिस करने पर आपको महसूस होगी दोस्तों। एक बार ध्यान लगाइए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए सुनीता जी, एक और छोटे से भजन का आनंद लेने के बाद हम वापस आते हैं।

0: सुनीता मैम, अगर इस प्रोग्राम को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर कोई समझ जाए कि ऑल राइट, आध्यात्म मेरे बहुत काम की चीज है और मुझे इसको अपना लेना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप किसी भी साधारण व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगी? 1, 2, 3 ये प्रैक्टिसेस करिए या ये काम कर लीजिए सिंपल से, और आध्यात्म का फायदा या आध्यात्म का जो महत्व है आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में, तो वो क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे?
1: सजेशंस देखिए, ये तो इसमें काफी हर एक की अपनी इंटरेस्ट की लेवल भी रहती है, कितने जने स्टोरीज पढ़ना चाहेंगे, कितने जने बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बट एक सिंपल सी चीज मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आप एक जर्नल रखिए और एट द एंड ऑफ द डे उसमें जो दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ, जिसके लिए आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू यू नो यूनिवर्स, तो वो आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए। ये एक बहुत सिंपल सी स्टेप है बट ये आपको बहुत हेल्प करती है कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। जैसे आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने से, तो एक थैंक्स रहते हैं ना हमेशा के
0: जी।
1: भगवान ने मुझे ये अच्छा किया, थैंक यू सो मच गॉड। तो जब हम उस मोड में रहते हैं तो वो एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस से हम चालू करते हैं, एक ये हो जाता है। ऑफ कोर्स बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग,
0: करेक्ट जी जी जी,
1: दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं यही बोलूंगी, ट्राई टू स्टे कनेक्टेड मोर विद नेचर, जितना हो सके आप प्रकृति से कनेक्टेड रहिए और ग्राउंडेड रहिए। वॉक करिए इवन ऑन द ग्रास विदाउट योर चप्पल, दीज आर द बेसिक्स जो मैं बोलूंगी कि ये सब करना ही चाहिए। थोड़ा आप अपने योगा करिए, लोम विलोम प्राणायाम करिए, ये प्रैक्टिसेस अपने स्टार्ट करिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। डू सम प्रेयर्स, स्टार्ट फ्रॉम देयर, रीड सम स्टोरीज, व्हाटएवर यू रीड सम मॉरल स्टोरीज,
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड, यू नो, वर्क ऑन योरसेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन, ट्राई टू हेल्प अदर्स, दिस इज द बेसिक थिंग्स यहाँ के आप स्टार्ट करके फोकस करिए। एंड उसके आगे आप चलना चाहें तो ऑफकोर्स यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन एंड यू कैन डू सम चैरिटी, यू कैन डू सम प्रेयर, एंड आपके आगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, ऊपर वाला अपने आप गाइड करेगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बिल्कुल ही सीधी सीधी सी सच्ची बात दोस्तों। बहुत सिंपल मेथड्स, बहुत सिंपल तरीके मैडम ने बताए हैं, जो मुझे समझ में आया और मेरे काम की चीज लगी वो ये है कि हमेशा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, याद रखिए कि आप किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू कहते चलिए। आध्यात्म का ये तरीका भी बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें चीजें बताई। जाहिर सी बात है, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं तो ये चीजें आपकी रोज की प्रैक्टिस में हैं, तो बहुत आसान तरीकों से आप किसी को भी बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इनको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच इन कमिंग टू आवर प्रोग्राम, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट वॉज माई प्लेजर, थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। म्यूजियम से शुरू हुई कहानी, क्यूरियोसिटी की पावर। दोस्तों, कभी आप किसी ऐसे म्यूजियम गए हैं और वहां किसी एक छोटी सी लाइन ने आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस किया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कभी एक छोटी सी कहानी ने आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया हो? आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी

टेलर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन एक म्यूजियम में पड़े हुए एक सच से बदल दिया। नाम है अरविंद विजय मोहन। उनकी कहानी सिंपल सी लगती है, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है। एक वक्त था जब उनका इंस्टाग्राम भी बाकी लोगों की तरह था। ट्रैवल के फोटोज, लग्जरी प्लेसेस, खूबसूरत विजुअल्स, सब कुछ अच्छा था, पर मीनिंगफुल नहीं। फिर एक दिन वो जर्मनी के एक म्यूजियम में गए, मर्सिडीज म्यूजियम। वहां उन्होंने पढ़ा मर्सिडीज नाम एक्चुअली एक छोटी सी लड़की का नाम था। एक फादर ने अपनी बेटी के नाम पर कार का नाम रखा था। एक बिजनेस डिसीजन के पीछे एक इमोशनल कहानी थी, और बस यहीं से उनकी सोच बदल गई, पूरा यू टर्न ले लिया समझो। उन्होंने महसूस किया हर चीज के पीछे कहानी जरूर होती है। हर ब्रांड, हर बिल्डिंग, हर इन्वेंशन किसी इंसान की एक कहानी ही तो है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उनकी क्यूरियोसिटी की जर्नी। उन्होंने डिसाइड किया कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटोज नहीं डालेंगे, कहानियां बताएंगे। और आज उनका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो इंसाइट होता है, मीनिंग होता है। वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ब्रांड्स को ह्यूमन बना देते हैं, और फैक्ट्स को इमोशनल बना देते हैं। और सबसे खास बात, वो हर कहानी के बाद एक सवाल छोड़ देते हैं, हम अपनी कहानी कैसे बता रहे हैं, सोच कर देखिए। क्योंकि सच ये है, हर इंसान एक ब्रांड ही तो है, हर इंसान की एक स्टोरी है। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस स्टोरी को समझते हैं और कुछ नहीं। अरविंद कहते हैं स्टोरी सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, स्टोरी डायरेक्शन देती है। अगर आप अपने पास्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। सोचिए, अगर मर्सिडीज सिर्फ एक कार होती बिना किसी कहानी के, क्या वो इतनी आइकॉनिक होती? अगर कोई लीडर सिर्फ डेजिग्नेशन होता बिना स्ट्रगल की कहानी के, क्या लोग उसे कनेक्ट करते? नहीं। हम फैक्ट से इम्प्रेस नहीं होते, पर कहानी से कनेक्ट जरूर होते हैं। और यही यही अरविंद का कोर मैसेज है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो, सरफेस के थोड़ा नीचे देखो। और इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है, और उनका इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है कि दुनिया बोरिंग नहीं है। हमारी नजर बोरिंग हो जाती है, जब हम देखना सीख लेते हैं तो हर चीज में कहानी मिल ही जाती है। एक बिल्डिंग, एक नाम, एक पुराना सा बोर्ड, सब में हिस्ट्री छुपी हुई है। और शायद इसीलिए उनके फॉलोअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो सोचने लगते हैं। दोस्तों, आज का सवाल मेरा आपसे है, आपकी कहानी क्या है? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आज कोई आपकी बायोग्राफी लिखे तो उसमें सिर्फ डेजिग्नेशन होगा या कोई जर्नी भी होगी, कोई किस्सा भी होगा? क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, क्लैरिटी देती है। और जब क्लैरिटी आती है तो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ जीना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि कहानियां हर जगह हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। देख के देखिए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

नरेटिव का जाल, मीडिया सच नहीं सच का फ्रेम दिखाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सच क्या होता है? और जो हम कहते हैं वो सच होता है या सच का सिर्फ एक हिस्सा होता है? मीडिया हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन मीडिया सच को कैसे दिखाता है वही असली खेल है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हेडलाइन आए प्रोटेस्टर्स ने सिटी को ब्लॉक किया, और दूसरे आए सिटीजंस ने जस्टिस डिमांड की। इवेंट सेम है, लोग सेम है, रोड वही है, बस शायद शब्द बदल गए, फ्रेम बदल गया और आपका रिएक्शन भी आई एम श्योर बदल गया। यही कल्चरल मैनिपुलेशन का पहला बीज है, सच को छुपाना नहीं सच को एंगल देना। एजेंडा सेटिंग, जो दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। 1970 में कम्युनिकेशन रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मीडिया लोगों को यह बताता है कि सोचना है, मीडिया लोगों को यह बताता है कि किस बारे में सोचना है। और अगर 10 दिन तक टीवी पर सिर्फ क्राइम दिखाया जाए तो लोग कहेंगे देश अनसेफ है, चाहे क्राइम रेट स्टैटिस्टिकली कम हो रहा हो। अगर 15 दिन तक इकोनॉमी की ग्रोथ हेडलाइन बने, लोग कहेंगे देश तो प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे उनके घर का बजट टाइट ही क्यों ना हो। हम अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस से कम, मीडिया के रिपीटेशन से ज्यादा बनाते हैं। अब थोड़ा सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा कलेक्टिव इमेजिनेशन को डिजाइन करता है। हॉलीवुड ने 1940s एंड 50s में अमेरिकन सोल्जर को हीरो बनाकर वॉर को मॉरल ड्यूटी के रूप में प्रेजेंट किया। कोल्ड वॉर के दौरान विलेन का एक्सेंट अलग होता है, कलर ग्रेडिंग डार्क होती है, म्यूजिक टेंस होता है, आपका दिमाग स्लोली डिसाइड करता है कि ये लोग थ्रेट हैं। आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, फ्रेम ने आपके लिए जरूर डिसाइड किया। इंडिया में भी 70s 80s के दौरान एंग्री यंग मैन का राइज हुआ। सिस्टम करप्ट है, हीरो सिस्टम से लड़ता है, ऑडियंस क्लैप करती है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का सिनेमैटिक आउटलेट था। सिनेमा इमोशन को आइडियोलॉजी में बदलने का सबसे सटल तरीका होता है। सबसे साइलेंट वेपन रिपीटेशन। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, वो रिपीट होती है। एक इमेज को 50 बार देखिए, वो नॉर्मल लगने लगेगी। एक स्टीरियोटाइप को बार बार सुन लीजिए, वो जोक बन जाएगा, फिर ट्रूथ बन जाएगा। सच और कहानी का सच डिफरेंस ही नहीं रहता है। 1990 के एड्स याद कीजिए, फेयरनेस क्रीम इक्वल्स टू सक्सेस। शादी के रिश्तों में गोरी प्रेफरेंस, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग थी। और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्शन एस्पिरेशन बन गया। कल्चर को चेंज करने के लिए लॉज नहीं, विजुअल्स रिपीट किए गए। और अब आते हैं हमारा सबसे फेवरेट और सबसे नया एजेंडा, सोशल मीडिया एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। अब आज मीडिया सिर्फ टीवी स्टूडियो में तो नहीं है, वो आपके हाथ में है हर समय। लेकिन यहां एक नया प्लेयर है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल व्यू देखेंगे आपको 20 और मिलेंगे, अगर आप एक आउटरेज क्लिप देखेंगे आपको एक्सट्रीम वर्जन्स मिलेंगे। इसको कहते हैं एको चेंबर। आपको लगता है दुनिया आप जैसे सोच रही है, असल में एल्गोरिथम आपको फिल्टर बबल में रख के दुनिया दिखा रही है। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हैं, असल में आप एक क्यूरेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, एक पॉलिटिकल थिंकर ने टर्म दिया था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इसका मतलब पब्लिक को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता, कभी नहीं। पब्लिक को स्लोली कन्विंस किया जाता है कि जो हो रहा है वही सही है। रिपीटेटेड एक्सपर्ट पैनल्स, रिपीटेटेड ग्राफिक्स,
रिपीटेटेड नरेटिव्स, कहानियां, किस्से, लोग रेजिस्ट नहीं करते, लोग अग्री करने लगते हैं। कल्चर को फोर्स से नहीं, फ्लो से बदला जाता है। विलेन बनाना, हीरो बनाना, मीडिया किसी को भी विलेन बना सकती है, किसी को भी हीरो बना सकती है, वो भी रातों रात। क्लोजअप शॉट्स, सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, सिलेक्टिव फुटेज, और हीरो सॉफ्ट लाइटिंग, बैकग्राउंड में अपलिफ्टिंग स्कोर, पॉजिटिव कमेंट्री। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग का अडिक्ट है, हम फैक्ट्स नहीं स्टोरीज कंज्यूम करते हैं, और जो स्टोरी कंट्रोल करता है वो परसेप्शन कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या मीडिया हमेशा गलत है? नहीं, मीडिया पावरफुल है, ताकतवर है, और पावर न्यूट्रल होती है, उसे कैसे हो वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यूअर क्रिटिकल नहीं होता, सवाल नहीं पूछता, अपनी सोच नहीं इस्तेमाल करता, जब हम हेडलाइन शेयर कर देते हैं बिना सोर्स तक चेक करे, जब हम वायरल क्लिप पर रिएक्शन दे देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट देखे। कल्चरल मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होता है जब ऑडियंस पैसिव हो। दोस्तों, सच को झूठ बनाना मुश्किल है, लेकिन सच को फ्रेम करके आधा सच बनाना आसान है। आज जब आप न्यूज देखें, फिल्म देखें या इंस्टाग्राम की रील देखें, एक सवाल जरूर पूछेगा, मुझे क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि नरेटिव का जाल तब टूटता है जब देखने वाला जागता है। जाग कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: जब प्रोडक्ट गलती से फ्लोट करने लगे, कोई और कंपनी पैनिक करती, जीनियस ब्रांड बोल उठे, देखिए ये पानी पर तैरता है। लेसन, बिजनेस में मिस्टेक भी फीचर बन सकती है।

बोरोलिन, एक हरी डिब्बी, एक देसी दास्तां। दोस्तों, आज मैं आपको किसी ग्लैमरस कॉस्मेटिक ब्रांड की कहानी नहीं सुनाने वाली, ना कोई फिल्मी इंडोर्समेंट, ना कोई फ्लैशी एड कैंपेन। आज की कहानी एक छोटी सी हरी टिंकी डिब्बी की है, जो शायद आपके घर में जरूर होगी, और अगर नहीं है तो कभी ना कभी तो जरूर रही होगी। नाम है बोरोलिन। हाँ, वही बोरोलिन जिसकी खुशबू आते ही बचपन की याद आज भी ताजा हो जाती है। शुरुआत 1930 में अंग्रेजों का दौर था। साल 1930, इंडिया अभी आजाद नहीं हुआ था। बाजार में ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। देसी चीजें बनाना एक हिम्मत का काम था। तब कोलकाता की एक व्यक्ति गौर मोहन दत्ता, इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडियन एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाए। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जीडी फार्मास्यूटिकल्स, और वहां से पैदा हुई बोरोलिन। नाम भी इंटरेस्टिंग है, बोरो आया बोरो एसिड से, जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ओलिन आया लिनोनिन से, जो स्किन को नरम बनाता है। मतलब नाम के अंदर ही फॉर्मूला छिपा है भाई। सिर्फ क्रीम नहीं, स्वदेशी सोच। उस टाइम बोरोलिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक मैसेज थी, अपना बनाओ अपना लगाओ। फॉरेन क्रीम्स के सामने एक देसी जवाब, सिंपल ग्रीन डिब्बी, सीधा सा डिजाइन, कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने लोगों का दिल जीत लिया सालों तक, शतकों तक। वो पहचान वाली खुशबू, आपने नोटिस किया है, बोरोलिन की एक खास स्मेल होती है, थोड़ी मेडिसिनल, थोड़ी कंफर्टिंग। कई ब्रांड्स टाइम के साथ फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, पर बोरोलिन ने अपनी ओरिजिनल खुशबू ऑलमोस्ट वही रखी है, क्योंकि वो समझ गए थे प्रोडक्ट सिर्फ स्किन पर नहीं लगता, यादों पर भी लगता है। दादी की संदूक में, माँ के पर्स में, स्कूल के बाद घुटने की चोट पर, हर जगह एक ही क्रीम, बोरोलिन। बिना शोर के पॉपुलर हुई बोरोलिन। आज के जमाने में ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, एड्स, सब कुछ चाहिए। पर बोरोलिन का असली एडवर्टाइजमेंट क्या था आप जानते हैं? लोग, एक घर से दूसरे घर तक, एक माँ से दूसरी माँ तक, वर्ड ऑफ माउथ। जब प्रोडक्ट सच में काम करता है तो लोग खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। मुश्किल दौर में भी साथ दिया। 1947 का पार्टीशन बिजनेस के लिए टफ टाइम था, पर बोरोलिन का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत थी। छोटी सी कट, फटी हुई स्किन, सर्दी में फटी हुई एड़ियां, बोरोलिन हर घर का एक परमानेंट मेंबर बन चुकी थी। पैकेजिंग जो बदली नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में इतने सारे नए एंटीसेप्टिक क्रीम्स आए, मॉडर्न ट्यूब्स, ग्लॉसी पैक्स, स्टाइलिश ब्रांडिंग, लेकिन बोरोलिन आज भी अपनी हरी टिन में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी चेंज करना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो टिन सिर्फ कंटेनर नहीं है, वो आइडेंटिटी है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे घर में एंटीसेप्टिक क्रीम है, अक्सर जवाब होता है हाँ बोरोलिन है। ये होता है ब्रांड रिकॉल, जब प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम ही ब्रांड बन जाए। बंगाल में तो बोरोलिन लोग घर का हिस्सा मानते हैं, शादी के सामान में, ट्रैवल बैग में, विंटर के टाइम बेडसाइड टेबल पर, सभी जगह जानी जाती है। 100 साल का सफर, लगभग एक सदी होने को आई है। ना अग्रेसिव मार्केटिंग, ना कोई सेलिब्रिटी फेस, सिर्फ एक चीज, भरोसा। और शायद इसीलिए बोरोलिन एक एग्जाम्पल है कि ब्रांड लाउड होने से नहीं, रिलायबल होने से बनता है।
दोस्तों कभी कभी सबसे सिंपल चीजें सबसे ज्यादा टिकती हैं। हरी भरी डिब्बी, एक सिंपल फॉर्मूला और एक देश की यादें। बोरोलिन सिर्फ क्रीम नहीं, वो कंटिन्यूटी है, वो रिमाइंडर है कि असली वैल्यू पैकेजिंग से नहीं क्वालिटी से आती है। तो अगली बार जब आप बोरोलिन लगाएंगे

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: नए ब्रांड्स, पैकेजिंग ग्लॉसी, एड फ्लैशी, इन्फ्लुएंसर रेडी। पुराने ब्रांड्स, हम 80 साल से खड़े हैं, तुम इंस्टाग्राम संभालो, हम भरोसा संभालते हैं। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते।

बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

भी सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हम झोली। सबसे अच्छी

0: तेरे की, इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM छावा की आवाज खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर रोज शाम को 6 से 8 खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुनते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते हैं। किसान साथियों, वक्त आ गया है हमें पर्यावरण के अनुरूप खेती करने का। बदलते इस पर्यावरण में हमें हमारी मृदा का, हमारे पर्यावरण का, हमारी फसलों का और हमारे स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारा किसान भली भांति वाकिफ है, दिन प्रतिदिन जिन रासायनिक दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं वह न केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारी फसलों को, हमारी कृषि भूमि को, हमारे जल स्रोतों को, हमारे

0: पर्यावरण को भी दूषित करता है। इसलिए किसान साथियों, हमें यहाँ पर जरूरत है एक बदलाव की, हमें जरूरत है प्राकृतिक खेती की, हमें जरूरत है जैविक खेती की। किसान साथियों, आज पुनः हम आपके सामने हाजिर है कुछ और नई कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बरसात में होने वाली सब्जियों को लेकर और कृषि स्वरोजगार योजना के ऊपर। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
0: किसान साथियों, आइए जानते हैं बरसात की खेती और कृषि शिक्षा स्वरोजगार क्या होता है।
3: जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं
4: जी।
3: और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ है, इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से। और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड बाजार में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं।
4: तो बहुत सारी वैरायटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
5: बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें, क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है, जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है। इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी। इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी और अरका अनामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अरका, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जून के अंत तक मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है, इसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है।
0: किसान साथियों, अभी आपने बरसात में की जाने वाली सब्जियों के बारे में जाना, आपने जाना कौन सी उत्तम किस्म की, उत्तम बीजों के बारे में भी साथ ही आपने जाना कैसे हमें जल भराव आदि जो समस्या है उनसे भी हमें कैसे उनको बचाकर रखना चाहिए आदि जानकारियों को जाना, और इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं, कृषि स्वरोजगार क्या है?
6: देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे से अधिकतम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहां उसे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफी परिवर्तन आ गया है। वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है, कौन से बाजार में बेचना है उसके लिए एक स्किल, एक जानकारी की जरूरत होती है, इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी चेंजेज आ गए हैं। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज्यादा कम शिक्षित लोग हैं और ये अशिक्षित लोग हैं जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं। वो अपने खेत पे उनका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफी, और क्योंकि हमने अधिक से अधिकतम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, नवोन्मेष कृषि बनानी, इसके लिए हमें कृषि के जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं, उनको एक तरह से हमें कहेंगे कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है।
4: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है, और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है, और ऐसे में इन चीजों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कृषि में जहां अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
7: कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, हमारी जो कृषि है वो न केवल आजीविका का साधन बनी हुई है बल्कि हमारे देश के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाती है। तो किसान साथियों, हमें हमारी जो कृषि है उसमें हमें उन्नति उसमें लानी है, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। हम जानते हैं हमारा किसान सदियों से कृषि करते आया है, बिना किसी शिक्षा के हमारा किसान खेती करता आ रहा है, परंतु बदलते इस समय में हमें बहुत जरूरी है हमारे ज्ञान का आदान प्रदान करने की, हमारे ज्ञान का साझा करने की, हमें दूसरों से सीख लेने की, हमें कैसे हमारा दूसरा किसान जो एक उन्नत किसान है, एक सक्षम किसान है, वो अपने खेतों में कौन सी पद्धति अपना रहा है, कौन सी नई नई खोजें उन्होंने अपने अपने खेतों में की है, इन सारी चीजों को जानने की आवश्यकता है, जिससे हम जितना हमारे ज्ञान को हम जितना साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही हम हमारी कृषि में एक नया बदलाव ला सकते हैं और हमारी आय के स्रोतों में भी हम एक बदलाव ला सकते हैं। साथ ही
6: कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें, तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में। तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है, तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, उसको आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है। और उसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दें।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर हम हमारे किसान का एक सवाल था, उससे हम लेते हैं कि बारिश के समय में वह कौन सी फसल लगा सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ फसलें अपने खेतों में लगाई हुई है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को वो जानना चाहते हैं, तो आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
3: आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बरसात का मौसम है, खासकर खरीफ का मौसम है, ये बहुत ही उपयुक्त समय है और हम इसमें बैंगन, मिर्च, टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित प्रजाति है और आपके आसपास जो भी अनुमोदित प्रजाति है उसका चयन करें, और इसके लिए सबसे पहले आपने नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी को आप वायरल फ्री, वायरस के प्रति अवरोधी प्रजाति का भी चयन करें, साथ ही साथ उसको उगाते समय आप इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में उगाते हैं तो अच्छी नर्सरी तैयार होगी, और उसको आप 25 से 30 दिन के बाद आप अपने जो मुख्य खेत है उसमें आप रोपित कर सकते हैं। रोपित करने से पूर्व आप विशेष सावधानी रखें कि बरसात का मौसम है तो उसको आप 15 सेंटीमीटर उठी हुई मेड़ों पर ही आप उसकी रोपाई करें।
0: जी, जी। किसान साथियों, साथ ही साथ आइए पूछते हैं करेले की खेती के बारे में। हमारे एक किसान भाई ने हमें करेले की खेती को लेकर भी कुछ जानकारियों को के लिए हमें आग्रह किया था, तो आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय और जानते हैं करेले की खेती के ऊपर।
3: की जो वैरायटी है पूसा दो मौसमी और पूसा सदाबहार है, आप इसका आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी पूसा की बहुत अच्छी वैरायटी पूसा औषधि है, जो कि आप इसको महाराष्ट्र और उस क्षेत्र के लिए भी अनुमोदित है, तो आप इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। आप इसके लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपने जहां से भी बीज लेना है, एक तो विश्वसनीय संस्था होना चाहिए, साथ ही साथ उसका उपचार अवश्य करेंगे, और उसको जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप मुख्य खेत में जो है नालियों में, जो आपकी नाली होगी उन नालियों में आप 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लगाएंगे, साथ ही साथ क्योंकि बरसात के मौसम में पानी खड़ी होने की संभावना रहेगी, तो आप इसको मचान सिस्टम में ले जाएंगे तो और बेहतर खेती कर सकते हैं।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: जी, इस टाइम जो है खासकर जो बरसात की मौसम है और खरीफ का मौसम जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए जो मुख्य रूप जो खेती की जाती है कद्दू बेल वाली सब्जियां, जिसमें हम घिया, तोरई, करेला, खीरा, पेठा, अन्य और भी हमारे जो खरबूज तरबूज का है उसको भी हम ले सकते हैं। इन सब्जियों को लेने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके क्षेत्र के अनुसार से, क्योंकि हर क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र है
4: जी।
3: और वहाँ से जो भी किसान भाई है अगर खरीफ मौसम में बेल वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उपयुक्त जगह से जो कि विश्वसनीय संस्था हो, क्योंकि आजकल ये देखने को मिलता है कि एक बार बीज किसान अपने कहीं से भी बाजार से ले लेते हैं और उनका बीज अक्सर खराब निकलता है जो कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है
4: जी, जी, जी।
3: तो पहले श्योर करना है कि हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और इसमें वायरल और कीट पतंगों का ज्यादा प्रकोप होता है, तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रजाति है जो कि वायरस के प्रति अवरोधी है, बीमारियों के प्रति अवरोधी है, तो उन प्रजातियों का हमने चयन करना है और उसका अच्छी तरीके से बीज का उपचार करके और जो भी अनुमोदित, जैसे हमने करेला में 50 सेंटीमीटर है, वैसे घिया तोरी वगैरह में जो दूरी रखते हैं 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भी हम रखते हैं
4: बिल्कुल,
3: और एक नाली से जो दूसरी नाली की दूरी हम रखते हैं, ये पौधों की बढ़वार, क्योंकि बरसात में पौधों की बेल वाली सब्जियों की बढ़वार ज्यादा होती है
4: जी,
3: तो उनके लिए 4 मीटर के नाली से नाली की दूरी कम से कम रखते हैं। साथ ही साथ आपने बेल वाली सब्जियों को ये कोशिश करें कि उसको मचान सिस्टम में बांस और रस्सी के सहारे उसको जमीन से ऊपर उठा के मचान सिस्टम में करते हैं, तो एक तो बहुत फ्रेश रहेगा सब्जी, कोई स्पॉट नहीं होगा और जो जमीन की सतह पे पानी में लगने की संभावना रहती है उसे भी आप बच सकते हैं और अच्छा आपको कीमत भी मिल सकता है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः डालते हैं रुख, हमें कृषि शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
6: कृषि शिक्षा की स्थिति की बात करते हैं तो पहले हम स्कूल शिक्षा से बात करते हैं। स्कूल लेवल पे एग्रीकल्चर एजुकेशन एज सच नहीं है हमारे यहाँ पर, कुछ राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर कृषि सब्जेक्ट है, मतलब कृषि विषय है, लेकिन दूसरे राज्यों में हम बात करें तो कृषि स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा नहीं है। और जैसे कि हम औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ITI के सेंटर होते हैं, उस तरह का भी सेंटर हमारे कृषि शिक्षा में नहीं, तो स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा बहुत कम है
4: जी।
6: लेकिन जो हमारे जो डिग्री लेवल एजुकेशन की बात करते हैं तो कृषि शिक्षा का एक उच्च अच्छा स्तर है, मतलब पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, खासकर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और दूसरे कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उनकी एक पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है, तो एक अच्छी क्वालिटी का। लेकिन जब आजकल हम बात करते हैं तो कृषि शिक्षा के दूसरे तरीके भी आ रहे हैं, जिसको पारंपरिक कृषि शिक्षा में तो कृषि विश्वविद्यालय आते हैं
4: जी।
6: लेकिन गैर पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें ओपन एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम भी आ रहे हैं और उनके द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा, कृषि की व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं और इन बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो सीधा एक किसान को एक या ग्रामीण युवा को कृषि व्यवसाय, कृषि उद्यमी बनने की तरफ प्रेरित करते हैं
4: जी।
6: खासकर एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है कृषि व्यवसाय में पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। उस प्रोग्राम को करने से क्या होगा कि आप एक साल में आप तैयार हो जाएंगे कि एक कृषि व्यवसाय करने के लिए, कृषि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जितने भी आपको स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसे आप प्रपोजल बनाएंगे, बिजनेस का प्रपोजल बनाएंगे, कैसे बैंक को सबमिट करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज किस किस तरह से होती है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन कैसे करेंगे। तो इस तरह का एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। लेकिन अगर एक जो कृषि व्यवसाय है कि जो उद्यम है जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इस तरह की जितने भी व्यवसाय है जो कृषि आधारित व्यवसाय है, उनमें आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल्स है, एक पीजी एक डिप्लोमा इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल्स पल्सेज ऑयल शीट्स, खाद्यान्नों से या तिलहनी फसलों से या जो दलहनी फसलों से कैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उस तरह के डिप्लोमाज हमारे पास है। साथ में एक वाटरशेड से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो उसमें वाटरशेड एरिया में कौन कौन से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, उस तरह के हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम।
0: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमें अभी कृषि शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। हमारे देश में काफी अनुसंधान है, काफी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, जिसके माध्यम से हम कृषि शिक्षा को ले सकते हैं। किसान साथियों, इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से बिजली गीत को।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इस बरसात के समय में टमाटर के लिए कौन सा बीज सबसे अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: तो आप पूसा की वैरायटी, पूसा रूबी और भी वैरायटी सदाबहार है, हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड एक दो है। इसके अलावा अर्का रक्षा करके एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि IHR बंगलोर की है, आप इसकी भी कर सकते हैं और ये 4 से 5 फीट तक बेल भी जाती है। इसको आप स्टैकिंग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है क्योंकि अर्का रक्षक में वायरस के प्रति अवरोधी भी प्रजाति है, तो आप अर्का रक्षक लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप नर्सरी जो तैयार करें, नर्सरी का अच्छा, क्योंकि अगर नर्सरी स्वस्थ होगा तो भी आगे खेती में आपकी फसल स्वस्थ होगी। तो आपने नर्सरी को अच्छे तरीके से वायरल फ्री तैयार करना है, फिर उसको ट्रीटेड करके, जब हम सीडलिंग्स को भी ट्रीटेड करके और मुख्य खेत में रोपित करेंगे, जो कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि ऊंची उठी हुई मेड़ पे ही इसको लगाएं ताकि बारिश के पानी से इसका ज्यादा क्षति ना हो।
2: बिल्कुल। साथ ही सह फसल क्या ले सकते हैं टमाटर के साथ?
1: अगर टमाटर की फसल है तो आप जगह गैप रखते हैं, तो अगर गैप रखते हैं तो उसमें हम टमाटर के मेड़ों के साइड में, जैसा कि अभी बहुत लोग बहुत किसान भाई कर भी रहे हैं जिसको करीब 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, आप धनिया और पालक भी आप मेड़ों के किनारे लगा के अलग से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: डॉक्टर राकेश
1: जी, ये बैगन और मिर्च दोनों को आप अगर अलग अलग लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिर्च में खासकर वायरल का ज्यादा प्रकोप होता है खरीफ सीजन में, तो आपने अगर दोनों फसलों को अलग अलग लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम फसली की बात करते हैं फसल लेने की, तो आप अगर स्पेस बढ़ा देते हैं तो आप उसके नीचे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला था कि पालक और धनिया का आप इस उसमें लगा के, क्योंकि वो 30 से 40 दिन में जब हमारा बैगन जब बड़ा साइज हो जाएगा उसके पहले हम फसल को जड़ सहित निकाल के उससे हम एक एक्स्ट्रा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि सब्जियों की नर्सरी जिन्हें तैयार करनी है उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही खेत की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।
1: मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो खरीफ का मौसम है, क्योंकि खरीफ के मौसम में और अन्य मौसम की अपेक्षा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्या आती है। एक तो खरपतवार भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ जल भराव की भी समस्या होती है, और उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है इस समय
2: जी।
1: तो इस समय किसान भाइयों को मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस समय खेती कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपने गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करके छोड़ दिया होगा, तो उसमें जो भी आपके हानिकारक खरपतवार और आपके जो कीट के अंडाणु है ये सारे नष्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद रहता है जो गर्मी की जुताई होती है, जिससे सॉइल सोलराइजेशन द्वारा उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है
2: जी।
1: फिर जहां पे हमें फसल लगानी है, क्योंकि सब्जियों को मुख्यतः जो है दो तरीके से उगाया जाता है, तो अधिकतर जो सब्जियां है वो सीधी बुआई की जाती है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, अगेती, फूलगोभी, इनकी हम खरीफ प्याज, इनकी हम पौध तैयार करते हैं, उसके पश्चात हम इसको मुख्य खेत में लगाते हैं। तो जैसा कि जो सीधी बोई जाने वाली या पौध से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं, इसको आपने एक तो बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि बीज जो है का चुनाव जो है जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है, क्योंकि जो भी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाएं हैं वो हर क्षेत्रवार अलग अलग प्रजातियों का अनुमोदन करती है, उसके हिसाब से आप अनुमोदित करें। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मृदा का उपचार और बीज का उपचार आप अवश्य करें, उसके पश्चात जो नर्सरी से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं उसमें हमने दो तरीके से, जैसे कि आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि समतल खेत क्यारी बना के और उसमें बीजों को डाल देते हैं, जिससे कि बहुत सारे बीज का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि अभी हम जो अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं और अच्छी बीज लेते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। पहले पूर्व में क्या होता था, बीज ज्यादा होता था तो ज्यादा भी डलती थी तो कम जमने के बाद भी किसान अपना इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीज करीब करीब आधे की मात्रा में हमारी उपयोग में आ जाती है। इसके लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, जैसे 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड बनाए और उस बेड पे ही 5-5 सेंटीमीटर की गहरी 1 सेंटीमीटर गहराई में लाइन बना के और उसमें आप बीजों को छोड़ के और ऊपर खाद और मिट्टी से मिक्स करके उसको ढक दें।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ये जो हम नर्सरी की बात कर रहे थे तो आपने ऊंची उठी हुई, क्योंकि बरसात का मौसम है हम प्लेन में नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसमें क्या होता है कि पानी खड़ी हो जाने से हमारा बीज सड़ जाता है या छोटी पौध नुकसान हो जाती है, तो हमेशा आप ऊंची उठी हुई बेडों पे ही नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा किसान भाई आजकल जैसे कि सर भी बता रहे थे कि प्रशिक्षण हर जगह पे हर कृषि विज्ञान केंद्र में होता है, तो आप कोशिश करें कि जैसे हम टमाटर की बात करते हैं कि 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम प्रो ट्रे के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमारा 60-80 ग्राम में ही काम चल जाता है।
2: अच्छा।
1: तो एक बहुत अच्छी तकनीकी है और इसको आप इजी वे में उसको कहीं भी रख सकते हैं, आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर इंसेक्ट प्रूफ नेट, अगर लो कॉस्ट इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा लेते हैं तो इसमें वायरल फ्री आप नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल होता है।
0: किसान साथियों, आइए अब एक्सपर्ट से बात करेंगे कि अगर हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, क्या वहां पर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं, क्या हम घर से ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस कोर्स को हम कर सकते हैं, या हमारे लिए अगर हर रोज आना और वहां रहकर जहां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रहकर पढ़ाई करना उतना संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: देखो, जो जो कृषि क्षेत्र के जो लोग काम करते हैं तो वह एक उनको मुख्य समस्या है कि उनके पास इतना समय नहीं कि एक किसी संस्था में जाके वहाँ के जगह क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं, तो हमें ऐसी कृषि शिक्षा पद्धति की जरूरत है जो उनको घर बैठे जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर ही उनको शिक्षा दी जाए। इसी के लिए जो दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम काफी प्रचलित है, वो उसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे आ रही है, तो इस तरह के जो सिस्टम है उनको अपना कर, और खासकर इन सिस्टम की बात करते हैं तो व्यवसाय शिक्षाएं वो पाठ्यक्रम अवेलेबल है काफी खासकर हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह के सेरिकल्चर, तो इस तरह के पाठ्यक्रम काफी अवेलेबल, डेयरी के सेक्टर में काफी अवेलेबल है, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड पाठ्यक्रम अवेलेबल है, तो इस तरह के काफी पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रम की खास बात ये है कि आपको जो ये थ्योरी एजुकेशन है आपको घर बैठे आपको मिलती है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, सिंपल सरल भाषा में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, और साथ में आपको कोई पढ़ते समय कुछ आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए एक स्टडी सेंटर आपको मिलता है, वहां जाकर वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे तो उन विषय की वहां जाकर चर्चा कर सकते हैं, जो वहां पर टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। जो प्रैक्टिकल कुछ ऐसी जो कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं जिसमें आपको दक्षता दी जाती है, उसको टेक्निकल कंसेप्ट समझा जाता है, तो उसके लिए स्टडी सेंटर में जाकर आप वो प्रैक्टिकल सबले अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी तरह जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें भी काफी धीरे धीरे कृषि के सेक्टर में आ रही है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म जो दिया है, स्वयं प्लेटफॉर्म है, www.swayam.gov.in, उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम कृषि के सेक्टर में भी अवेलेबल है, तो उसमें मुख्य जो कई सारे पाठ्यक्रम इग्नू की तरफ से भी अवेलेबल है, जैसे कि भारतीय कृषि विकास, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स है इसमें,

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: चेरी टोमेटो के लिए जैसा कि हमने टमाटर के बारे में चर्चा किया था कि चेरी टोमेटो की वैरायटी है, पूसा की वैरायटी है, आप पूसा चेरी के टोमेटो के नाम से आपको मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ निजी कंपनियों के भी हैं, वहां से आपके पास से जो भी आपके क्षेत्र में निजी कंपनियां हैं वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, या वहां पे जो संस्था है वहां से आप चेरी टोमेटो का सीड लेके और आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
2: जी बिल्कुल। तो सुशांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि चेरी टमाटो और इसी की तरह कई तरह की जो एग्जॉटिक सब्जियां हैं वो आजकल किसान उगाना चाहते हैं क्योंकि बाजार में उनको और बेहतर भाव मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बेमौसम सब्जियां हैं उसमें भी काफी फायदा होता है किसानों को। ऐसे में अगर संरक्षित खेती के जरिए बेमौसम सब्जियां लेना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे इस वक्त के लिए?
1: मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो आमतौर पर सब्जियां लोग बेल वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, ये तो बहुत पुराने पद्धति के से ही चली आ रही है
2: जी।
1: लेकिन अभी कुछ जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृषि में रोजगार की बात हम करते हैं, क्योंकि अब किसी को हम परंपरागत तरीके के बजाय उसको हम एक रोजगार का माध्यम माने तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए किसान भाई को कुछ नई चीज या नई किस्मों का या नई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। तो इस समय जो है, जो जैसे हम बात करते हैं कि खासकर प्याज का जो खेती होता है मुख्य रूप से हमारा जो लगभग पूरे इंडिया में रबी सीजन होता है, और महाराष्ट्र और जो हम इधर का एरिया है, वेस्टर्न का एरिया है भारत का, इसमें खरीफ का प्याज होता है, जिससे कि आप देखते हैं कि प्याज की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो अगर ये चीजें इस क्षेत्रों में भी प्याज की, जैसे बरसात की मौसम की प्याज हम दो माध्यम से करते हैं, एक तो हम नर्सरी तैयार करते हैं, साथ ही साथ हम गंठी बना के भी गंठी की भी सीधी रोपाई कर लेते हैं अगस्त के महीने में
2: जी।
1: तो अगर इस समय प्याज किसान भाई लगाते हैं तो ये दिसंबर के आसपास खुदाई हो जाती है, क्योंकि उस समय बाजार का भाव बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह से किसान ऑफ सीजन में ये प्याज लगा के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती है। आमतौर पर किसान जो गाजर की खेती करते हैं वो अक्टूबर में नवम्बर में जाके करते हैं। पूसा की एक वैरायटी है, पूसा वृष्टि, अगर उसको किसान भाई जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो अगेती जब किसान भाई लगाना सोचेंगे उस टाइम खुदाई हो जाती है। तो उस टाइम इस वैरायटी को लगाते हैं तो ऑफ सीजन में उनको अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मूली का है, मूली जो कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि रबी की फसल है, मूली, पालक, धनिया, तो इनको भी आप कुछ संरचना है, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो आप शेडनेट हाउस में 50% का अगर सफेद शेडनेट लगाते हैं आप, तो उसके नीचे में आप देखेंगे कि इस समय धनिया की कीमत करीब 200 से 250 रुपए किलो के आसपास बाजार में बिक रही है। तो अगर आप शेडनेट के नीचे करते हैं तो तापमान जो बाहर का होता है उससे आप 8 से 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड है नीचे रहता है उसके अंदर।
2: क्या वजह हो सकती है इसकी डॉक्टर राकेश, और क्या किया जा सकता है?
1: अरबी की फसल में जो पीलापन आ रही है इसका वजह अभी क्या हो सकता है कि आपने, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज्यादा था और इसमें हम गर्मी के मौसम में पानी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जमीन का सरफेस होता है वहाँ पे फंगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो उस अवस्था में आप कुछ फफूंदीनाशी है, जैसे कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, और उसमें आप ध्यान दें, अगर आपके आसपास में कोई संस्थान है आप वहां से संपर्क कर लीजिए और वहां से विशेषज्ञ को दिखाइए। ये पीलापन होने का एक वजह न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी हो सकती है
2: जी।
1: लेकिन आमतौर पर अभी क्या है कि गर्मी ज्यादा थी, तापमान ज्यादा थी और उसमें आप सिंचाई कर रहे होंगे, तो उस अवस्था में भी फफूंदी जनित बीमारियों की वजह से भी पीलापन होता है। तो आप फफूंदी नाशी का स्प्रे कर लीजिए, अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो आप उसको आप जांच करा के और उसको न्यूट्रिएंट की जो है उसकी पूर्ति करें।
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय। हमारा जो पौधा है सब्जियों का, उसमें कभी कभी सब्जियां नहीं आती है, क्या कारण हो सकता है कि हमारी सब्जियों का जो पौधा है वह काफी तंदुरुस्त होता है? हम समय समय पर पानी डालते हैं, उपयुक्त खाद डालते हैं प्रचुर मात्रा में, उसमें सारा पोषण आहार उसमें देते हैं, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि उसमें हमारी सब्जियां नहीं आती है? तो आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: क्या हुआ, पीछे कुछ दिनों से क्योंकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहा, तो उसमें आपने देखा होगा भिंडी नहीं

0: हमारे जितने भी बेल वाली सब्जियां भी है जो गर्मी के सीजन में लगाई गई थी उनमें भी फैलाना बंद हो गए थे, तो एक हमारा पोलिनेशन की क्रिया जो है उस समय डिस्टर्ब हुआ है। और आप एक तो लगातार नमी बनाए रखिए, क्योंकि गर्मी के सीजन में जो जितनी भी सब्जियां हैं उसमें मॉइस्चर को आप कंटिन्यू बनाए रखिए। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके उस आसपास में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से भी कुछ रुक रहे हो, तो आप उसमें एनपीके 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और मल्टीप्लेक्स जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक बार आप स्प्रे करें और सिंचाई बराबर करते रहें, तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः भिंडी का स्टार्ट हो सकता है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार और चलिए जानते हैं अगर कोई किसान दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इसमें कैसे वह एडमिशन ले सकता है, कैसे इस शिक्षा को ले सकता है और कैसे ये उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: एडमिशन जो प्रक्रिया है, प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आजकल ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होती है, और इग्नू की वेबसाइट में जाके या ignoo.smarth.edu.in करके एक एडमिशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें जाकर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो 10वीं पास का सर्टिफिकेट या 12th पास का सर्टिफिकेट या जैसे भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होता है, और साथ उसमें फीस भी आपको उसमें पे कर सकते हैं। सिंपल एक प्रक्रिया है, तो ऑनलाइन आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जैसे आप फॉर्म उसमें सबमिट करते हैं कुछ दिनों बाद आपका कंफर्मेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू आ जाता है या फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाता है।
4: जी बिल्कुल। और इसकी फीस कैसी होती है ये भी जानना चाहेंगे।
3: इसकी जो क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो हमने फीस इसकी बहुत ही कमी रखी है। जैसे 6 मंथ का प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में आपकी फीस है। और ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो STSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस भी माफ कर रखी है, तो उसमें फीस का भी आपको एग्जम्पशन है।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी योजनाएं हमें मिल रही है ताकि हम घर बैठे इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर STSC का विद्यार्थी है तो उसे स्पेशल प्रावधान भी दिया जा रहा है, इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहिए। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखिए, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में जो मुख्य चुनौती है हमारे जो युवा है उनको कृषि क्षेत्र में बनाए रखना, कैसे हमारे किस तरह से हम युवाओं को कृषि क्षेत्र में बनाए रखते हैं, इसके लिए हमें जरूरत है एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र को एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर बनाए। इनोवेटिव सेक्टर बना से क्या होगा कि आर्थिक रूप से यह क्षेत्र एक आकर्षित क्षेत्र बनेगा, ताकि जो युवा है जो कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक सोशल स्टेटस, एक उनको परिवार को एक अच्छी तरह से जीवन यापन, एक अच्छी शिक्षा, परिवार को अच्छी शिक्षा, एक सुविधा युक्त एक जीवन जीने का एक साधन मिल सके, इसके लिए हमने कृषि क्षेत्र को एक क्रिटिक क्षेत्र या आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाना होगा। इस आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में खेती के साथ साथ उद्यमी भी विकास करने पड़ेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा एडिशनल स्किल्स डेवलप करके, जानकारी प्राप्त करके छोटी छोटी व्यवसाय, कृषि आधारित व्यवसाय हम प्रारंभ कर सकते हैं, और उसके लिए प्रशिक्षण और शिक्षा काफी अवेलेबल है। कई तरह से एक्सटेंशन सिस्टम भी हमारे पास है, कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे पास है, कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास है, और कृषि शिक्षा के नए तरीके जिसमें दूर शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे साधन हमारे पास है। इनकी तरह से हम जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट हो उस सेक्टर की प्रशिक्षण प्राप्त करके या उसकी शिक्षा प्राप्त करके पूरी प्लानिंग करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर हम लेते हैं हमारे किसान का सवाल। उन्होंने हमें सवाल किया था कि उनके खेत में उनके बैंगन की जो फसल है उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। चलिए लेते हैं एक्सपर्ट की राय और जानते हैं कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं।
0: दलवीर जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो बैंगन की फसल हम जब लगाए थे तो उस समय आपने शुरू से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि जब पूरी तरह से कीट प्रकोप आ जाता है तो उस समय फिर दवा का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर बैगन में दवा कोई भी इस्तेमाल करते हैं उसका असर नहीं होता। तो ये जरूरी हो जाता है कि जैसे आपने फिजिकली मॉनिटरिंग करें, खेत पे आप घूमते समय ये देखें कहीं उसमें दो तरीके का आता है, एक तो सूट बोरर आता है, एक फ्रूट बोरर। तो आप देखेंगे बैगन के जो टॉप होगा उसमें तना मुरझाया हुआ सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी खेत में ऐसे तना मुरझाया हुआ हो तो आप एक प्लास्टिक वो थैली ले लीजिए, और कैंची के सहारे जहां से भी आपको सुराग दिखाई दे रहा है उससे एक इंच नीचे की कटाई कर लीजिए और उसको थैली में रखते जाइए। आप वैसे ही पूरे खेत में आप घूम के देख लीजिए कि बैगन में अगर कोई शुरुआती अवस्था में कीट लग रहा है तो इसकी छटाई कर लीजिए, और इसके लिए आपने जो स्प्रे करना है इसका आप स्पाइनोसेट का 1 ml 3 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो है ये फ्रूट बोरर जो बोलते फल छेदक कीड़ा है वो रुक जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में रेडियो टाइडिया 90.8 FM के साथ।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: किसान भाई को, जैसे कि हम बरसात की गर्मी की जुताई की बात कर रहे थे कि हमने बरसात के मौसम शुरू होने से पहले गर्मी की जुताई की जाती है, किसान भाई को मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि आप उसी टाइम जब खाली खेत हो और जुताई कर लिए हो तो आप अपने जमीन की सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि आजकल सरकार द्वारा भी सॉइल हेल्थ कार्ड का सब जिलों में सब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, उसके हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं। और इसके लिए जैसे हम अनाज वाली फसल है, इसके लिए जैसे 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर खाद डालते हैं, लेकिन सब्जियों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम 20 से 25 टन का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो हम सड़ी हुई गोबर खाद इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो हमें अंतिम जुताई के समय खाद दी जानी होती है, नाइट्रो फास्फोरस पोटास और जिंक और भी हमारे जो तत्व है उसको बुआई के समय दे दीजिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम स्प्लिट डोज में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में हम अपने फसलों को देते हैं, जिससे कि फसलें अच्छे तरीके से चलती है और अच्छा उत्पादन देती है।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे अविनाश के साथ।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने न केवल अपने लंबे प्रशासनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितकारी बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। आज हमारे अतिथि हैं श्री जीडी अग्रवाल जी, राजस्थान परिवहन विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। अग्रवाल साहब ने अपने टेनोर के दौरान डीलर एंड रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, वन टाइम टैक्स जैसी कई इनोवेटिव व्यवस्थाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे खास बात श्रोताओं, जो बात जिसके लिए हमने आज इनको यहाँ इन्वाइट किया है हमारे साथ परिचर्चा में, वो ये है कि अग्रवाल साहब आम अधिकारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद अपनी किताबें पढ़ने, अखबार पढ़ने में व्यस्त नहीं रहे हैं। इसके बाद भी इनका, रिटायरमेंट के बाद भी इनका सफर रुका नहीं है। आज वे रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पेंशनर सोसाइटी के माध्यम से युवाओं और समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके बारे में हम इस परिचर्चा में इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि रोड सेफ्टी क्या है और उसके विभिन्न पहलू क्या है। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जीडी अग्रवाल साहब का और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक प्रशासनिक यात्रा, रिफॉर्म्स, रोड सेफ्टी मिशन और जीवन के अनुभवों के बारे में। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही कर लेते हैं, आपके बचपन से कर लेते हैं। आप झुंझुनू गांव के, झुंझुनू जिले के गांव गोरेर में आपका जीवन बीता है, शुरुआती जीवन। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक आप पहुंचे, तो ये यात्रा कुछ ब्रीफ में हमें बताएंगे कैसी रही, कैसा रहा आपका जीवन, शुरुआती जीवन।
2: आलोक जी, मेरा जन्म तो गांव में हुआ, लेकिन क्योंकि पापा एजी ऑफिस में थे तो हम जयपुर शिफ्ट हो गए थे।
1: अच्छा।
2: और उसके बाद मेरी पढ़ाई सारी जयपुर में ही हुई है। लेकिन जैसे एक साधारण फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली है, उस तरह से मेरा जीवन निकला। वैसे हम 8 भाई बहन थे, फादर ज्यादातर ऑडिट के कार्य से, एजी के ऑफिस के कार्य से ऑडिट में रहते थे। और दो बहनों की जल्दी शादी हो जाने के कारण, क्योंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, फिर तो इसलिए मेरे पे जिम्मेदारियां ज्यादा थी। तो मैंने 18 साल में ही नौकरी कर ली थी। मैं पीएनटी डिपार्टमेंट में, पहले मैं, मेरी पोस्टिंग हुई वो सेकेंडरी के मार्क्स मेरे अच्छे थे, उसके आधार पर मैंने नौकरी ले ली। फिर ऐसे मैं कमर्शियल टैक्सेस में आया, फिर लास्ट में फिर मैं ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस में आया।
1: तो चलिए, ये तो आपका जीवन काफी संघर्ष का भी रहा और एक तरह से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आने के बाद आपको, आपकी शुरुआत हो गई। अब ये बताइए थोड़ा, ये ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं। आम लोगों से की ये धारणा है कि यहाँ सिर्फ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक ही काम सीमित होता है, यही काम होता है जिससे जनता का साबता पड़ता है। तो अब मुझे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग की फंक्शनिंग क्या है, उसके वेरियस काम क्या क्या वो करता है और उसके परव्यू में क्या क्या आता है, कुछ एक ओवरव्यू सा दीजिए। क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं तो मैं सोच रहा हूँ आपसे ये ज्ञान हमें मिलना चाहिए, हमारे श्रोताओं को सारा।
2: पहले तो आलोक जी, मैं ये स्पष्ट करूंगा कि एक पब्लिक को एक कॉन्सेप्ट में ये रहता, परसेप्शन ये है कि रोडवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ही है। जबकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है पहली चीज तो। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा मेरे श्रोताओं को कि ये इसपे 6000 सीआर का एनुअल रेवेन्यू है इसमें डिपार्टमेंट का। तो ये कमर्शियल टैक्सेस एक्साइज और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प डिपार्टमेंट के बाद चौथा जो हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है।
1: अच्छा,
2: तो इसमें पब्लिक का तो ये वास्ता दंडरी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस से ही पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जितने भी ये कमर्शियल और व्हीकल्स होते हैं जैसे टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, बसेज, ट्रक वगैरह, इनको भी रेगुलेट करते हैं। इनके एनफोर्समेंट व्हीकल की चेकिंग होती है, टैक्स की रिक्वरी की रिवेन्यू होती है, रोड सेफ्टी पे भी हम काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल पे भी हम काम करते हैं। तो इसे इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है और ये राजस्थान गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में से ये है।
1: अच्छा, तो जैसे अन्य सरकारी विभाग होते हैं उनमें इसमें क्या डिफरेंस है? अब इसकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि कई बार इनको पुलिसिंग पावर्स भी होती है, व्हीकल भी जब्त कर लेते हैं और जो टैक्स डिफॉल्टर्स है उन पे भी कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये क्या क्या है इनकी, इस तरह की पावर्स है क्या इनके पास जो है, पुलिस वाली पावर्स भी होती है कि ट्रांसपोर्ट?
2: हाँ, हमारे पास जो व्हीकल रिलेटेड सारी पावर्स है चेकिंग के, तो व्हीकल्स के चेकिंग रिलेटेड यूनिफॉर्म हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वहां तक यूनिफॉर्म होती है। अच्छा। उनके फ्लाइंग इंस्पेक्टर्स होते हैं तो वो सब इस चीज को एनफोर्स करते हैं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं तो उसका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जैसे ओवरलोडिंग है या कोई, जैसे आम पब्लिक का तो यह है कि हेलमेट नहीं पहन रहा, मोबाइल यूज कर रहा है गाड़ी चलाते टाइम, या सीट बेल्ट नहीं लगाया, ये एक पब्लिक का। और भी इसके मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान का उल्लंघन होता है उन सब पे हम लोग कार्रवाई करते हैं।

0: करते हैं तो उनको बंद भी करते हैं, और उनका फिर अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं करते तो उन गाड़ियों का फिर ऑप्शन भी करते हैं। तो इस तरह से ये रेवेन्यू, मतलब मेनली तो ये रेवेन्यू और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है।
1: अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा ऑफ द काफी सवाल पर रहा, जैसे मान लो हाईवे पे या किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो व्हीकल है उसकी क्या डिफॉल्ट है या उसने क्या गलती की, तो उस एरिया के अंदर भी आपका कोई पहुंच होती है उस टाइम जब एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होता है?
0: इसमें आलोक जी, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई जो सीवियर एक्सीडेंट होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा मर जाते हैं आदमी रोड एक्सीडेंट में, उसकी
1: अच्छा
0: हम लोग इंक्वायरी, हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो स्पॉट पे जाके इंक्वायरी करते हैं। वैसे तो जनरली पुलिस पुलिस का ही काम है रोड एक्सीडेंट्स के बाद जो एक्शन लेने का, लेकिन वो उस अगर कोई मेजर एक्सीडेंट्स होता है तो उसके डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, उसको रिकमेंड भी करता है भी किस तरह से कार्रवाई, और उसमें फिर अगर कोई लाइसेंस सस्पेंड भी करते हैं हम ड्राइवर का, अगर ड्राइवर की गलती होती है या उसकी फिटनेस, उसमें फिटनेस संबंधित अगर गाड़ी की फिटनेस सही नहीं है और फिटनेस सर्टिफिकेट है तो फिटनेस भी उसका कैंसिल करते हैं, तो इस तरह का हम फिर उसमें बाद में कार्रवाई करते हैं।
1: हाँ, कई बार ये होता है ना कि गाड़ी का अगर फिटनेस नहीं है उसका, मान लो स्टीयरिंग फेल हो गया या कोई ऐसी बात हो गई गाड़ी की में, कमी थी उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में आता होगा मेरे जाता
0: हाँ
1: है।
0: यस, उसमें हम जब मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि जब बड़े एक्सीडेंट होता है माइनर एक्सीडेंट में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मेजर एक्सीडेंट में ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है एक्सीडेंट मैटर्स में।
1: तो चलिए, इतनी अच्छी बातें हमारी अग्रवाल साहब से हो रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक यहाँ रुक के एक अग्रवाल साहब की पसंद का गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब थोड़ा सा आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और जो आपका कार्य किया है आपने प्रशासनिक, उसके बारे में आते हैं, बातचीत करते हैं। आपको कई बार मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, तो ऐसा आपका कार्यशैली ऐसी क्या थी कि आपने सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज किया और आपको मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह दिए, ऐसे किस कार्य के लिए मिला था, पहले तो ये बताइए।
1: आलोक जी, इसमें तो कोई ऐसा विशेष तो कारण नहीं था। एक्चुअली क्या, मैंने मोटर व्हीकल एक्ट को अच्छे से स्टडी किया, तो उसका मेरे को एक्सपर्टाइज काफी अच्छा है, वो अभी भी काम दे रहा है।
0: अच्छा,
1: कंसल्टेंसी मैं इसमें अभी भी कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: और मैंने क्या कि हेडक्वार्टर पे भी काम किया है, रूल्स के ड्राफ्टिंग भी की है, और फील्ड में भी काम किया है। मेरे को मतलब सभी सभी फील्ड में, ट्रांसपोर्ट में काम किया हुआ है मेरा। और फिर क्या है कि मेरी जो फ्रैंक भी हूँ, थोड़ा बोल्ड, मतलब मेरी जो वर्किंग स्टाइल है कि रूल के हिसाब से काम करने की, तो उससे क्या है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहा हूँ। और ये मेरा ट्रांसफर भी इसलिए बहुत ज्यादा होता है कि मैं ओटीएसएल की बातें इतनी नहीं मानी, तो मेरी ट्रांसफर भी हर साल में हो जाया करते थे। लेकिन उसमें मुझे एक ये भी रहा, मुझे एक एडवांटेज की, मुझे एक मतलब किसी प्रेशर में काम नहीं करना पड़ा मुझे।
0: हाँ, ये तो कई चुनौतियां होती है जब हम सिस्टम में काम करते हैं। अगर हम सिस्टम से सामंजस्य नहीं बिठाते तो फिर ट्रांसफर और ये सब तो बहुत बहुत मामूली चीज है जो होती रहती है। बिल्कुल, आपने बहुत कुछ नहीं कहते भी बहुत कुछ कह दिया है आपने, ये बात तो है। और साहब, तो
1: थैंक यू।
0: अब ये बताइए कि टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज, ये चल मैं आपसे एक डायरेक्टली सवाल पूछता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब ये दबी ढकी बात नहीं है कि किसी ना किसी रूप में करप्शन हमेशा से रहा है, मिडिल मैन कल्चर इसमें रही है, एजेंट्स रहे हैं, सब कुछ रही है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज आने से कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कुछ करप्शन का लेवल कम हुआ है, कोई एजेंट्स की इंटरफेरेंस कम हुई है, क्या हुआ है, कुछ आपका क्या विचार है इसमें?
1: आलोक जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमने 56 सर्विसेज जो हमारी जो है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट वगैरह की, टैक्स वगैरह की, तो हमने ऑनलाइन कर दी है और उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो करप्शन तो जब होगा जब वो आरटीओ विजिट करे। और फिर पर हमारे क्या कि पब्लिक क्या है कि जो है वो आईटी सेवे नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, तो वो उसको जो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। फिर वो ऑफिस जाते हैं, एजेंट्स को पकड़ते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जैसे है प्रोसेस, तो नए नए रजिस्ट्रेशन में उसको डीलर के यहीं रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो,
0: ठीक
1: उसको
0: है,
1: ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: ओके,
1: दूसरा, हमारे 90% जो गाड़ियां हैं वन टाइम टैक्स से कवर हो गई, मतलब हमने उन गाड़ियों को दोबारा टैक्स जमा कराने के लिए हर साल पहले जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: सही बात है।
1: वो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम ही उनका वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है। तो इसलिए अब हमने ज्यादातर केसेस में उसको मत केवल जो बसेज हैं, ट्रक्स हैं, यही वन टाइम टैक्स जमा नहीं कराती है, बाकी छोटी गाड़ियां सारी उसमें आ गई। लाइसेंस में भी हमने बहुत तो इम्प्रूव किया है, परमिट्स में भी इम्प्रूव किया है। तो ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन टैक्स में अब करप्शन तो क्यों है कि पब्लिक आईटी सेवी नहीं है, प्रॉब्लम यह है। अगर वो जैसे, लेकिन मैं इसमें एक ये निवेदन करना चाहूंगा कि कई स्टेट्स ने परिवहन सेवा केंद्र स्थापित कर रखा है, तो वहां क्या है कि जैसे पासपोर्ट में आपने देखा होगा कि बैकएंड पे तो वो डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं पासपोर्ट वाले, बाकी प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी वाले बैठते हैं,
0: हाँ, टाटा वाले बैठते हैं, टीसीएस वाले बैठते हैं। हाँ
1: फ्रंट एंड पे बैठते हैं। ये
0: हाँ
1: हमने उनको सजेशन, जब मैं डिलोइट में था तो हमने ये उनको ये सजेशन दिया था, तो किसी किन्हीं कारणों से ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वैसे कई स्टेट में परिवहन सेवा केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पर एक नॉमिनल फीस 50-100 रुपए में वो सारी सर्विसेज अवेल कर लेते हैं।
0: ओके,
1: दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। ये हमने उनको गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया था, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। गवर्नमेंट का ये व्यू था कि भाई ई मित्र केंद्र से ही ये करवा लेंगे काम, जबकि मित्र केंद्र वाले इतने एक्सपर्ट नहीं होते ये
0: नहीं
1: तरह
0: होते,
1: की
0: नहीं
1: चीजें।
0: होते, नहीं। अग्रवाल साहब, ये तो आपका सजेशन बहुत मुझे पसंद आ रहा है कि अगर जिस तरह से पासपोर्ट के लिए टीसीएस हैंडल कर रही है और बहुत अच्छा सिस्टमेटिक काम है उनका, ऑर्गेनाइज भी है, तो उस तरह का अगर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत समस्याएं दूर हो जाए। बात तो सही है आपकी, और लेकिन थोड़ा सा एक जनता का, श्रोताओं जनता का भी ये परसेप्शन है कि हम लोग एक बार भी चक्कर नहीं लगाना चाहते, और हम चाहते हैं कि घर बैठ के ही हमारा लाइसेंस और आरसी बन के आ जाए, सारा काम हो जाए। तो हम कई बार खुद जानकर एजेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जिससे हमें बिल्कुल ही करना पड़े, ये एक दिक्कत है। इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या पब्लिक अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है अग्रवाल साहब?
1: पब्लिक तो उसमें देखो सिंपल सिस्टम, एक्चुअली हमने प्रचार प्रसार भी इतना बजट नहीं होता, गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार भी नहीं, लेकिन परिवहन डॉट जीओ इन की एक साइट है सर,
0: अच्छा
1: उस साइट पे आप स्टेट चूज करिए, आरटीओ चूज करिए, फिर आप सर्विसेज ले लीजिए। तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 56 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे इसका काम हो सकता है, लेकिन पब्लिक को इतना पता नहीं रहता।
0: सही बात। तो चलिए अब आपको क्या लगता है, जैसे चलिए आप तो और कंसल्टेंसी वगैरह भी कर रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में क्या डिजिटल रिफॉर्म्स हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं?
1: डिजिटल रिफॉर्म तो इसमें जैसे अभी हमने जैसे आपको अभी बताया जैसे कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की अब हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, अब ये मतलब आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चल जाएगा, मतलब आपको स्मार्ट कार्ड के पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वापस उसको कलेक्ट करने के लिए ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है, और वो आपको ये वहीं से मिल जाएगा। फिर हमने इसमें डिजिटल में ये कर रखा है कि चालानिंग जो सिस्टम है जिसमें हमारा मेजर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, करप्शन के है, उसको भी हम आईटीएमएस सिस्टम से कवर कर रहे हैं, मतलब कैमरे लग जाएंगे जगह जगह, वो कैमरे से ही उनके जो नंबर प्लेट की वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, तो उस ANPR टेक्नोलॉजी से उसका मतलब गाड़ी के वो फेच हो जाएगा, और सिस्टम से वो जो वाहन सॉफ्टवेयर है उससे उसका पता पड़ जाएगा कि गाड़ी का परमिट है नहीं है, लाइसेंस मतलब पोल्यूशन है नहीं है, फिटनेस है नहीं है, तो उसका चालान मतलब बिना इंस्पेक्टर की प्रेजेंस के ही बन सकता है चालान। तो वो हम इस पे जा रहे हैं कि तो उससे ये करप्शन भी रुकेगा, और चालान सारे हमने ऑनलाइन कर दिया, मतलब वो मतलब मैनुअल नहीं बनाते चालान, उसको ये चालान हो गया, बहुत
0: ही चालानी लचना
1: ऑनलाइन पेमेंट, चालान का भी पेमेंट ऑनलाइन होगा, वो नगद पैसा लेता नहीं है।
0: आज ही अखबार में आया था कि वो पॉज मशीनें हम इनको ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी दे रहे हैं, उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी चालान का, तो उसके बारे में आया था। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, इसी आशा के साथ हम एक नया गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

हाँ, वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब आते हैं आपके असली जो मिशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अब डेलोराइट इंडिया के साथ और कंसल्टेंट के रूप में काम करना, ये अनुभव आपको कैसा रहा एक इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसी के साथ?

0: क्योंकि आप अभी तक सरकार के साथ काम कर रहे थे, तो इसमें क्या फर्क लगा आपको?
1: इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डिलोइट से, कि बिग फोर डिलोइट के बारे में बताना चाहूंगा कि बिग फोर कंसल्टिंग कंपनी है वर्ल्ड की, और
0: हाँ
1: कंसल्टिंग में इसका बड़ा नाम है। तो मेरे को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसने, मैंने राजस्थान की बीपीआर बनाई और हिमाचल की बीपीआर इससे बनाई,
0: अच्छा,
1: और अभी भी मैं डिलोइट से मतलब लिंक हूँ। तो इसका डिलोइट का मुझे अच्छा, मैं कुछ छोटे से एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी में लोगों को बेनिफिट हुआ। जैसे
0: जी
1: एक मैं बताता हूँ कि पहले जैसे गाड़ी की जो कीमत होती, कोस्ट, हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो गाड़ी की कीमत पे डिपेंड करता है। तो
0: जी
1: कीमत पहले जो कोस्ट डाली, कोस्ट है सिस्टम में, हमें मैन्युअली फीड करनी पड़ती थी कंप्यूटर पे। हमने
0: ओके अच्छा
1: उनको उनको राय दी डिपार्टमेंट को कि भाई आप मैन्युफैक्चरर कोड देता है, मैंने वो होमोलोगेशन हमने करवा दिया। तो मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति है, तो मारुति की जो जितने भी मॉडल्स है उसकी कॉस्ट वो उसमें सिस्टम में डाल देता है, तो हमें मतलब फीड करने की जरूरत नहीं होती। मैनुअली गलतियां होती थी, तो
0: अच्छा
1: उसका तो उससे तो एरर के चांसेस मिट गए, मतलब अंडर रिक्वायरी के जो ऑडिट वगैरह सब सब लफड़ा खत्म हो गया, मतलब और उसमें जो
0: अच्छा
1: एक्चुअल टैक्स इम्पोज हो गया,
0: ओके ओके मैं
1: उससे
0: समझ
1: रिवेन्यू
0: गया
1: काफी बढ़
0: आपकी
1: गए, डिपार्टमेंट की रिवेन्यू बढ़ी थे। इसी तरह
0: अच्छा
1: से जैसे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह है, जेसीबीज है, इनका रजिस्ट्रेशन होते नहीं थे और ये
0: अच्छा
1: माइनिंग एरिया में चलती रहती थी बिना रजिस्ट्रेशन पे,
0: हाँ बिल्कुल
1: और
0: ऐसे
1: एक
0: चलती
1: एक
0: है
1: गाड़ी
0: बिल्कुल
1: पे काफी पैसा बाकी रहता था। टैक्स जो 1.5-2 लाख रुपये टैक्स बनता था ये रिकवर नहीं होता था। तो इसका हमने ये क्या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जहां भी हमें लूपहोल्स लगे कि जहां टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले उसी टाइम हम पूरा वन टाइम टैक्स रिकवर करने लग गए जी, हमारी
0: ओके
1: हमने इनको रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, उससे ये हो गया। इसी तरह
0: अच्छा
1: और भी कई ऐसे सुझाव थे जिससे मतलब मुझे बड़ा अच्छा, इससे अच्छा अनुभव लगा मतलब।
0: दैट रिमाइंड्स मी अग्रवाल साहब, मेरे को एक ये गांव वगैरह में हाईवे के आसपास हम जाते हैं तो वहां जो ये ट्रैक्टर्स हैं ये तो बिल्कुल ऐसे फ्री स्टाइल में सारे घूमते रहते हैं, ज्यादातर तो मैंने देखा है, और इनपे ना तो कोई नंबर प्लेट ढंग से दिखती है, और इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है? ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स क्या माफ है टैक्सेस से, क्या है इनका चक्कर?
1: नहीं, ट्रैक्टर को तो अब बिना ना, अब तो वो पहले पुराने ट्रैक्टर होंगे सब, वो अब तो नए ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के बाहर नहीं जा सकते। मतलब
0: ओके
1: वो जब परचेजर को जब भी मिलेगा, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जैसे उसमें रिफ्लेक्टिव टैप वगैरह ये नहीं लगती, तो उससे वो क्या है कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं रोड पे, हाईवे पे, ये आप कह सकते हैं। तो उसमें भी इनको प्रयास करने की आवश्यकता है काफी डिपार्टमेंट।
0: मतलब ये भी वन टाइम टैक्स देके ही खरीद सकता है
1: हाँ
0: ट्रैक्टर
1: हाँ हाँ
0: आदमी
1: हाँ ये
0: आजकल?
1: मैं, हाँ मैंने कहा ना, जैसे हमने केवल ट्रक बस, जो बड़ी ट्रकें हैं और बड़ी बसें हैं, इनके
0: अच्छा
1: अलावा सारी ही गाड़ियां वन टाइम टैक्स देके खरीद सकता है।
0: ओके ओके, क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही एकदम फ्री स्टाइल घूमते रहते हैं और ना तो इनमें लाइट ढंग से जलती है ना कुछ करती है, और काफी के एक्सीडेंट्स होते ही हैं इसकी वजह से, हम देखते ही हाईवे के आसपास। तो आप अग्रवाल साहब राजस्थान ट्रांसपोर्ट पेंशनर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, तो इस संस्था के नाम से आप थोड़ा रोड सेफ्टी के बारे में बताइए, इस पे किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं?
1: एक्चुअली ये जो है, हमारे 70 मेंबर्स हैं इसमें, दो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं।
0: हाँ
1: हमने ये सोचा कि भाई डिपार्टमेंट को मतलब हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो
0: ठीक है
1: हमने भी ये सेवा के लिए भाई कि इसमें हम लोग का इसमें एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बना रखा हमने, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, तो 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। तो
0: अच्छा
1: हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जैसे कॉलेजेस वे स्कूल, बड़ी हायर स्कूल्स है उसमें जाते हैं और उनको बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको अवेयर करता है, हमारा मेन उद्देश्य तो ये है। इसके
0: अच्छा
1: अलावा मैं काफी इसमें जैसे हम डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें हमें बुलाया जाता है। मतलब इसके एक एनजीओ, हमने हमारा जो एनजीओ है इसमें इम्पोर्टेंट वो है, ट्रांसपोर्ट पेशनर सोसाइटी
0: अच्छा
1: और रोड सेफ्टी अवेयरनेस के नाम से एक हमने एक ये एनजीओ बना रखा है, तो उसका मैं
0: अच्छा
1: राजस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। तो उसमें
0: अच्छा
1: हम लोगों ने ये कि जब हाई लेवल पे जब मिनिस्टर्स या कमिश्नर लेवल पे मीटिंग होती है उसमें भी हम अटेंड करते हैं, सेमिनार को कॉन्फ्रेंसेज होती है, वर्कशॉप होती है, उनमें भी अटेंड करते हैं। और समय समय पे हम गवर्नमेंट को इसमें रोड सेफ्टी सिनेरियो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम अपने रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं।
0: अच्छा, तो क्या बच्चों को आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके उनको अवेयरनेस फैलाते हैं? दूसरा क्या, कभी कभी बच्चों को लेके इधर भी आते हैं चौराहे वगैरह पे या क्रॉसिंग पे, उनसे लोगों को समझाने के लिए या उनको समझाइश करने के लिए जो लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, ऐसे कोई बच्चों को लेके जाते भी है उन बच्चों को, स्कूल वालों को आगे भी
1: नहीं,
0: इस तरह का भी
1: ये
0: जाते हैं?
1: हम नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस करते हैं। हम लोग तो वहीं तक ही सीमित है कि जहाँ कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में ही हम हमारा प्रोग्राम होते हैं, रोड पर नहीं लेके आते बच्चों को।
0: क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा दिखता है, क्योंकि देखते हैं कि मेजर चौराहों पे जो बड़ी सड़कें हैं उन पे तो फिर भी लोग हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन जो गली कूचों के अंदर लोग होते हैं वहां तो कोई हेलमेट लगाता ही नहीं है आजकल, ये बात है।
1: इसके बारे में मैं एक ये बताना चाहूंगा कि सभी ये मानते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब जनरल पब्लिक का ये रहता है कि मैं बिना हेलमेट से चलता रहा हूं आगे भी मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं
0: वही
1: एक बताता हूँ, एक छोटी सी गलती आपकी जानलेवा
0: बात,
1: साबित हो
0: वही
1: सकती
0: बात,
1: है कि
0: वही
1: कभी भी इन सुरक्षा मामलों में चूक नहीं करनी चाहिए हमें,
0: बिल्कुल।
1: मतलब हमेशा ही ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए।
0: चलिए, तो इसी जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं और उनसे बचाव और सुरक्षा, जीवन में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं और अब थोड़े से सवाल और हैं, बस अग्रवाल साहब।

0: अब अग्रवाल साहब, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं। आपने बताया कि आपकी पत्नी रेनू अग्रवाल जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी चुनौती के बावजूद बेहद पॉजिटिव जीवन जी रही हैं, तो ये किस तरह से आपने उनको सपोर्ट करते हैं, और क्या आप लोग दोनों को क्या खास एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल रहे, कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, अगर बताना चाहें आप तो,
1: हाँ सर,
0: थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है।
1: डेफिनेटली सर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मेरे वाइफ को भी मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा,
0: हाँ बताइए
1: हाथ
0: सर।
1: पैरों की स्ट्रेंथ है, मसल उनके हाथ पैरों की स्ट्रेंथ की मसल बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। वो उठाना बैठाना पड़ता है, सारा काम कराना पड़ता है। तो
0: ओके
1: फिर लेकिन वो बड़ी पॉजिटिव है, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम सारे सोशल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, पीटी अटेंड करते हैं, घूमते हैं, और सब मतलब सिनेमा भी जाते हैं,
0: ओके
1: मार्केट भी
0: अच्छा
1: जाते
0: अच्छा
1: हैं। तो
0: अच्छा
1: मैं मतलब वो बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए इस चीज को लेके।
0: बहुत बहुत ये इस तरह का सपोर्ट अपने पार्टनर का मिल जाए अगर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए, इस बात पे भी हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। लेकिन उससे तो आप ये एक्सटेंसिव ट्रेलिंग जो ट्रेवलिंग करते हैं, कोई खास जगह ऐसी जो आपकी फेवरेट हो जहां आप जाना पसंद करते हो, जयपुर में या कहीं विदेश में या देश में, कहाँ कहाँ कहाँ आपने ट्रेवलिंग कर ली है?
1: सर मैंने करीब पूरा अभी 2-3 साल में करीब कश्मीर, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मतलब बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रेवल कर लिया करीब इंडिया के सभी पार्ट्स में, और मुझे अच्छा लगता है। और एक्चुअली हमें सब जगह हेल्प भी मिल जाती है। जैसे लंबे टूर तो हम जो हवाई जहाज से गए, तो एयर होस्टेस वगैरह मतलब हर जगह का हमें सपोर्ट मिलता है।
0: सपोर्ट
1: ऐसा
0: मिल
1: हमें व्हीलचेयर को लेके बल्कि बल्कि फायदा ही रहता है कि जैसे कहीं भी
0: जाता
1: एंट्री होती है तो प्रेफरेंस इनको मिलती है, तो कोई मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं इसमें।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। वो थोड़ा सा व्हील चेयर से आपको प्रेफरेंस भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है। लेकिन ये आपने बताया कश्मीर, आसाम और कहाँ कहाँ आप उनको घुमा लाए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत ही एक साधुवाद होना चाहिए आपका। बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है साहब, इतनी डिफिकल्टी के बावजूद आप उनको लेके जाते हैं, ये तो बहुत ही आपके अंदर जीवटता है, यही कहना चाहिए।
1: नहीं, वो भी
0: तो
1: पॉजिटिव है सर, इसलिए मैं ये कर पाता हूँ कि वो खुद
0: हाँ,
1: पॉजिटिव काफी है।
0: ये बहुत बात है। उनका उनका उनका पॉजिटिव रहना और उनका जाने के लिए तैयार रहना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, कई बार तो इंसान ऐसी बीमारी में, डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती है कहीं जाने की। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए, इस जीवटता के नाम पे और इसी उत्साह के नाम पे जो मिसेज अग्रवाल में, हम रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को रैप अप करते हैं।

0: हाँ अग्रवाल साहब, तो अब ये बताइए कि खास तौर से चूंकि आप आजकल रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, तो अंत में हमारे श्रोताओं और विशेषकर युवाओं और वाहन चालकों के लिए आप कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात कहना चाहें जिससे कि वो जब भी सड़क पर जाएं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, खुद को भी रखें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखें, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है।
1: सर, इस पे मैं युवाओं ड्राइवर्स के लिए जो आपने कहा है कि सेफ ड्राइव करिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, तो आप ट्रैफिक का रूल को फॉलो करिए। और उस पे आपको दो चीजों का बेनिफिट है, एक तो चालान आपका नहीं होगा कभी, मेंटल पीस भी रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और उसमें स्पीडिंग करते हैं तो आप 10 मिनट पहले तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। तो
0: बिल्कुल
1: आप ट्रैफिक के नियमों को पालना करना ही आपके लिए समझदारी का काम है। इसके अलावा मैं यूथ को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, आईटी सेवी बने, हार्ड वर्क करें, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूथ को मैं एक ये एडिशनल मेरा मैसेज भी देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सही बात है। आपकी जो रोड अवेयरनेस की कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी तरह से हम लोग उससे जुड़ सके तो हमें बेहद खुशी होगी, बताइएगा अगर ऐसा कोई संभव हो तो। क्योंकि हाँ, कोई क्योंकि
1: डेफिनेटली
0: उसका
1: अगर
0: कोई
1: आपके कोई
0: पब्लिसिटी करनी हो रेडियो पे या कोई ऐसा काम करना हो, कुछ उसके लिए प्रमोशन करना हो, कुछ बताना हो तो आप बताइएगा।
1: डेफिनेटली आलोक जी, हमारी बड़ी सुंदर डॉक्यूमेंट्री है, वो लोगों बच्चों को बड़ी पसंद आती है, बड़ी
0: जी
1: इन्फॉर्मेटिव है। और
0: हाँ
1: तो मतलब आप कभी किसी आपके कोई परिचित के मिल कोई स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई प्रोग्राम होना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली वहाँ आएंगे और हमें अच्छा लगेगा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना कि किस तरह एक संवेदनशील, दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यकाल में सिस्टम को बदलने की दिशा में सार्थक प्रयास करता है। श्री जीडी अग्रवाल ने जी ने न केवल ट्रांसपोर्ट विभाग में तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, आपके अनुभव, विचार और प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमारे श्रोताओं के लिए आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने हमें समय दिया।
1: आलोक जी, आपको भी धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद, उन्होंने ये सब मेरा सुना। थैंक यू वेरी मच।
0: तो श्रोताओं, यदि आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सुरक्षित सफर ही सबसे महत्वपूर्ण सफर है। इसी संदेश के साथ मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए रेडियो SN। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय

हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हम झोली। सबसे अच्छी

0: तेरे की, इसकी तो हवा ही निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो

अर्जुन के सच्चे सपूतो उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतो उठो, कंस का राज जग से

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज की कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आई। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया, पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थीं। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: इंतजार।
1: कौन है
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार?

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो अलका को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमारा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, बेशक खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की गायिका हैं उषा मंगेशकर जी। उषा मंगेशकर जी लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की बहन हैं। उषा का जन्म मशहूर संगीतकार और गायक दीनानाथ मंगेशकर के घर में चौथी पुत्री के रूप में हुआ था। 15 दिसंबर 1935 को मध्य प्रदेश में जन्मी उषा मंगेशकर जी बचपन से संगीत में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखती थी, फिर भी उषा जी ने गायकी के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। तो लीजिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उषा जी के इस गाने से।

हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, कन्नड़ और असमिया में भी कई गाने गाए। लता मंगेशकर जी ने उषा जी को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। लीजिए, पेश खिदमत है उषा जी का एक और गीत।

उषा मंगेशकर जी ने वर्ष 1954 में आई फिल्म सुबह का तारा में बड़े धूमधाम से मेरी भाभी आई गाने से बॉलीवुड में एंट्री की। ये एक रोमांटिक ड्रामा सॉन्ग था। इसके बाद उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में कई गाने गाए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में ये गीत।

फिर फिल्म जय संतोषी माँ ने उनकी किस्मत पलट दी। 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ के मैं तो आरती गाने ने उषा मंगेशकर जी को घर घर में पहचान दिला दी। इस फिल्म के गानों के लिए उषा मंगेशकर जी को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग फीमेल का नॉमिनेशन भी मिला। पेशे खिदमत है उनकी आवाज का एक और नगमा।

उषा मंगेशकर जी ने 60 साल की उम्र तक सिंगिंग की। उन्होंने 1992 में दूरदर्शन के लिए म्यूजिकल ड्रामा फूलवती को भी प्रोड्यूस किया, जिसकी कहानी बाबा साहेब पुरंदरे पर आधारित थी। हम लाए हैं उन्हीं की आवाज का एक और गीत।

क्या दोस्तों आपको मालूम है उषा मंगेशकर जी को सिंगिंग नहीं पेंटिंग पसंद थी। वो एक चित्रकार बनना चाहती थी लेकिन लता मंगेशकर जी के प्रोत्साहन से वो सिंगिंग में आ गई। लीजिए उन्हीं की आवाज का एक सुरीला नगमा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। रेडियो एसएन और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर, और आप सबका खैर मकदम करती हूं आज के इस नए सफर में जिसका नाम है अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि उन जज्बातों की महफिल है जो हम सब के दिल में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, कभी किसी की याद बनकर तो कभी किसी अधूरी कहानी की तरह। ये एहसास हमारे साथ चलते ही रहते हैं और गजल उन्हीं एहसासों की सबसे खूबसूरत जुबान है, जहां हर लफ्ज एक कहानी कहता है और हर सुर दिल को छू लेता है। तो आइए आज की इस हसीन महफिल में हम साथ मिलकर महसूस करते हैं कुछ अनकहे अल्फाज और कुछ गहरे से एहसास। इन आंखों की मस्ती के आगे हर जामे शराब भी फीका है, इन आंखों की मस्ती के आगे हर जामे शराब भी फीका है। मोहब्बत करने का हमने बस इन्हीं से तो सलीका सीखा है, वो देखें तो कयामत है, वो ना देखें तो हसरत है। इन्हीं के दम से दुनिया में हर एक दिल की हिफाजत है। दोस्तों, मेहदी हसन साहब की आवाज में जो ठहराव है वो हमें उन आंखों के तस्वुर में ले जाता है जिनमें हया भी है और सदियों का इंतजार। अक्सर हम जुबान से वो नहीं कह पाते जो एक नजर कह जाती है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी ही नजर है। इन आंखों में खुदा की कारीगरी देखिए कि कैसे कैसे दो शर्मीले नैन किसी की पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। आइए अल्फाज से एहसास तक में खो जाते हैं इन्हीं निगाहों के गहरे समंदर में। तो सुनिए मेहदी हसन साहब की ये नायाब प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। मेहदी हसन साहब।

घर की दीवारों पर क्या क्या लिखा है? हसरत ने घर की दीवारों पर क्या क्या लिखा है हसरत ने कि जब से तुम गए हो हर कोने में तन्हाई का साया बिखरा है। दुनिया की इस भीड़ में कहाँ खो गए हम रस्ते में। अब तो फकत यादें ही बची हैं इस जिंदगी के बस्ते में। दोस्तों, जुदाई का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा हो। जब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो टूटे हुए दिल आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। लोग अक्सर पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। उन्हें क्या मालूम, नींद तो उन आंखों के साथ ही चली गई जो कभी हमारा ख्वाब हुआ करती थी। इन अल्फाजों में जो दर्द है वो सिर्फ शायरी नहीं है, वो हर उस शख्स की दास्तां है जिसने मोहब्बत में हिजर को झेला हो। तो आइए रोते नहीं हैं, बल्कि उन यादों को महसूस करते हैं। सुनिए ये बहुत उदास सी गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम।

दिल में कुछ ख्वाब थे, आंखों में कुछ यादें थी, हम गुजरते रहे बस एक सफर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मिले हैं मगर असर की तरह। दोस्तों, कुछ यादें कुछ मुलाकातें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। शायर कहता है, आज की रात मेरा दर्दे मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्दे मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहारे ख्यालात का मौका दे दे, और फिर भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालों का मौका दे दे। अब सुनिए गुलाम अली साहब की आवाज में ये पुरअसरार सी गजल, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे।

हंसी होंठों पे सजी है, हंसी होंठों पे सजी है, मगर दिल उदास है। कोई राज है छुपा जो अभी तक अनकहा सा है। नजरें झुकी झुकी हैं, बात कुछ और कहती हैं। ये जो सुकून दिखता है, अंदर कहीं तूफान सा है। शायद हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी होती है। कभी कभी चेहरे की हंसी दिल का हाल नहीं बताती। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो लफ्जों में नहीं ढल पाते। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक ऐसे ही एहसासों से भरी ये गजल जगजीत सिंह जी की आवाज में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। सुनिए ये खूबसूरत गजल।

दोस्तों, कुछ बातें अगर धीरे से कही जाए ना तो दिल तक और गहराई से पहुंचती हैं। जैसे तेरी आवाज में जैसे कोई नशा सा है, तेरी आवाज में जैसे कोई नशा सा है, हर लफ्ज में छुपा है एक सिलसिला सा। जरा आहिस्ता कहो ये मोहब्बत की बातें, ये दिल भी सुन रहा है, ये मौसम भी गवाह सा है। ऐसे बोलो कि दिल का अफसाना दिल सुने और निगाहें दोहराएं। अपने चारों तरफ की ये दुनिया सांस का शोर भी ना सुन पाए। तो आइए दोस्तों, पंकज उदास की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। और आहिस्ता कीजिए बातें, सुनिए पंकज उदास की ये खूबसूरत गजल।

देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो। ऐ देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो। तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे। अगर कोई सूरत भी तो हो खाने दिल की, अगर कोई सूरत भी हो तो खाने दिल की। काबा नहीं बनता तो बुत खाना ही बना दे। बहजाद बहजाद हर गाम पर हर एक सजदाए मस्ती, हर दर को संगे दर जानाना बना दे। बेगम अख्तर की पुरसकून आवाज में बेजाद लखनवी का ये कलाम सुनिए दोस्तों। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। बेगम अख्तर की आवाज में सुनिए ये कलाम।

दोस्तों, कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस खामोशी में गूंजते रहते हैं। दिल की हर बात जुबां तक नहीं आती, अक्सर कुछ सदा बन के फिजाओं में बिखर जाती है। हम भी चुप हैं किसी गहरी सी उदासी में मगर, हम भी चुप हैं किसी गहरी सी उदासी में मगर, एक फरियाद है जय, एक फरियाद है जो दिल में ही रह जाती है। जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये उदास सी गजल सुनिए। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जगजीत सिंह की आवाज में।

तो दोस्तों, ये थी आज की महफिल, आवाज अल्फाज से एहसास तक। कुछ लफ्ज थे जो दिल से निकले और कुछ एहसास थे जो आपकी धड़कनों तक पहुंचे। शायद इन गजलों में आपको अपनी भी कोई कहानी मिली हो जैसे, या कोई अधूरी सी याद मुस्कुरा उठी हो जैसे। इस उम्मीद के साथ कि ये अल्फाज आपके साथ देर तक गूंजते रहेंगे, मैं आपकी दोस्त आरती रॉय आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर

0: प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर रोज शाम को 6 से 8 खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुनते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते हैं। किसान साथियों, वक्त आ गया है हमें पर्यावरण के अनुरूप खेती करने का। बदलते इस पर्यावरण में हमें हमारी मृदा का, हमारे पर्यावरण का, हमारी फसलों का और हमारे स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारा किसान भली भांति वाकिफ है, दिन प्रतिदिन जिन रासायनिक दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं वह न केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि हमारी फसलों को, हमारी कृषि भूमि को, हमारे जल स्रोतों को, हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। इसलिए किसान साथियों, हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक बदलाव की, हमें ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की, हमें ज़रूरत है जैविक खेती की। किसान साथियों, आज पुनः हम आपके सामने हाजिर है कुछ और नई कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बरसात में होने वाली सब्जियों को लेकर और कृषि स्वरोजगार योजना के ऊपर। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 से 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आइए जानते हैं बरसात की खेती और कृषि शिक्षा स्वरोजगार क्या होता है।
2: जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं
3: जी।
2: और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ है, इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से। और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड द ईयर में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो बहुत सारी वेराइटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है, इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है, इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी, इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी और अरका नामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अरका, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जून के अंत तक मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है। इसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है।
0: किसान साथियों, अभी आपने बरसात में की जाने वाली सब्जियों के बारे में जाना, आपने जाना कौन सी उत्तम किस्म की उत्तम बीजों के बारे में भी, साथ ही आपने जाना कैसे हमें जल भराव आदि जो समस्या है उनसे भी हमें कैसे उनको बचाकर रखना चाहिए आदि जानकारियों को जाना, और इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं, कृषि स्वरोजगार क्या है?
5: देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे अधिक से अधिकतम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहां उसे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफी परिवर्तन आ गया है। वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है, कौन से बाजार में बेचना है उसके लिए एक स्किल, एक जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी चेंजेज आ गए हैं। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज्यादा कम शिक्षित लोग हैं और ये अशिक्षित लोग हैं जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं। वो अपने खेत पे उनका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफी, और क्योंकि हमने अधिक से अधिक तम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिक तम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, नवोन्मेष कृषि बनानी, इसके लिए हमें कृषि के जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं उनको एक तरह से हमें कहेंगे कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है।
3: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है, और ऐसे में इन चीजों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कृषि में जहां अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, हमारी जो कृषि है वो न केवल आजीविका का साधन बनी हुई है, बल्कि हमारे देश के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाती है। तो किसान साथियों, हमें हमारी जो कृषि है उसमें हमें उन्नति उसमें लानी है, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, हमें उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। हम जानते हैं हमारा किसान सदियों से कृषि करते आया है, बिना किसी शिक्षा के हमारा किसान खेती करता आ रहा है, परंतु बदलते इस समय में हमें बहुत जरूरी है हमारे ज्ञान का आदान प्रदान करने की, हमारे ज्ञान का साझा करने की, हमें दूसरों से सीख लेने की, हमें कैसे हमारा दूसरा किसान जो एक उन्नत किसान है, एक सक्षम किसान है, वो अपने खेतों में कौन सी पद्धति अपना रहा है, कौन सी नई नई खोजें उन्होंने अपने अपने खेतों में की है, इन सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, जिससे हम जितना हमारे ज्ञान को हम जितना साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही हम हमारी कृषि में एक नया बदलाव ला सकते हैं और हमारी आय के स्रोतों में भी हम एक बदलाव ला सकते हैं। साथ ही
5: कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें, तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में। तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है, तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, उसको आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है, और उसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर हम हमारे किसान का एक सवाल था, उससे हम लेते हैं कि बारिश के समय में वह कौन सी फसल लगा सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ फसलें अपने खेतों में लगाई हुई है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को वो जानना चाहते हैं, तो आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
2: आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बरसात का मौसम है, खासकर खरीफ का मौसम है, ये बहुत ही उपयुक्त समय है और हम इसमें बैंगन, मिर्च, टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित प्रजाति है और आपके आसपास जो भी अनुमोदित प्रजाति है उसका चयन करें, और इसके लिए सबसे पहले आपने नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी को आप वायरल फ्री, वायरस के प्रति और प्रजाति का भी चयन करें, साथ ही साथ उसको उगाते समय आप इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में उगाते हैं तो अच्छी नर्सरी तैयार होगी, और उसको आप 25 से 30 दिन के बाद आप अपने जो मुख्य खेत है उसमें आप रोपित कर सकते हैं। रोपित करने से पूर्व आप विशेष सावधानी रखें कि बरसात का मौसम है तो उसको आप 15 सेंटीमीटर उठी हुई मेड़ों पर ही आप उसकी रोपाई करें।
0: जी, जी। किसान साथियों, साथ ही साथ आइए पूछते हैं करेले की खेती के बारे में। हमारे एक किसान भाई ने हमें करेले की खेती को लेकर भी कुछ जानकारियों को के लिए हमें आग्रह किया था, तो आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय और जानते हैं करेले की खेती के ऊपर।
2: की जो वैरायटी है पूसा दो मौसमी और पूसा सदाबहार है, आप इसका आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी पूसा की बहुत अच्छी वैरायटी पूसा औषधि है, जो कि आप इसको महाराष्ट्र और उस क्षेत्र के लिए भी अनुमोदित है, तो आप इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। आप इसके लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपने जहां से भी बीज लेना है एक तो विश्वसनीय संस्था होना चाहिए, साथ ही साथ उसका उपचार अवश्य करेंगे और उसको जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप मुख्य खेत में जो है नालियों में जो आपकी नाली होगी उन नालियों में आप 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लगाएंगे, साथ ही साथ

0: क्योंकि बरसात के मौसम में पानी खड़ी होने की संभावना रहेगी, तो आप इसको मचान सिस्टम में ले जाएंगे तो और बेहतर खेती कर सकते हैं।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: जी, इस टाइम जो है खासकर जो बरसात की मौसम है और खरीफ का मौसम जिसको हम बोलते हैं जी। इसके लिए जो मुख्य रूप जो खेती की जाती है कद्दू बेल वाली सब्जियां, जिसमें हम घिया, तोरई, करेला, खीरा, पेठा, अन्य और भी हमारे जो खरबूज तरबूज का है उसको भी हम ले सकते हैं। इन सब्जियों को लेने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके क्षेत्र के अनुसार से, क्योंकि हर क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र है
3: जी।
0: और वहां से जो भी किसान भाई है अगर खरीफ मौसम में बेल वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उपयुक्त जगह से जो कि विश्वसनीय संस्था हो, क्योंकि आजकल ये देखने को मिलता है कि एक बार बीज किसान अपने कहीं से भी बाजार से ले लेते हैं और उनका बीज अक्सर खराब निकलता है जो कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है
3: जी, जी।
0: तो पहले श्योर करना है कि हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और इसमें वायरल और कीट पतंगों का ज्यादा प्रकोप होता है, तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रजाति है जो कि वायरस के प्रति अवरोधी है, बीमारियों के प्रति अवरोधी है, तो उन प्रजातियों का हमने चयन करना है और उसका अच्छी तरीके से बीज का उपचार करके
3: जी।
0: और जो भी अनुमोदित, जैसे हमने बताया अभी करेला में 50 सेंटीमीटर है, वैसे घिया तोरी वगैरह में जो दूरी रखते हैं 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भी हम रखते हैं।
3: बिल्कुल।
0: और एक नाली से जो दूसरी नाली की दूरी हम रखते हैं, ये पौधों की बढ़वार, क्योंकि बरसात में पौधों की बेल वाली सब्जियों की बढ़वार ज्यादा होती है
3: जी,
0: तो उनके लिए 4 मीटर के नाली से नाली की दूरी कम से कम रखते हैं। साथ ही साथ आपने बेल वाली सब्जियों को ये कोशिश करें कि उसको मचान सिस्टम में बांस और रस्सी के सहारे उसको जमीन से ऊपर उठा के मचान सिस्टम में करते हैं, तो एक तो बहुत फ्रेश रहेगा सब्जी, कोई स्पॉट नहीं होगा और जो जमीन की सतह पे पानी में लगने की संभावना रहती है उसे भी आप बच सकते हैं और अच्छा आपको कीमत भी मिल सकता है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः डालते हैं रुख, हमें कृषि शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: कृषि शिक्षा की स्थिति की बात करते हैं तो पहले हम स्कूल शिक्षा से बात करते हैं। स्कूल लेवल पे एग्रीकल्चर एजुकेशन एज सच नहीं है हमारे यहाँ पर। कुछ राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर कृषि सब्जेक्ट है, मतलब कृषि विषय है। लेकिन दूसरे राज्यों में हम बात करें तो कृषि स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा नहीं है। और जैसे कि हम औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ITI के सेंटर होते हैं, उस तरह का भी सेंटर हमारे कृषि शिक्षा में नहीं, तो स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा बहुत कम है
3: जी।
4: लेकिन जो हमारे जो डिग्री के लेवल एजुकेशन की बात करते हैं तो कृषि शिक्षा का एक उच्च अच्छा स्तर है, मतलब पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। खासकर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और दूसरे कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, उनकी एक पढ़ाई का स्तर। हम बात करते हैं तो कृषि शिक्षा के दूसरे तरीके भी आ रहे हैं, जिसको पारंपरिक कृषि शिक्षा में तो कृषि विश्वविद्यालय आते हैं
3: जी।
4: लेकिन गैर पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें ओपन एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम भी आ रहे हैं और उनके द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा, कृषि की व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं।

0: और इन बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो सीधा एक किसान को एक या ग्रामीण युवा को कृषि व्यवसाय कृषि उद्यमी बनने की तरफ प्रेरित करते हैं। खासकर एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है कृषि व्यवसाय में पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। उस प्रोग्राम को करने से क्या होगा कि आप एक साल में आप तैयार हो जाएंगे कि एक कृषि व्यवसाय करने के लिए, कृषि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जितने भी आपको एक स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसे आप प्रपोजल बनाएंगे, बिजनेस का प्रपोजल बनाएंगे, कैसे बैंक को सबमिट करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज किस किस तरह से होती है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वित्तीय प्रबंधन कैसे करेंगे। तो इस तरह का एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। लेकिन अगर एक जो कृषि व्यवसाय के जो उद्यम है जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इस तरह की जितने भी व्यवसाय है जो कृषि आधारित व्यवसाय है उनमें आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध है। और जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल्स है, एक पीजी एक डिप्लोमा इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल्स पल्सेज ऑयल शीट्स, खाद्यान्नों से या तिलहनी फसलों से या जो दलहनी फसलों से कैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उस तरह के डिप्लोमाज हमारे पास है। साथ में एक वाटरशेड से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो उसमें वाटरशेड एरिया में कौन कौन से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, उस तरह के हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमें अभी कृषि शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। हमारे देश में काफ़ी अनुसंधान है, काफ़ी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, जिसके माध्यम से हम कृषि शिक्षा को ले सकते हैं। किसान साथियों, इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से मिली गीत को। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इस बरसात के समय में टमाटर के लिए कौन सा बीज सबसे अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: तो आप पूसा की वैरायटी, पूसा रूबी और भी वैरायटी सदाबहार है, हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड एक दो है। इसके अलावा अर्का रक्षा करके एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि IHR बंगलोर की है, आप इसकी भी कर सकते हैं और ये 4 से 5 फीट तक बेल भी जाती है। इसको आप स्टैकिंग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है क्योंकि अर्का रक्षक में वायरस के प्रति औरोद्योगी प्रजाति है, तो आप अर्का रक्षक लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप नर्सरी जो तैयार करें, नर्सरी का अच्छा, क्योंकि अगर नर्सरी स्वस्थ होगा तो भी आगे खेती में आपकी फसल स्वस्थ होगी। तो आपने नर्सरी को अच्छे तरीके से वायरल फ्री तैयार करना है, फिर उसको ट्रीटेड करके, जब हम सीडलिंग्स को भी ट्रीटेड करके और मुख्य खेत में रोपित करेंगे, जो कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि ऊंची उठी हुई मेड़ पे ही इसको लगाएं ताकि बारिश के पानी से इसका ज्यादा क्षति ना हो।
2: बिल्कुल। साथ ही सह फसल क्या ले सकते हैं टमाटर के साथ?
1: अगर टमाटर की फसल है तो आप जगह गैप रखते हैं, तो अगर गैप रखते हैं तो उसमें हम टमाटर के मेड़ों के साइड में, जैसा कि अभी बहुत लोग बहुत किसान भाई कर भी रहे हैं, जिसको करीब 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, आप धनिया और पालक भी आप मेड़ों के किनारे लगा के अलग से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: डॉक्टर राकेश
1: जी, ये बैगन और मिर्च दोनों को आप अगर अलग अलग लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिर्च में खासकर वायरल का ज़्यादा प्रकोप होता है खरीफ सीजन में। तो आपने अगर दोनों फसलों को अलग अलग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम फसली की बात करते हैं, फसल लेने की, तो आप अगर स्पेस बढ़ा देते हैं तो आप उसके नीचे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला था कि पालक और धनिया का आप इस उसमें लगा के, क्योंकि वो 30 से 40 दिन में जब हमारा बैगन जब बड़ा साइज हो जाएगा, उसके पहले हम फसल को जड़ सहित निकाल के उससे हम एक एक्स्ट्रा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि सब्जियों की नर्सरी जिन्हें तैयार करनी है उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही खेत की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।
1: मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो खरीफ का मौसम है, क्योंकि खरीफ के मौसम में और अन्य मौसम की अपेक्षा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्या आती है। एक तो खरपतवार भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ जल भराव की भी समस्या होती है, और उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है इस समय
2: जी।
1: तो इस समय किसान भाइयों को मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस समय खेती कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपने गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करके छोड़ दिया होगा, तो उसमें जो भी आपके हानिकारक खरपतवार और आपके जो कीट के अंडाणु है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद रहता है जो गर्मी की जुताई होती है, जिससे सॉइल सोलराइजेशन द्वारा उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है
2: जी।
1: फिर जहां पे हमें फसल लगानी है, क्योंकि सब्जियों को मुख्यतः जो है दो तरीके से उगाया जाता है, तो अधिकतर जो सब्जियां है वो सीधी बुआई की जाती है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, अगेती, फूलगोभी, इनकी हम खरीफ प्याज, इनकी हम पौध तैयार करते हैं, उसके पश्चात हम इसको मुख्य खेत में लगाते हैं। तो जैसा कि जो सीधी बोई जाने वाली या पौध से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं, इसको आपने एक तो बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि बीज जो है का चुनाव जो है जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है, क्योंकि जो भी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाएं हैं वो हर क्षेत्रवार अलग अलग प्रजातियों का अनुमोदन करती है, उसके हिसाब से आप अनुमोदित करें। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मृदा का उपचार और बीज का उपचार आप अवश्य करें, उसके पश्चात जो नर्सरी से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं उसमें हमने दो तरीके से, जैसे कि आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि समतल खेत क्यारी बना के और उसमें बीजों को डाल देते हैं, जिससे कि बहुत सारे बीज का नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि अभी हम जो अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं और अच्छी बीज लेते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। पहले पूर्व में क्या होता था, बीज ज्यादा होता था तो ज्यादा भी डलती थी तो कम जमने के बाद भी किसान अपना इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीज करीब करीब आधे की मात्रा में हमारी उपयोग में आ जाती है। इसके लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, जैसे 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड बनाए और उस बेड पे ही 5-5 सेंटीमीटर की गहरी, 1 सेंटीमीटर गहराई में लाइन बना के और उसमें आप बीजों को छोड़ के और ऊपर खाद और मिट्टी से मिक्स करके उसको ढक दें।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ये जो हम नर्सरी की बात कर रहे थे तो आपने ऊंची उठी हुई बेड, क्योंकि बरसात का मौसम है हम प्लेन में नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसमें क्या होता है कि पानी खड़ी हो जाने से हमारा बीज सड़ जाता है या छोटी पौध नुकसान हो जाती है, तो हमेशा आप ऊंची उठी हुई बेडों पे ही नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा किसान भाई आजकल

0: जैसे कि सर भी बता रहे थे कि प्रशिक्षण हर जगह पे हर कृषि विज्ञान केंद्र में होता है, तो आप कोशिश करें कि जैसे हम टमाटर की बात करते हैं कि 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम प्रो ट्रे के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमारा 60 से 80 ग्राम में ही काम चल जाता है।
1: अच्छा।
0: तो एक बहुत अच्छी तकनीकी है और इसको आप इजी वे में उसको कहीं भी रख सकते हैं, आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर इंसेक्ट प्रूफ नेट, अगर लो कॉस्ट इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा लेते हैं तो इसमें वायरल फ्री आप नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल होता है।
1: किसान साथियों, आइए अब एक्सपर्ट से बात करेंगे कि अगर हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, क्या वहां पर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स हैं, क्या हम घर से ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस कोर्स को हम कर सकते हैं, या हमारे लिए अगर हर रोज आना और वहां रहकर जहां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रहकर पढ़ाई करना उतना संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: देखो, जो जो कृषि क्षेत्र के जो लोग काम करते हैं
1: जी,
2: तो वह एक उनको मुख्य समस्या है कि उनके पास इतना समय नहीं कि एक किसी संस्था में जाके वहाँ के जगह क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं। तो हमें ऐसी कृषि शिक्षा पद्धति की जरूरत है जो उनको घर बैठे जहाँ वह काम कर रहे हैं वहाँ पर ही उनको शिक्षा दी जाए। इसी के लिए जो दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम काफी प्रचलित है, वो उसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे आ रही है। तो इस तरह के जो सिस्टम है उनको अपना कर, और खासकर इन सिस्टम की बात करते हैं तो व्यवसाय शिक्षाएं वो पाठ्यक्रम अवेलेबल है काफी खासकर हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह के सेरिकल्चर, तो इस तरह के पाठ्यक्रम काफी अवेलेबल, डेयरी के सेक्टर में काफी अवेलेबल है, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड पाठ्यक्रम अवेलेबल है, तो इस तरह के काफी पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रम की खास बात ये है कि आपको जो थ्योरी एजुकेशन है आपको घर बैठे आपको मिलती है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, सिंपल सरल भाषा में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, और साथ में आपको कोई पढ़ते समय कुछ आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो उसके लिए एक स्टडी सेंटर आपको मिलता है, वहां जाकर वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे तो उन विषय की वहां जाकर चर्चा कर सकते हैं, जो वहां पर टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। जो प्रैक्टिकल कुछ ऐसी जो कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं जिसमें आपको दक्षता दी जाती है, टेक्निकल कंसेप्ट समझा जाता है, तो उसके लिए स्टडी सेंटर में जाकर आप वो प्रैक्टिकल सबले अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी तरह जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी काफी उसमें भी काफी धीरे धीरे कृषि के सेक्टर में आ रही है, और खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म जो दिया है स्वयं प्लेटफॉर्म है www.swayam.gov.in, उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम कृषि के सेक्टर में भी अवेलेबल है, तो उसमें मुख्य जो कई सारे पाठ्यक्रम इग्नू की तरफ से भी अवेलेबल है, जैसे कि भारतीय कृषि विकास, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स है इसमें, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स की बात है, तो इस तरह के आठ प्रोजेक्ट एनालिसिस कोऑपरेटिव पे उसमें एक पाठ्यक्रम, इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम,
3: कई तरह के पाठ्यक्रम हैं जो दूरस्थ शिक्षा के जरिए भी किसान जो है जिनसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: चेरी टोमेटो के लिए जैसा कि हमने टमाटर के बारे में चर्चा किया था कि चेरी टोमेटो की वैरायटी है, पूसा की वैरायटी है, आप पूसा चेरी के टोमेटो के नाम से आपको मिल सकता है, साथ ही साथ कुछ निजी कंपनियों के भी हैं, वहां से आपके पास से जो भी आपके क्षेत्र में निजी कंपनियां हैं वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, या वहां पे जो संस्था है वहां से आप चेरी टोमेटो का सीड लेके और आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
3: जी बिल्कुल। तो सुशांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि चेरी टमाटो और इसी की तरह कई तरह की जो एग्जॉटिक सब्जियां हैं वो आजकल किसान उगाना चाहते हैं क्योंकि बाजार में उनको और बेहतर भाव मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बेमौसम सब्जियां हैं उसमें भी काफी फायदा होता है किसानों को। ऐसे में अगर संरक्षित खेती के जरिए बेमौसम सब्जियां लेना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे इस वक्त के लिए?
0: मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो आमतौर पर सब्जियां लोग बेल वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, ये तो बहुत पुराने पद्धति के सही चली आ रही है
3: जी।
0: लेकिन अभी कुछ जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृषि में रोजगार की बात हम करते हैं क्योंकि अब किसी को हम परंपरागत तरीके के बजाय उसको हम एक रोजगार का माध्यम माने तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए किसान भाई को कुछ नई चीज या नई किस्मों का या नई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। तो इस समय जो है जो जैसे हम बात करते हैं कि खासकर प्याज का जो खेती होता है मुख्य रूप से हमारा जो लगभग पूरे इंडिया में रबी सीजन होता है और महाराष्ट्र और जो हम इधर का एरिया है, वेस्टर्न का एरिया है भारत का, इसमें खरीफ का प्याज होता है जिससे कि आप देखते हैं कि प्याज की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो अगर ये चीजें इस क्षेत्रों में भी प्याज की, जैसे बरसात की मौसम की प्याज हम दो माध्यम से करते हैं, एक तो हम नर्सरी तैयार करते हैं, साथ ही साथ हम गंठी बना के भी गंठी की भी सीधी रोपाई कर लेते हैं अगस्त के महीने में
3: जी।
0: तो अगर इस समय प्याज किसान भाई लगाते हैं तो ये दिसंबर के आसपास खुदाई हो जाती है क्योंकि उस समय बाजार का भाव बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह से किसान ऑफ सीजन में ये प्याज लगा के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती है। आमतौर पर किसान जो गाजर की खेती करते हैं वो अक्टूबर में नवम्बर में जाके करते हैं। पूसा की एक वैरायटी है पूसा वृष्टि, अगर उसको किसान भाई जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो अगेती जब किसान भाई लगाना सोचेंगे उस टाइम खुदाई हो जाती है। तो उस टाइम इस वैरायटी को लगाते हैं तो ऑफ सीजन में उनको अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही मूली का है, मूली जो कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि रबी की फसल है, मूली, पालक, धनिया, तो इनको भी आप कुछ संरचना है जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो आप शेडनेट हाउस में 50% का अगर सफेद शेडनेट लगाते हैं आप तो उसके नीचे में आप देखेंगे कि इस समय धनिया की कीमत करीब 200 से 250 रुपए किलो के आसपास बाजार में बिक रही है। तो अगर आप शेडनेट के नीचे करते हैं तो तापमान जो बाहर का होता है उससे आप 8 से 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड है नीचे रहता है उसके अंदर।
3: क्या वजह हो सकती है इसकी डॉक्टर राकेश, क्या किया जा सकता है?
0: अरबी की फसल में जो पीलापन आ रही है इसका वजह अभी क्या हो सकता है कि आपने, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज्यादा था और इसमें हम गर्मी के मौसम में पानी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जमीन का सरफेस होता है वहाँ पे फंगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो उस अवस्था में आप कुछ फफूंदीनाशी है जैसे कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और उसमें आप ध्यान दें, अगर आपके आसपास में कोई संस्थान है आप वहां से संपर्क कर लीजिए और वहां से विशेषज्ञ को दिखाइए। ये पीलापन होने का एक वजह न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी हो सकती है
3: जी।
0: लेकिन आमतौर पर अभी क्या है कि गर्मी ज्यादा थी, तापमान ज्यादा थी और उसमें आप सिंचाई कर रहे होंगे तो उस अवस्था में भी फफूंदी जनित बीमारी की वजह से भी पीलापन होता है। तो आप फफूंदी नाशी का स्प्रे कर लीजिए, अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो आप उसको की वजह से भी पीलापन होता है तो आप फफूंदी नाशी का स्प्रे कर लीजिए, अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो आप उसको आप जांच करा के और उसको न्यूट्रिएंट की जो है उसकी पूर्ति करें।
1: किसान साथियों, आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय। हमारा जो पौधा है सब्जियों का उसमें कभी कभी सब्जियां नहीं आती है, क्या कारण हो सकता है कि हमारी सब्जियों का जो पौधा है वह काफी तंदुरुस्त होता है? हम समय समय पर पानी डालते हैं, उपयुक्त खाद डालते हैं प्रचुर मात्रा में, उसमें सारा पोषण आहार उसमें देते हैं, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि उसमें हमारी सब्जियां नहीं आती है? तो आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
0: क्या हुआ पीछे कुछ दिनों से, क्योंकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहा तो उसमें आपने देखा होगा भिंडी नहीं, हमारे जितने भी बेल वाली सब्जियां भी है जो गर्मी के सीजन में लगाई गई थी उनमें भी फल आना बंद हो गए थे। तो एक हमारा पोलिनेशन की क्रिया जो है उस समय डिस्टर्ब हुआ है और आप एक तो लगातार नमी बनाए रखिए क्योंकि गर्मी के सीजन में जो जितनी भी सब्जियां हैं उसमें मॉइस्चर को आप कंटिन्यू बनाए रखिए, साथ ही साथ हो सकता है कि आपके उस आसपास में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से भी कुछ रुक रहे हो, तो आप उसमें एनपीके 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और मल्टीप्लेक्स जिसमें सारे

0: माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक बार आप स्प्रे करें और सिंचाई बराबर करते रहें तो निश्चित तौर पे एक बार पुनः भिंडी का स्टार्ट हो सकता है।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों एक बार और चलिए जानते हैं अगर कोई किसान दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इसमें कैसे वह एडमिशन ले सकता है, कैसे इस शिक्षा को ले सकता है और कैसे ये उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: एडमिशन जो प्रक्रिया है, प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आजकल ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होती है, इग्नू की वेबसाइट में जाके या ignu.smart.edu.in करके एक एडमिशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें जाकर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो 10वीं पास का सर्टिफिकेट या 12th पास का सर्टिफिकेट या जैसे भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होता है और साथ उसमें फीस भी आपको उसमें पे कर सकते हैं। सिंपल एक प्रक्रिया है। तो ऑनलाइन आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जैसे आप फॉर्म उसमें सबमिट करते हैं कुछ दिनों बाद आपका कंफर्मेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू आ जाता है या फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाता है।
4: जी बिल्कुल। और इसकी फीस कैसी होती है ये भी जानना चाहेंगे।
3: इसकी जो क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो हमने फीस इसकी बहुत ही कम रखी है। जैसे 6 month का प्रोग्राम है, अगर आप कर रहे हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में आपकी फीस है। और ज़्यादा के प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो STSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस भी माफ कर रखी है, तो उसमें फीस का भी आपको एग्जम्पशन है।
1: किसान साथियों जैसा कि अभी आपने सुना यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी योजनाएं हमें मिल रही है ताकि हम घर बैठे इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर STSC का विद्यार्थी है तो उसे स्पेशल प्रावधान भी दिया जा रहा है, इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहिए। किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: देखिए कृषि शिक्षा के क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में जो मुख्य चुनौती है हमारे जो युवा है उनको कृषि क्षेत्र में बनाए रखना, कैसे हमारे किस तरह से हम युवाओं को कृषि क्षेत्र में बनाए रखते हैं, इसके लिए हमें जरूरत है एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र को एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर बनाए। इनोवेटिव सेक्टर बना से क्या होगा कि आर्थिक रूप से यह क्षेत्र एक आकर्षित क्षेत्र बनेगा ताकि जो युवा है जो कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक सोशल स्टेटस, एक उनको परिवार को एक अच्छी तरह से जीवन यापन एक अच्छी शिक्षा, परिवार को अच्छी शिक्षा, एक सुविधा युक्त एक जीवन जीने का एक साधन मिल सके, इसके लिए हमने कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव क्षेत्र या आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाना होगा। इस आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में खेती के साथ साथ उद्यमी भी विकास करने पड़ेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा एडिशनल स्किल्स डेवलप करके जानकारी प्राप्त करके छोटी छोटी व्यवसाय कृषि आधारित व्यवसाय हम प्रारंभ कर सकते हैं और उसके लिए प्रशिक्षण और शिक्षा काफी अवेलेबल है। कई तरह से एक्सटेंशन सिस्टम भी हमारे पास है, कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे पास है, कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास है और कृषि शिक्षा शिक्षा के नए तरीके जिसमें दूर शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन ये सारे साधन हमारे पास है, इनकी तरह से हम जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट हो उस सेक्टर की प्रशिक्षण प्राप्त करके या उसकी शिक्षा प्राप्त करके पूरी प्लानिंग करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर हम लेते हैं हमारे किसान का सवाल। उन्होंने हमें सवाल किया था कि उनके खेत में उनके बैंगन की जो फसल है उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। चलिए लेते हैं एक्सपर्ट की राय और जानते हैं कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं।
0: दलवीर जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो बैंगन की फसल हम जब लगाए थे तो उस समय आपने

0: आप वैसे ही पूरे खेत में आप घूम के देख लीजिए कि बैगन में अगर कोई शुरुआती अवस्था में कीट लग रहा है तो इसकी छटाई कर लीजिए। और इसके लिए आपने जो स्प्रे करना है इसका आप स्पाइनोसेट का 1 ml 3 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो है ये फ्रूट बोरर जो बोलते फल छेदक कीड़ा है वो रुक जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: किसान भाई को, जैसे कि हम बरसात की गर्मी की जुताई की बात कर रहे थे कि हमने बरसात के मौसम शुरू होने से पहले गर्मी की जुताई की जाती है, किसान भाई को मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि आप उसी टाइम जब खाली खेत हो और जुताई कर लिए हो तो आप अपने जमीन की सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि आजकल सरकार द्वारा भी सॉइल हेल्थ कार्ड का सब जिलों में सब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, उसके हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं। और इसके लिए जैसे हम अनाज वाली फसल है, इसके लिए जैसे 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं, लेकिन सब्जियों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम 20 से 25 टन का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो हम सड़ी हुई गोबर खाद इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो हमें अंतिम जुताई के समय खाद दी जानी होती है, नाइट्रो फास्फोरस पोटास और जिंक और भी हमारे जो तत्व है उसको बुआई के समय दे दीजिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम स्प्लिट डोज में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में हम अपने फसलों को देते हैं, जिससे कि फसलें अच्छे तरीके से चलती है और अच्छा उत्पादन देती है।
0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति की सुनकर प्रकृति को ही सुलझाता हूँ, खेतों में बोता हूँ खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे अविनाश के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, कृषि भूमि का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। बदलते इस पर्यावरण के समय में हमें वातावरण के अनुकूल खेती करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरह दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, साथ ही हमारी कृषि भूमि में भी जो बदलाव देखे जा रहे हैं उनको देखते हुए किसान साथियों, हमें बहुत जरूरी है यहाँ पर हमारे खेतों में हमारे पर्यावरण में एक बदलाव की जरूरत। जी हाँ किसान साथियों, हमें यहाँ पर हमारी मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। हमें तभी पता चल पाएगा कि हमारी जो मृदा है वो अभी कितनी स्वस्थ है। हमारी मृदा परीक्षण के साथ ही हमें हमारी भूमि में उर्वरक और पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। तो किसान साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं।
3: हाँ बिल्कुल मैडम, ये एक्चुअली किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है ऐसे मिट्टियों का भी स्वास्थ्य होता है। और उनको देखो, हम लोग अपना बोली भाषा में हम बता सकते हैं कि आज हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मिट्टियां हैं जो अपनी वो बता नहीं सकती। लेकिन जो उसमें हमारे किसान भाई दिन प्रतिदिन जो भी हमारी खेती की जो गतिविधियां करते हैं उनसे उनको थोड़ा सा पता लगता है कि हमारी मिट्टियां पहले अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उपज हो रही थी, अच्छी फसल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यदि आपकी फसलों की बढ़वार में कुछ कमी आती है या उनमें विशेष प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे किसान भाई को ये पता लगता है कि कहीं कहीं उनकी मिट्टियों में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है। अब ये इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि मिट्टियां बोल नहीं सकती, तो हमको उनका परीक्षण करके जितने भी हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमारे पौधों की बढ़वार के लिए उनकी गुणवत्ता गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं, उनकी हमारी जितने भी हमारे जो सरकारें हैं इन्होंने हर जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं की हैं, उनमें इनका परीक्षण कराना चाहिए, जिससे मिट्टियों में उनकी क्या स्थिति है, मतलब वो कितने किस लेवल तक पैदावार दे सकती हैं कि नहीं दे सकती, क्योंकि ये उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उसमें कोई तरह का विकार यदि उत्पन्न हो गया है उस पर आधारित है। तो हमारे को जैसे मिट्टी परीक्षण इसलिए बहुत जरूरी है, किसान भाइयों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का हम अभी जो बहुत हाई उपज वाली जो किस्मों का यूज कर रहे हैं, फसलों का यूज कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात अभी गुणवत्ता की जो बात आ रही है, तो ये सब चीज हमारी मिट्टियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, और मिट्टियों का स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मृदा परीक्षण के द्वारा ही जांच किया जा सकता है।
0: बिल्कुल जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मिट्टी कुछ नहीं कहती। जी हाँ किसान साथियों, मिट्टी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप और हम में से काफ़ी किसान भाई हैं जो मिट्टी को पहचान सकते हैं, मिट्टी को किस चीज़ की आवश्यकता है, समय समय पर मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है, इस बात से हमारा किसान भली भांति वाकिफ है। परंतु फिर भी हमें यहाँ पर एक बार पुनः हमारी मृदा का परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, हम वातावरण के अनुकूल खेती करते हैं और एक वर्ष में अनुमानित 4 से 5 फसलों की उपज हम लेते हैं। तो किसान साथियों, उपज के अनुसार, हमारी फसल के अनुसार हम हमारे खेतों में अलग अलग कीटनाशकों का, अलग अलग खरपतवार नाशकों का और खादों का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हम जिन अलग अलग फसलों को तो हमारे खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो खेत है, हमारी कृषि भूमि है, वो नहीं बदलती है, वह एक ही होती है। वहाँ पर फसलें हम बदला करते हैं और हम हमारी कृषि भूमि को ना देखते हुए सिर्फ हमारी फसलों को देखकर उनमें कीटनाशकों का, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हमारी कृषि भूमि हमारी फसलों को ही नहीं, हमारी फसलों से जो कीटनाशक, जो रसायन हमारी मृदा के साथ जाके मिलते हैं, क्या हमारी मृदा उसे पचाने में सक्षम है या नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर डालेंगे एक नजर। उससे पहले आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: खेती किसानी सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा और मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी से मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। इसी तरह मिट्टी का प्रबंधन करके भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके लिए खेतों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने का असर फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर पड़ता है।
0: किसान साथियों, अभी आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अभी आइए डालते हैं एक नज़र प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर।
2: प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है।
3: बिल्कुल मैडम, जैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो किसान भाइयों के साथ आज तक मतलब इसमें जो गलती करते हैं वो नमूना लेने में करते हैं। अब जैसे हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि जैसे आपकी दो तरह की फसल होती है, एक होती है सीजनल जो एक सीजन में खत्म हो जाती है, दूसरी पेरिनियल होती है जो वर्षों तक चलती है। तो इन दोनों का जो सैंपल लेने का तरीका है वो उसकी मिट्टी की गहराई पे अलग अलग होता है। जैसे आप पहले जो भी अपना एरिया है उसको पहले आप तीन चीजें आपकी देखनी होगा, एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का स्लोप और एक उसका कणाकार। यदि ये तीनों में उसमें समानता है तो किसान भाई एक हेक्टर तक एक सैंपल ले सकते हैं उसमें कोई। और जो सैंपल जब लेना है तो किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो खेत के चारों कॉर्नर से लेंगे और एक मिडिल से लेंगे, तो ये एकदम गलत तरीका है
4: जी।
3: उनको क्या करना चाहिए, बॉर्डर से दो दो मीटर जगह छोड़ें और जो भी अपना ट्यूबवेल है या अपना कोई बीच में पेड़ है या कोई कंपोस्ट पिट है या कोई बिल्डिंग है, इन जगहों से भी वो अपना दो दो मीटर जगह छोड़ने के बाद ही सैंपल एकत्रित करें। सैंपल की जो गहराई है उसकी जो हम बात कर रहे थे, सीजनल में हम 0 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, मतलब 6 इंच। और जो हमारी बागवानी फसलें हैं या जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो पेरिनियल चलने वाली क्रॉप हैं, इनका प्रोफाइल सैंपल लेना होता है जिसमें 1 मीटर तक के गड्ढे बनाए जाते हैं। वो 1 मीटर के गड्ढे के फिर 3 भाग बनाए जाते हैं, जो एक 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो आपने 4

0: गड्ढे बनाए या 5 गड्ढे बनाए, तो ऊपर ऊपर की मिट्टी का जो है 0 से 30 वाला वो एक जगह एकत्रित कर लेना है, मिडिल वाला जो है उसको एक जगह लेना है और बॉटम वाले को एक जगह। तो ऐसे करके जब भी हम बाग वगैरह बागवानी फसलों और ये पेरेनियल जो भी है हमारी जो कई वर्षों तक चलती है ऐसी फसलों का जब सैंपल लेते हैं तो हमारा 3 नमूना बनता है, और जो हमारे जो सीजनल फसलें हैं उनमें 1 नमूना बनता है। फिर इसके साथ आता है कि किसान को भाई थोड़ा सा उसकी बैक हिस्ट्री, मतलब उसका जो अब तक किसान भाई ने क्या क्या खाद डाले, क्या क्या उर्वरक डाले, कौन कौन सी फसल ली, अच्छा पानी का जो है सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, उपलब्धता है तो उसका क्या सोर्स है, उसमें कोई जैसे पानी का जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो भी थोड़ा उसको, मतलब आजकल लैब में सब जगह इसकी भी टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है, उसका भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टियों में बहुत सारे ऐसे विकार हैं जैसे लवणीयता है या क्षारीयता है वो सिंचाई जल के द्वारा ही आती है।
1: ठीक है,
0: तो इन चीजों को जब हम सैंपल एक बार ले लिए और सैंपल में देखो कई बार किसान भाई या तो बहुत कम मिट्टी लेके लैब पहुंचता है या बहुत अधिक लाता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जगह से 15 से 16 जगह से लेने के बाद उसको इकट्ठा करके उसमें से 300 से 500 ग्राम ही मिट्टी लैब लेके जाना चाहिए।
1: अच्छा, बिल्कुल। आइए अब आगे
2: किसान साथियों, जैसे कि हम चर्चा में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी कृषि भूमि में जो पानी हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं वह पानी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आइए जानते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
0: मैडम, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जैसे पूरे भारत देश की हम बात करें तो हर एरिया की जो हमारा जो पानी का जो सोर्स है, कई जगह नहर हैं, कई जगह तालाब हैं, और ज्यादातर हमारा है जो भूमिगत जल पे हम आधारित हैं, और भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो हर एरिया स्पेसिफिक होती है। अभी जैसे आपका अपना शुष्क एरिया लें जहाँ पे बहुत कम वर्षा वगैरह होता है, उस एरिया में अधिकतर जो हमारा जो भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो या तो लवणीय है या क्षारीयता है। ये क्या होता है, जब किसान भाई इसको जब सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं तो पानी की जितनी मात्रा आप अधिक यूज करोगे उसके साथ साथ उतना ही साल्ट की मात्रा हमारी मिट्टियों में मिक्स होती जाती है। इससे क्या होता है, पानी तो या तो फसल के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या वो वातावरण में वापस के रूप में चला जाता है, लेकिन वो साल्ट है जो भी उसमें लवण है वो मिट्टियों में ही रह जाते हैं, और ये लगातार जैसे आप कंटिन्यूस यदि पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें उसकी ईसी मात्रा ज्यादा है या पीएच मान ज्यादा है या उसमें रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, ऐसे उसके कुछ गुणवत्ता के जो उसके कारक हैं, पैरामीटर हैं, उनके आधार पे उसकी गुणवत्ता जो आकी जाती है, यदि गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जो आज की अभी मिट्टियां आपकी अच्छी है किसान भाइयों की, और ऐसा पानी को जाने या अनजाने में यदि उपयोग करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में उनकी मिट्टियों का लवणीयता और क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा बहुत ही मेजर कारण है जिसके कारण हमारे मिट्टियों का स्वास्थ्य वो हो रहा है। तो मिट्टियों के साथ साथ हमें जल का भी जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर मीना, जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के पास होता है उसमें मिट्टी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां किसानों को मिलती है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जानकारी होती है उसमें?
0: बिल्कुल, जब भी किसान भाइयों को जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है उसमें मिट्टियों के जैसे जो नमूने लिए गए हैं उसके आधार पर उसमें जैविक कार्बन की मात्रा, उसमें उसका जैसे पीएच मान क्या है और विद्युत चालकता क्या है, जो हम लवणीयता की बात कर रहे हैं अभी, क्षारीय लवणीयता, इसके मानक भी उसमें होते हैं। इसके साथ साथ जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, जो हमारे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इन ये सभी जितने भी हमारे जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत आवश्यक है और हमारी जो भारतीय मृदाओं में इनकी कमी देखी गई है, इनको उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके आधार पे जब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखेंगे तो किसान भाइयों का क्या टेस्ट वैल्यू के साथ साथ एक रेफरेंस वैल्यू दी होती है, उससे किसान भाई ये अपना पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मिट्टी का कौन सा जो कारक है, कौन सा पैरामीटर है, वो पर्याप्त है या उससे कम है या ज्यादा है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जैसे हमारा पीएच और हमारी जो ईसी है, विद्युत चालकता का मान है, इसके आधार पर उनको अपनी मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता का पता लगता है। यदि क्षारीय मृदाएं हैं तो उनमें जैसे हमारे जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, दूसरा हमारे जिप्सम, जो आसानी से अपने यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है किसी भी उर्वरक डीलर के यहाँ पे, तो उनका उपयोग करें। दूसरा है लवणीयता, यदि उसमें मिट्टियों में लवणीयता हो गई तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है आपका सिंचाई जल का। सिंचाई जल को सबसे पहले आके यदि उसमें आपकी लवणीयता की मात्रा अधिक है तो सबसे पहले उस जल को रोके, उससे कभी भी सिंचाई नहीं करें। और कोशिश करें कि जैसे अभी आज के दिनों में देखो बरसात हो रही है तो वर्षा का पानी इकट्ठा करें, और जो भूमिगत पानी में देखा वो टेस्ट के बाद पता लगता है कि उसकी किस लेवल की लवणीयता है। यदि कुछ आधारित पर हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो दोनों पानियों को मिक्स करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो है। और ये जो टोटल हमारे 12 पैरामीटर होते हैं जो उसमें स्वास्थ्य।
2: किसान साथियों, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना, हमें पानी कई पानी की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी के अंदर अम्लता और क्षारीयता होती है जो कि हम खेतों में डालते तो हैं लेकिन वहां पर पानी जो होता है वाष्पकृत होकर उड़ जाता है, या आधा कुछ पानी हमारी फसल उसको सोखती है, कुछ मिट्टी सोखती है, लेकिन जो पानी के अंदर की जो अम्लता और क्षारीयता है वह हमारी भूमि में ही रह जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारी कृषि भूमि में नुकसान देखना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, हम चर्चा कर रहे थे हमारे खेतों में जो पानी हम डालते हैं, जो सिंचाई के लिए पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका परीक्षण करवाना, क्योंकि जो पानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अम्लता और क्षारीयता की मात्रा होने से यह हमारी मृदा में कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: बिल्कुल, देखो जैसे हमने बताया कि टेस्ट के साथ साथ उसमें उसकी संस्तुतियां भी दिया होता है
2: जी।
1: और हर सॉयल हेल्थ कार्ड में ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी वो किसान भाई जिस एरिया का है उसमें वहां पे जो भी तीन क्रॉपिंग सिस्टम वहां के इम्पोर्टेंट हैं उनकी संस्तुतियां, उर्वरकों की संस्तुतियां उसमें दी होती है।
2: अच्छा।
1: तो इससे ये किसान भाई सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हम जो उर्वरक जो अनदेखी से किसान भाई, जैसे एक कंपटीशन है किसानों के बीच में कि भाई एक बैग डाला, वो कहता है दो बैग डाला, इसको हम कम कर सकते हैं। और हम मतलब जो हमारी लागत आ रही है किसान भाइयों की उर्वरक के ऊपर, इसको हम बहुत हद तक हम इसका सेव कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है ना, जो आपने जैसे अभी बताया कि अधिक से अधिक जो उर्वरक हम यूज कर रहे हैं तो उससे मिट्टियों के साथ साथ हमारा वातावरण पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा, देखो एक तो किसान का अपना इनपुट कॉस्ट जो उसका मतलब फर्टिलाइजर पे जितना पैसा खर्च कर रहा है, यदि जैसे बहुत सारी अभी की जो विश्लेषण हुआ है जितना भी नमूना उसमें ये पाया गया कि हमारा जैसे फास्फोरस की मिट्टियों में बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है, तो किसान भाई अपना जो फास्फोरस के उर्वरक हैं, जो जैसे आपका डीएपी है, आपका एसएसपी है, तो इनकी मात्रा में जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड में लैब ने दिखाया है कि भाई आपको कितना यूज करना है तो उतना ही यूज करें। अननेसेसरी आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका कोई बेनिफिट इकोनॉमिकली मतलब उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, साथ के साथ आप वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो एक तो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान भाई अपनी जो कॉस्ट जितना लगाते हैं फर्टिलाइजर पे उसको बचा सकते हैं। दूसरा हमारे वातावरण का है कि जिससे हम कम से कम फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और एक हमारी मिट्टियों का जो स्वास्थ्य है, जो लगातार हम जैसे कि हम जितना डेफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो आपकी मिट्टियों में चार पोषक तत्वों की आवश्यकता है लेकिन आप दो ही डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो दूसरे और पोषक तत्वों का भी जो उसमें से निकास हो रहा है वो बहुत अधिक हो रहा है, धीरे धीरे वो मिट्टियां कमजोर होती जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे अभी किसान भाई ज्यादातर हमारा है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे आधारित हैं, लेकिन मिट्टियों का विश्लेषण ये बताता है कि उनमें सल्फर की भी कमी है, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में जाओ तो आप जैसे आपका जिंक है, आयरन है, इवन बोरोन की बहुत ही अधिकता में अभी कमी पाई जाती है। तो जब तक किसान भाई जो हमारे मिट्टियों में जिस पोषक तत्व की कमी है उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक उनको लाभदायक उनकी उपज और उनको उतना फायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये है कि उनको मिट्टियों जो उर्वरकों पर लागत है उसको भी घटा रहा है, मिट्टियों का स्वास्थ्य भी बन रहा है, वातावरण का स्वास्थ्य बन रहा है और साथ ही साथ उनको उनकी जो उपज है वो उसमें काफी मुजाफा उसमें हो रहा है।
2: डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे कि ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये तो बेहद महत्वपूर्ण होते ही है फसल के लिए, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये फसलों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
1: ये बहुत ही बड़ा और अच्छा सवाल है और किसान भाइयों को इसको देखो एक छोटी सी भाषा में यदि हम समझाएं तो उसको ऐसे मानो जैसे हमारे खाने में नमक, हम कितना नमक खाते हैं लेकिन उसका इम्पोर्टेंस देखिए कि आपका पूरा जो खाने का स्वाद है वो उस पर आधारित है। ऐसे ही हमारे पोषक जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है पौधों को, लेकिन यदि उनकी कमी पाई गई तो जो आपके जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, उनकी दक्षता जो हम उपयोगिता बोलते हैं कि हमारी यूज एफिशिएंसी उनकी बहुत कम है, ये प्रभावित होती है। दूसरा जैसे अभी आपने देखो कोविड के केस में अभी हमारे ज्यादातर देखा कि हम सब लोगों ने जिंक की टेबलेट खाई, यदि हमारा देखो जिंक में मिट्टियों में कमियां हैं और उसी के कारण हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है, खाना आ रहा है, उसमें भी उसकी पर्याप्तता नहीं है, तो इस कारण से हम जितना फूड ले रहे हैं उससे हमारी जिंक की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रही। तो आप देखो ये मतलब उपज के साथ साथ अपना जो अपनी प्रोड्यूस की क्वालिटी है, स्पेशली जो मिनरल कंटेंट है हमारे खाद्य पदार्थों में, तो उनमें भी बेहद जरूरी है। और जो विशेषकर जो हमारे जो हमारी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन बिल्कुल मतलब इसी पे दानों पे आधारित हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनको एक अच्छी गुणवत्ता वाले फुल फोर्टिफाइड जो हम कहें ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए ये सभी पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान साथियों, आइए जानते हैं मृदा कार्ड से हमें क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या क्या उपयोग है, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: मैडम, अभी जैसे आप देखें तो हमारे भारत सरकार ने इसके जैसे ज्यादातर हमारे किसान भाइयों को मतलब सभी को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं, और भारत सरकार की तरफ से कि हर 2 साल में इसको रिपीट करना है और किसान भाइयों को मतलब 2 साल में उनका जो मृदा का स्वास्थ्य है, क्योंकि उनको जो परामर्श की गई है जिसके उर्वरक में और खादों की परामर्श की गई है उनको उपयोग करते हुए 2 साल में क्या बदलाव मिट्टियों में आया है और उसके इसका फिर से हर 2 साल में इसका साइकिल किया गया है। अभी भारत सरकार ने और एक अच्छा जो इसी में इसी योजना के तहत कर रहे हैं कि एक गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं और गांव को अडॉप्ट करके उसका सभी पूरे गांव का हर खेत उससे मतलब मृदा का नमूना लिया जाए, विश्लेषण किया जाए और उनको मतलब एक जैसे किसान भाइयों को क्या होता है ना कि हम लोगों ने सब सॉइल हेल्थ कार्ड दिया लेकिन बहुत किसान भाई इसको लेके घर बैठ गए, तो ये एक ठीक नहीं है किसान भाइयों को कि भाई आपको कोई मतलब भारत सरकार ने इतना मेहनत करने के बाद इतना लेबोरेटरियों ने उनका परीक्षण किया, उनका जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया उनको दिया और उसको उपयोग नहीं कर रहे, तो ये एक क्या है ना कि उनको एक लाइव डेमो दिखाने के लिए अभी हर गांव में ये डेमोस्ट्रेशन लग रहे हैं और उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो आप जो अपनी प्रैक्टिस अपनाते हैं, जो फार्मर प्रैक्टिस करता है कि आप कितना खाद डालते हो उसकी लागत इतनी आती है, हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कह रहा है कि भाई इतना आपका उर्वरक डालना चाहिए, उससे आपको अब दोनों का जो कंपेयर आप करो तो आपको उनकी जो लागत है उसमें बहुत फर्क है
2: जी,
1: बहुत आपका फर्टिलाइजर सेविंग है और इससे क्या हो रहा है उनकी उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों में सेम उपज मिल रहा है
2: जी,
1: तो
2: जी।
1: इससे देखते हुए किसान भाइयों को एक समझ में आ रहा है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो कहीं कहीं गलत है, तो ये एक जो भारत सरकार के पहल है कि नहीं अभी हमने ये किया लेकिन जो किसान भाई कुछ किसान भाई 80% लोग अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी 20% किसान ऐसे हैं कि वो अभी भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अपने घर पे रखे हुए हैं और उसके आधार पे उनके जो परामर्श हैं उनको नहीं मान रहे, तो इसी के आधार पे अभी भारत सरकार की ये पहल है कि हमें गांव एडॉप्ट करना चाहिए वहां।
0: जी हाँ किसान साथियों, अगर हमें हमारे पास हमारा मृदा परीक्षण कार्ड पड़ा हुआ है और उसका हमने समय पर उनका हमारी मृदा का हमने टेस्ट भी करवाया हुआ है लेकिन अगर हमने डॉक्टर ने हमें जो सलाह दी है अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार हम हमारे खेतों में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यह किसी काम का नहीं है। तो किसान साथियों, जो भी हमारे पास जो मृदा परीक्षण कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए, समय समय पर हमें परीक्षण करवाते रहना चाहिए और इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

0: समेटे। किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए हमने हमारे खेतों में अंधाधुंध रसायनों प्रयोगों से अभी खाद्यान्न फसलों की मात्रा तो हमने बढ़ाई है, परंतु रसायनों के इसके अंधाधुंध प्रयोग से अभी हमारी मिट्टी न केवल ठोस बल्कि अन उपजाऊ होते जा रही है। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं और चर्चा करेंगे कैसे हम इससे बचा जा सकता है और हमें अभी प्राकृतिक खेती को कैसे करना चाहिए। तो आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों या यूं कह लीजिए कुदरती सामग्री पर आधारित है। ये खेती का ऐसा तरीका है जो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाता है और फसलों को जलवायु परिवर्तन की मार का सामना करने के काबिल बनाता है। इस तरीके में लागत कम लगती है, पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित है और जमीन को सेहतमंद बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि पौधे अपना सारा पोषण मिट्टी से ही लेते हैं। मिट्टी जितनी ताकतवर होगी, उपज भी उतनी ही ज्यादा और क्वालिटी वाली होगी। दरअसल रसायनों ने न सिर्फ मिट्टी को कमजोर किया है बल्कि फसलों को भी जहरीला बना दिया है। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसल को खरीदने से मना कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन सिंचाई के पानी के साथ भूमिगत जल में जा मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। यही वजह है कि आज प्राकृतिक खेती समय की मांग है और जरूरत भी।
2: प्राकृतिक खेती, जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज करते थे, और उसमें जो है जो नेचर से मिला, जिस पद्धति को, उसके सारे अंग होते थे उसमें। जैसा कि मैं कहूं तो उसमें फसल भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, औषधीय वर्ग पौधे हैं इत्यादि, ये सारी चीजें एक साथ होती थी, एक समन में बनाता था और उन्हीं में एक दूसरे के वो पूरक होते थे। मिट्टी है तो मिट्टी में उसमें केचुए है, केचुआ के साथ साथ उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों को जो है, जो उनकी उर्वरता चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल मल्च का काम कर रही है, जिससे कि आप जो है उसमें जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक बनाए रहती है। और उसमें मिनिमम जो मैं कहूँ, जितना कम से कम सस्य क्रियाएं करें, तो वहां प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है।
1: मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक तत्व की भी कमी हो जाए तो बाकी 15 तत्वों का भी बहुत ज्यादा फायदा फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक कृषि के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने की वजह से जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है और तनों की मोटाई के साथ साथ पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है।
2: इनमें जो उत्पाद जो पैदा होता है शुरुआती दौर में, तो मैं कहूंगा कि कुछ गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद के वर्ष में जब वहां जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तब उत्पादन करीब 15-20% तक देखा गया है। इसमें अच्छी बढ़वार मिलती है, उत्पादकता अच्छी मिलती है।
1: प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों की सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती की इस विधि में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार भी ज्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की, इसलिए इन्हें इस तकनीक का जनक कहा जाता है। इन्होंने नागपुर में कृषि की स्नातक डिग्री हासिल की और कमाल की बात तो ये है कि इनकी पूरी पढ़ाई रासायनिक तरीकों पर ही आधारित थी, लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसे वाकये हुए कि इनकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने खेती की एक ऐसी तकनीक इजाद की जो रसायन रहित है और इसका नाम दिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1972 में सुभाष पालेकर ने अपने फार्म पर रासायनिक खेती पर ही काम शुरू किया। बरसों तक वो इसी तरह काम करते रहे। प्राकृतिक खेती का विचार वेदों और उपनिषदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में मौजूद कुछ सूत्र इन्हें प्राकृतिक खेती की ओर ले गए। इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक शोध शुरू किए। दूसरी ओर वो महात्मा गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही वजह है कि वो खेती के ऐसे तरीके तलाशने लगे जिनसे मिट्टी में मौजूद जीवों की रक्षा हो सके। ऐसा तभी मुमकिन था जब खेत जहरीले रसायनों से मुक्त हों और मिट्टी की सेहत मजबूत हो। डॉक्टर पालेकर ने खेती करते समय ये भी पाया कि 1972 से 1985 तक तो रासायनिक खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटनी शुरू हो गई। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ काम करते हुए सुभाष पालेकर को पता चला कि जंगलों में पौधों के विकास के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़वार के लिए जरूरी सभी साधन प्रकृति से ही हासिल हो जाते हैं।
3: हमारे विदर्भ के जो आदिवासी क्षेत्र है सातपुड़ा पहाड़ी, उसमें मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि जंगल के पर्यावरणीय व्यवस्था का आदिवासियों के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, ये मेरा विषय था। तो मेरा पढ़ाई भी चलती थी और आदिवासियों में मेरा कार्य भी चलता था। तो मुझे हमारे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में कि भाई भूमि में कुछ भी नहीं होता, अगर आपको फसल के उत्पादन लेना है तो ऊपर से खाद डालना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं जंगल में जाता था मेरी प्रोजेक्ट के दौर में संडे को रविवार को, तो वे विशाल का पेट जंगल के घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता मुझे बता रहे थे कि भाई देखो यहाँ तो कोई खाद नहीं है, हर साल अनगिनत फल लगते हैं तो खाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर शोध किए और 6 साल की सख्त मेहनत के बाद बिना रसायनों वाली तकनीक तैयार करने में कामयाब हो गए। नाम दिया कम लागत प्राकृतिक खेती। अब वो इसे पूरे भारत में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार भी उनकी भरपूर मदद कर रही है, यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
3: भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि माँ है, महासागर है, केवल एक ही है। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं, जो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते, पके हुए नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। जड़ों को चाहिए पका हुआ। ये पकाने का काम अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। सुभाष पालेकर प्रकृति कृषि में देशी गौ माता के गोबर गौमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, भूमि में डालते हैं, तो जीवाणु का कल्चर ही होता है क्योंकि अनंत कोटि जीवाणु उसमें होते हैं। ये जीवाणु भूमि में जाते जब पालेकर कृषि में आप जीवाणु घन जीवाणु डालते और वो जो पकाते खाना और जड़ों को उपलब्ध करते।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में भी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उप योजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 35 जिलों की 98,670 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित किया है। इस पर 19,772 लाख रुपए का खर्च आना है और 51,450 किसानों को फायदा मिलना है। अकेले प्रयागराज जिले में 1,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत आ गई है, जो यहाँ के 913 किसानों को फायदा पहुँचा रही है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो।

0: प्राकृतिक खेती द्वारा उगाई गई जो दलहन है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड से जो आती है या नॉर्थ ईस्ट से जो आती है, वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये होती इसलिए है क्योंकि उसको नेचुरल तत्व मिल रहे हैं जो उर्वरक और कीटनाशकों से परे रहता है, और यही वजह है कि उसकी खाने में मिठास है, बहुत लोग उसे लाइक करते हैं। और बाजार भाव, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे उत्पाद अगर हम बाजार में, अगर प्रमाणित है, सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और इसे हम अगर बाजार में उतारते हैं तो ये हमें 20-30% तक ज्यादा मुनाफा देती है।
1: खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें घर पर मौजूद कुदरती सामग्री से बन जाती है। इसमें खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन पांच चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है। डंडा क्लॉकवाइज घुमाना है और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देना है। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गोमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढककर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6 से 7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं।
0: बहुत हद तक ये बात सत्य है कि अगर जहां भी देखा गया है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहां जो पौधे या जो हम खेती करते हैं वो पौधों में देखा गया कि प्रायः उनमें कई सूक्ष्म जीव जो उनके जड़ों में होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उनके द्वारा कई सूक्ष्म तत्व पौधों को मिले रहते हैं, और इसके वजह से ही पौधे काफी सुदृढ़ होते हैं और हेल्थी होते हैं। उन पर रोग और कीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।
2: रासायनिक कृषि में संकर बीजों का उत्पादन और जनुक रूपांतरित बीजों का उत्पादन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का उत्पादन देशी बीजों से ज्यादा मिलता है, हमें मान्य है, हम कबूल करते हैं। लेकिन सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज्यादा मिलता है, हमने सिद्ध कर दिया है, हमें मॉडल खड़े, इसलिए हम देशी बीजों का ही प्रचार करते हैं। नंबर दो, एक देखा गया है कंपेरेटिव स्टडी में, देशी बीजों में पोषण मूल्य, औषधि मूल्य रासायनिक खेती में पैदा हुए संकर बीजों से, पौधों से ज्यादा होते हैं, कई गुना ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है मानव का पोषण अगर करते हैं तो देशी बीजों से पैदा प्राकृतिक फसलें करती है, रासायनिक फसलें नहीं करती।
1: किसानों को अक्सर मौसम की मार भी झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। प्राकृतिक खेती दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो रही है, खास तौर से कर्नाटक के किसान इसे काफी पसंद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की मार और जलवायु में हो रहे बदलाव को भी आसानी से सहन कर लेती है।
0: जो मौसम में बदलाव दिखता है, अगर अधिक बारिश हो जाए तो गलना शुरू करेगा, तो वहां फफूंद के अगेंस्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर प्राकृतिक खेती में देखा गया है कि उसमें क्षमता रहती है, अवरोधी क्षमता रहती है। इसी तरह टेम्परेचर का भी अगर बढ़ना घटना, अगर मॉइस्चर की भी अगर कमी और घटता है तो इसमें जो है जो पत्तियां गिरी रहती हैं वो मॉइस्चर को रोके रखती हैं। तो इस तरह से अगर ड्राउट सिचुएशन भी आता है तो ये जो नेचुरल फार्मिंग वाले जो किसान होते हैं उनके फसल देखा गया है कि बच जाते हैं। तो ये इसमें एक, मैं कहूं कि प्राकृतिक इसमें एक ऊर्जा जो है सभी का समन्वय ही इस खेती को सक्सेसफुल बनाता है।
1: खेती में लगातार बढ़ रही लागत से किसान परेशान हैं।

0: रसायनों ने जिस तरह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर वार किया है, उसने लागत को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में प्राकृतिक खेती नई उम्मीदें जगा रही हैं। बढ़ती लागत और रसायनों से परेशान बहुत से किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। देसी गाय पालन करने वाले किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती और भी आसान है, क्योंकि ये विधि देसी गाय पर आधारित है। गुजरात के मनोज सोलंकी गाय के गोबर से न सिर्फ खाद बनाते हैं, बल्कि प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी तैयार कर रहे हैं।
1: प्राकृतिक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जीरो बजट खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है, साथ ही लंबे समय तक मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी प्राथमिक जरूरत है पशुपालन, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और गोबर से बनने वाली खाद भी।
2: एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की जरूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है। और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो, उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है, वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है, और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है वो ये प्रक्रिया में भागीदार है, ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है।
1: कृषि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, जिससे खेती के लिए जरूरी प्राकृतिक चक्र में संतुलन बना रहे।
2: के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल ना करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं, तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है, तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो ना हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। जमीन को जैसे हमारी जमीन आज मक्खन जैसी हो गई, हम जमीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल, कई जीव जीवात है जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और जमीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। जमीन है भौतिक तरीके से, जमीन है बायोलॉजिकल तरीके से, और जमीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से, मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना जरूरी है। और आज मेरी जमीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है, और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है, शुरुआत में हमें ज्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूं भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूं तो बोल सकता हूं कि गाय के गौशाला का चार प्रोडक्ट होता है, एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं, हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है कभी कभी ज्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं, और लोगों को गाय की गुणवत्ता जो दूध का साइंस है उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं।
3: किसान साथियों, यहाँ पर हमें तालमेल बिठाने की बात कही गई है, हमें प्रकृति के साथ, हमारी खेती के साथ और हमें खुद, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हमारी प्रकृति ही इन उपज को तैयार करती है, उसे बनाने का सारा भागीदार उनका है, हम सिर्फ इसमें सहयोगी हैं। तो किसान साथियों, हमें मिट्टी को भी हमें अपना समझ के इसमें कम से कम रासायनिकों का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याविल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्याविल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्याविल नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: कभी हमने

0: अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
2: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं गोपाल दास जी। गोपाल दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
3: जरूर जरूर जरूर। मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत, आपकी टीम को सबको बधाई देता हूँ इस अच्छे से रेडियो प्रोग्राम को आप लोग चला रहे हो।
1: शुक्रिया सर।
3: काफी अच्छी तरीके से और काफी लोग को आप लोग ने मौका दिया है मैं अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर दिया है ये सबके लिए और मुझे भी मौका मिला इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं वैसे भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ
1: जी।
3: जैसे आपने कहा मेरा नाम गोपाल दास है, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं भिलाई स्टील प्लांट में एज ए, अभी फिलहाल तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं एज ए रिटायर्ड ऑफिसर मान के चलिए कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ भिलाई स्टील प्लांट का
1: जी।
3: और भिलाई स्टील प्लांट आपको जैसे पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये फेमस फॉर रेलवे ट्रैक्स
1: जी जी जी।
3: जो आप पूरे भारतवर्ष में जो रेलवे ट्रैक्स में आप जो भी सफर करते हैं
1: जी जी,
3: तो रेल प्रोडक्शन के लिए फेमस है भिलाई स्टील प्लांट। और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वेस्ट वेस्ट, लेकिन खास करके रेल प्रोडक्शन जो ट्रैक बनती है अपनी
1: रेल ट्रैक,
3: रेलवे ट्रैक, वो भिलाई स्टील प्लांट का ही प्रोडक्ट है।
1: बहुत खूब।
3: जो पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ है, इवन दो भारत के बाहर भी है, कुछ कंट्रीज में भी सप्लाई करते हैं हम
1: जी।
3: तो मैं ऐसे ही शॉप में ही था, स्टील मेल्टिंग शॉप में, जहां पर मैं उसकी सेमी फिनिश प्रोडक्ट ब्लूम बनाया करता था।
1: वाह।
3: और ऑपरेशन में था तो मेरे हाथ के ही बहुत सारे सेमी फिनिश प्रोडक्ट गए हैं जिसके माध्यम से रेल ट्रैक तैयार हुआ और जो भारतवर्ष में फैला हुआ।
1: क्या बात,
3: ये मान के आप चल सकते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगता होगा ये सोच के कि साहब आपके हाथ से बनी हुई चीजें हैं जो पूरे हिंदुस्तान की सेवा कर रही है।
3: सेवा कर रही है। तो ये तो हुई मेरे प्लांट लाइफ की बात। और मैं, मुझे सिंगिंग का शौक तो ऐसे बचपन से ही था
1: जी,
3: जैसे आप मेरे गाने में सुनेंगे जैसे शौक था
1: जी,
3: मुझे
1: जी, जी।
3: लेकिन मैं बेसिकली बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ
1: जी।
3: तो आपको पता होगा बंगाली में म्यूजिक का थोड़ा सा कल्चर थोड़ा ज्यादा है।
1: जी हाँ बिल्कुल सही।
3: तो खास करके वहां पर फीमेल को ज्यादा सिंगिंग सीखने के लिए
1: प्रोत्साहित किया जाता,
3: कहा जाता है कि आप प्रोत्साहित किया जाता है कि आपको सिंगिंग सीखना ही है
1: जी।
3: ऐसा हमारे में माना जाता। तो वो सिंगिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फादर ने हमारे सिस्टर्स के सिंगिंग के लिए टीचर्स को बुलाया करते थे, वो घर में आया करते थे और सिस्टर्स लोग को सिखाया करते थे। मेरे से तीन सिस्टर्स और बड़े थे, उनके बाद मैं हुआ। तो सिस्टर्स लोग गाना सीखते थे तो मैं, मुझे तो मौका नहीं मिला सीखने का। हाँ जरूर मैं सुनता जरूर रहता था। तो सुनने के कारण आप घर बहुत सारे गुरुओं का आप बात सुने होंगे कभी, उन्होंने जो कहा है कि आप सुनो गाने को, तो सुनना बहुत जरूरी है। ताल और म्यूजिक इसको आप जितना सुनेंगे उतना आपका ईयर ट्रेनिंग होगा। तो मैं सीखा नहीं लेकिन मेरा ईयर ट्रेनिंग जरूर हो रहा था।
1: बहुत बढ़िया।
3: बहुत सिस्टर्स लोग सीख रहे थे तो इसलिए मुझे सुर ताल का ज्ञान बचपन से ही हो गया था।
1: वाह।
3: तो मैं वो सीखते हुए मतलब ज्ञान होता, लेकिन उसके बाद मैं फिर ऐसा कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग कभी सिंगिंग का नहीं लिया। हाँ कॉलेजों में मैं कुछ परफॉर्म जरूर किया, कॉलेज में परफॉर्म किया और लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो पाई, उसके बाद मेरी पढ़ाई और नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, बच्चों को बड़ा करना, ये सब के आपाधापी में मैं सिंगिंग सीख ही नहीं पाया। इवन दो मैं प्लांट लाइफ में भी हमारे फंक्शंस हुआ करते थे, डिपार्टमेंटल हो गए, तो उसमें भी काफी लोग गाना गाया करते थे, लेकिन मुझे लोग गाते थे तो मुझे लगता था कि मैं परफॉर्म, मैं भी जाके गाऊं क्या, लेकिन मुझे एक अंदर से एक फियर था किस चीज का कि मैंने सीखा नहीं, तो पता नहीं मैं स्टेज में आऊंगा कैसे गा पाऊंगा, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो एक फियर जैसा था, तो इसलिए मैं कभी भी वहां परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मैं रिटायर होने के बाद 2018 में मैं रिटायर हुआ लैस्टिक प्लांट से, उसके चार साल बाद मैं ऐसे मीडिया ऐसे फेसबुक और ये सब देख रहा था, तो मुझे कुछ एक सिंगिंग क्लास कहीं ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन टीचिंग का ऐसा कुछ वीडियो देखने को मिला, तो मेरे मन में तो एक सिंगिंग की सीखने की इच्छा तो थी पहले से, तो मैंने फिर वो म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लिया, वहां से जो मेरी जर्नी सीखने की चालू हुई आज तक चल रहा है, अभी भी सिंगिंग सीख रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, स्टार मेकर भी गा रहा हूँ, और मेरी लर्निंग अभी तक है जो मेरी बन नहीं हुई है और मैं लगातार सीख रहा हूँ, तो ये मेरी सिंगिंग सीखने की जर्नी जो चल रही है। इवन दो मैं आज जो भी गाना मैं गा रहा हूँ या मैं लोगों के पास पोस्ट कर रहा हूँ, इधर पोस्ट कर रहा हूँ, उधर पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट के जो मेरे बॉसेस थे उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा गाते हो लेकिन आपने कभी भी प्लांट में इतने फंक्शंस हुए कभी हमें सुनाया नहीं, तो ये आज वो बोलते, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं शायद अच्छा गा रहा हूँ, सभी लोग बाग मुझे तारीफ कर रहे हैं, मैं गा सकता हूँ करके। तो ये मेरी एक जर्नी है जो आप म्यूजिक में आने की और सीखने की, और इस कारण मैं हो सकता है आप लोग तक पहुंच पाया हूं।
4: जी बहुत खूब। तो दोस्तों सुना आपने गोपाल जी की जीवनी किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और सुनते हैं गोपाल जी के ही इस गीत को।

0: बहुत बहुत बढ़िया गीत, बहुत ही प्यारा स्टार्ट। गोपाल जी, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: फादर का उस समय तो ऐसा था, जो फादर मदर जो बोल दिए वही बन जाओ। उस समय इंजीनियर डॉक्टर का क्रेज काफी था हमारे समय में, तो मेरी जो वैसे इच्छा थी डॉक्टर की, लेकिन फादर लोग का एक कंसेप्ट था उस समय कि उस समय इंजीनियर मेल, पर्टिकुलर मेल लोग इंजीनियर साइड ज्यादा जाया करते थे, तो इसलिए मुझे उसी साइड में उन्होंने प्रोत्साहित किया और मैं फिर इंजीनियर बन गया, पर बनना चाहता था डॉक्टर।
0: तो दोस्तों, आपने सुना कि गोपाल जी यूं तो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन डेस्टिनी ने उनको इंजीनियर बनाया। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और प्यारा सा गीत गोपाल जी की आवाज में।

0: गोपाल जी, आप संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, तो आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
1: ऐसा है कि मुझे ओल्ड सिंगर जितने भी थे मुझे सभी काफी पसंद थे, क्योंकि सबका एक डिफरेंट वॉइस कल्चर था और सब अपने अपने जोनर में अच्छे सिंगर्स हुआ करते थे। उनके गाने में इमोशंस भी काफी हुआ करते। लेकिन आप जहां तक पसंदीदा सिंगर्स की बात करेंगे तो मेरे पसंद में मोहम्मद रफी जी काफी मेरे पसंदीदा सिंगर्स में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट जॉनर्स के गाने इतने अच्छे गाते थे। खास करके मुझे इसलिए भी पसंद था कि उन्होंने जो भी गाना गाया वो मेरे दिल को छू जाता, छू
0: जी
1: जाया करते। तो
0: जी
1: यही कारण है कि मैं मुझे उनके गाने काफी पसंद है। और ये भी सुना था कि वो काफी अच्छे इंसान भी थे।
0: जी
1: ये जो मैं मेरे कुछ स्टार मेकर के माध्यम से मेरे कुछ अच्छे पुराने ओल्ड एज फ्रेंड्स भी बने हैं, जो एक समय उनके घर जाया करते थे मोहम्मद रफी के,
0: ओ माय गॉड, ओके
1: जो आज मेरे स्टार मेकर के थ्रू मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं जो बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने वो बचपन में पंजाब से उनके मोहम्मद रफी के घर आया करते थे उनके उनके गाना सुनने के लिए। तो वो उनके फैमिली से भी रिलेटेड है, उनके घर के फैमिली से परिचय उनका। तो बताया था कहते थे कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उन्होंने जो देखा तो वही मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि ये भी मैं सुना था। तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा कि एक अच्छे इंसान होने के साथ इतने बेहतरीन सिंगर भी थे, तो वही मेरे दिल को छू जाता है उनकी बातें और उनके सिंगिंग को,
0: बहुत
1: खासकर उनके
0: बढ़िया,
1: सिंगिंग को लेकर।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो दोस्तों, गोपाल जी
1: जी
0: के फेवरेट फेवरेट कलाकार सिंगर मोहम्मद रफी साहब हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं गोपाल जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत सुंदर गीत। गोपाल जी, अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई जिन्न या कोई देवता आपको मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे उससे? तीन तीन इच्छाएं।
1: समीर जी, अब आप सही में, एक इच्छा तो मेरी काफी थी, तो उस वो एक इच्छा में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा।
0: जी जरूर।
1: ये जो मैं जो सिंगिंग नहीं सीख सका
0: जी
1: बचपन से, वो मेरे, मैं काफी लोगों से कभी कभी ये जरूर कह देता हूं कि काश मेरा बचपन लौट जाता और मैं सिंगिंग बचपन से सीखता।
0: ओके।
1: तो मेरी ये एक, मैं जिनमें से ही कहूंगा कि मुझे मेरा बचपन लौटा दे, जिससे मैं अपना बचपन से सिंगिंग सीखना चालू करूं दोबारा, इससे एक अच्छा सिंगर बन सकूं। और खास करके मुझे क्लासिकल सिंगिंग में बहुत शौक है, मैं तो क्लासिकल सिंगिंग में मैं महारत हासिल करना चाहता हूं।
0: बहुत बढ़िया।
1: क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग एक ऐसा सिंगिंग है जो जो आदमी अगर सीख ले, आप जितने भी सिंगर्स बोलेंगे, आप जैसे खास करके लता मंगेशकर जी बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगिंग सीखते थे, उसके बाद ही तो आज इतने बड़े नाम है उनका। तो क्लासिकल सिंगिंग से क्या है ना, बेस एटलीस्ट नॉर्मल गाने वालों का बेस अच्छा जरूर हो जाता है। तो वो मेरी एक इच्छा थी कि मैं बचपन मेरा लौटा देता और मैं बचपन से ही क्लासिकल सिंगिंग सीखता और फिर और सिंगिंग करता उसके अलावा
0: जी।
1: तो ये एक मेरी इच्छा है, बोल सकते हो जो एक ये होता है। और दूसरा, मेरे परिवार से, मुझे मेरे अपने परिवार से बहुत मोहब्बत है
0: जी, बिल्कुल।
1: क्या कहूँ, ये परिवार मुझे अगले जन्म ही मिले, कहूंगा कि यही परिवार मुझे अगले जन्म ही मिले।
0: क्या बात है।
1: और सबसे खास आज का जो माहौल है, आप तो देख ही रहे जैसा भी है, तो मेरी यही इच्छा है कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। तो दोस्तों, हम भी प्रार्थना करेंगे कि गोपाल जी को आपका बचपन वापस मिले और वो दोबारा से क्लासिकल संगीत को सीखें। तो चलिए इस बीच में उनके गाए हुए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं।

0: बहुत प्यारी गायकी, बड़ा ही प्यारा गीत। गोपाल जी, आपको और बेहतर समझने के लिए हमें बताइए ना, आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए।
1: जरूर जरूर समझिए। मुझे ट्रेवलिंग का काफी शौक था
0: जी,
1: तो मैं पूरी दुनिया घूम लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे भी काफी जगह, इंडिया में तो काफी जगह घुमा हूँ
0: जी।
1: जब बच्चे छोटे थे, बच्चों को छोटे छोटे रहते हुए मैं उनके साथ, परिवार के साथ खूब घुमा हूँ। इवन तो छोटे बच्चे को रहते हुए मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह हिल स्टेशन में काफी ले जाया करता
0: जी।
1: क्योंकि मुझे समर के समय में, मुझे थोड़ा वाइफ मेरी एक्चुअली फिजिक्स की लेक्चर है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनका भी क्या है, गर्मी की छुट्टी होती थी और गर्मी की छुट्टी होने के साथ साथ मैं भी अपने प्लान करता था कि मुझे भी गर्मी की छुट्टी में प्लांट से मैं छुट्टी लिया करता था। वैसे ही मेरा प्लानिंग करके मैं उस गर्मी में छुट्टी में छुट्टी ले लिया करता था और हिल स्टेशन जरूर चले जाया करता। तो और तो मैं पर्टिकुलरली समर में मई जून के आसपास मैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे छोटे बच्चे थे उसको लेके, मिसेस को लेके मैं अकेले ही हिल स्टेशन चले जाया करता था। जितने भी हिल स्टेशन है ठंड, जहां थोड़ा ठंड रहे गर्मी में, वहां जरूर जाया। तो ट्रेवलिंग का मेरा काफी शौक था। इवन तो मैं बाहर भी, यूरोप कंट्री भी दो बार यूरोप जा चुका हूँ और एशिया में भी ऐसे कुछ जगह जा चुका हूँ। तो ये मेरा घूमने का काफी शौक है, अभी भी शौक है। तो अभी भी मेरा कुछ प्लान चल रहा है कि मैं और जगह को घूमने जाऊं।
0: बहुत
1: एक मेरा शौक है ट्रेवलिंग का शौक है, दूसरा है मेरा गार्डनिंग का शौक है।
0: अच्छा,
1: गार्डनिंग का काफी शौक है। तो मेरे घर में ही मैं जनरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाता हूँ
0: जी,
1: और ये ठंड के समय मैंने काफी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मतलब ये करके घर में ही पैदाइश करके मैंने घर में काफी यूज किया हम लोगों ने ऑर्गेनिक फ्रेंड
0: जी।
1: तो ये गार्डनिंग का शौक है। और तीसरा मेरा सिंगिंग जो है, जो पहले नहीं कर सका था, अब मैं इसको बरकरार रखा हूँ, अब मैं लगातार सीख ही रहा हूँ। मैं तो एज ए लर्नर सीखता रहता हूँ। गाना तो मैं सेकेंडरी रखा हूँ, मतलब गाना तो मैं सेकेंडरी रखता हूँ, मैं सीखने का मेरा जो है एक बोल सकते जुनून है कि मैं सिंगिंग में कितना बेहतर कर सकता हूँ। और पर्टिकुलरली मैं ऐसे सॉन्ग सिलेक्ट करता हूँ जहां से मुझे कुछ सीखने को मिले। तो मेरी ये हैबिट ही है कि मैं कुछ ऐसे ही सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ जहां से मुझे लगता है कि ये गाना थोड़ा डिफिकल्ट है और इसे गाऊं तो मैं कुछ सीख सकूं
0: जी।
1: तो मैं इसीलिए मैं सिंगिंग पे, लर्निंग पे ज्यादा जोर देता हूँ और मैं सीख रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं गोपाल जी की आवाज में।

0: थैंक यू।
1: बहुत बहुत प्यारा गीत। गोपाल जी, आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा आज तक की डेट में आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
2: समीर जी, मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर ने ही मुझे दिया है
1: जी,
2: मेरा यह खूबसूरत परिवार।
1: वाह, बहुत खूब।
2: मुझे इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरा जो परिवार दिया है वो बहुत खूबसूरत परिवार है। मैं इसी से मैं काफी खुश हूं।
1: बड़ी खूबसूरत बात भाई, बड़ी खूबसूरत बात दोस्तों। सही बात है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सपोर्ट फंक्शन होता है वो होता है फैमिली, और वो फैमिली अगर बहुत प्यारी सी हो तो फिर बस

0: बहुत बढ़िया गोपाल जी, ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से सूट करता है, डिस्क्राइब करता है आपकी पर्सनालिटी को? कौन सा गीत है ऐसा?
1: अनुज जी, बचपन में तो मैं काफी चंचल था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट शांत स्वभाव का हो गया हूँ
0: जी।
1: आप लोग मुझे कूल पर्सनैलिटी के हिसाब से जानते हो और कम बोलने वाला।
0: ओ।
1: मैं बहुत बहुत ही मैं सुनने में मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ बोलने से, तो मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ आज के डेट में, इसलिए उस मेरे स्वभाव से अगर कुछ मैच करता आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा एक खामोश या आवाज है तुम सुनने को आओ, कभी छूकर तुम्हें खिल जाएगी, अगर इनको बुलाओ कभी बेकरार है। अरिजीत जी का कुछ सॉन्ग है ना कैसा?
0: अच्छा, ओ ओके ओके ओके ओके।
1: तो वही खामोश या आवाज है तुम सुनने को आओ भी, सुनने को आओ भी छूकर तुम्हें खिल जाएगी घर, ऐसी कुछ है
0: जी।
1: आएगी घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है, बात करने को कहने को इनको जरा खामोशिया करके ऐसा कुछ सॉन्ग है,
0: बहुत
1: तो आप उससे वो रिलेट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया गोपाल जी आपने। दोस्तों, गोपाल जी को ठीक ठीक पता है कि कौन सा गीत है जो उनकी शख्सियत को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर चलिए सुनते हैं एक और गीत गोपाल जी का ही।

0: गोपाल जी, क्या आपका कोई निकनेम है जो लोग आपको प्यार से बुलाते हो, हमें बताइए ना, और उसका मतलब क्या है?
1: समीर जी, एक्चुअली घर में, मेरे 3 सिस्टर बड़े थे, तो उस समय कल्चर जनरली बड़ा परिवार रहता था, तो
0: जी
1: 3 सिस्टर के घर एक लड़के के ख्वाहिश भी थी परिवार को, मतलब फादर मदर को, तो 3 सिस्टर के बाद मैं हुआ था। आप मान के लीजिए घर में कितनी खुशी हुई
0: आई
1: होगी
0: होगी।
1: जब
0: जी
1: मैं
0: जी
1: आया।
0: जी जी जी
1: तो उन्होंने मतलब सिंपली मुझे नन्ना नन्ना करके बोल दिया, नन्ना,
0: वहाँ
1: मतलब नन्ना बोलने का
0: छोटा
1: हिंदी नाम
0: मतलब।
1: जो है नन्हा, छोटा
0: जी
1: छोटा
0: जी
1: बोल सकते ना,
0: जी जी जी
1: तो वही नाम जो है मेरा आज निकनेम है,
0: बहुत
1: नन्हा,
0: बहुत सुंदर, नन्ना, बड़ा ही प्यारा निकनेम है
1: छोटा
0: साहब,
1: सा।
0: बहुत प्यारा निकनेम है, बहुत ही सुंदर हो दोस्तों, बड़ा ही प्यारा निकनेम है गोपाल जी का। तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं गोपाल जी की ही आवाज में।

0: गोपाल जी, अब हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं मैं जहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: हाँ, मैं सबसे पहले तो रेडियो तांडिया भील के टीम को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा कि उन्होंने जांबो की आवाज
0: जी
1: कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सब तक मेरी आवाज पहुंचा पाया सिंगिंग के माध्यम से। आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, थैंक यू सो मच। आपके गीत सुनकर, आपसे बहुत प्यारी बातें करके बहुत मजा आया। आप इसी तरह गाते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, थैंक यू।
1: थैंक यू समीर।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
3: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
4: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा क्यूट मासूम बेहद खूबसूरत एपिसोड लेकर दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं कुमार सुब्रमण्यन। आई स्वेयर, मुझे इस नाम को लेने में ही दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है, और आप जब कुमार साहब से सुनेंगे अपने उनके बारे में तो क्या बात है, बिल्कुल सोने पे सुहागा होने वाला है। कुमार साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए।
1: हमारे बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे हमारा आदर किया, हमारे गाने सुनने का मौका मिला जी, असल में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी।
0: वाओ, तो बस हमारे जितने भी सुनने वाले आज इकट्ठा हुए हैं ना आपको सुनने के लिए, थोड़ा सा उनसे बात कीजिए ना, अपने बारे में बताइए, कहाँ हैं आप, क्या करते हैं आप?
1: मैं एक्चुअली मैं आई एम रिटायर्ड फ्रॉम टाटा ग्रुप एंड नाउ आई एम परसुइंग माय पैशन फॉर म्यूजिक। इनफैक्ट म्यूजिक वाज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ राइट फ्रॉम माय इट वोंट बी एन एग्जैगरेशन टू से राइट फ्रॉम माय एज ऑफ 5-6 इयर्स, उस बचपन से मुझे संगीत म्यूजिक से बहुत ही शौक, बहुत ही लगन था। मेरा जो भी वॉट एवर विचर इज क्लोज टू माय हार्ट इज म्यूजिक, नथिंग एल्स।
0: ऑलराइट,
1: तो मैं उस जमाने से गाने में और इन म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट दिलचस्प रखता था मैं।
0: ब्यूटीफुल, आपने अभी अभी बताया कुमार भाई कि आप टाटा ग्रुप से रिटायर हुए, तो टाटा ग्रुप मतलब टाटा के पास तो बहुत कुछ है, गाड़ियों से लेकर नमक
1: तक। टाटा सर्विसेज लिमिटेड एट बॉम्बे हाउस इन देयर ग्रुप लीगल डिपार्टमेंट।
0: ओके, कैन वी से टीसीएस, मतलब
1: TCS ने टाटा सर्विसेज लिमिटेड एक दूसरा सेपरेट कंपनी था जो टाटा ग्रुप को पूरा वो लोग देवर कैटरिंग टू द नीड्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल लीगल एडवाइस इकोनॉमिक एडवाइस, ऐसा ऐसे कंपनी फॉर्म किए उधर।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूब, क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए पूछी कुमार साहब, आप कुछ और मत समझिएगा, क्योंकि हम सब
1: नहीं,
0: लोग
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: क्योंकि हम सब लोग ना टाटा को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, बहुत ही रिवर्ड कंपनी है, मतलब मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बंदे ने टाटा ज्वाइन किया और कभी छोड़ा हो, कभी नहीं, आई हैव नॉट हर्ड।
1: सही कहा आपने,
0: एक बार
1: आपने,
0: पता नहीं क्या कल्चर उन्होंने क्रिएट किया है कि
1: वो एक उनका एक ब्रांड एंड दैट वेरी रेस्पेक्टेड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट।
0: करेक्ट, I mean they the people love Tata. I mean I swear that.
1: right.
0: चलो दोस्तों, ये हैं कुमार साहब, और प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं पेश करता हूँ कुमार सुब्रमण्यन सर के गाए हुए ये गीत जो उन्होंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं।

0: ब्यूटिफुल, अमेजिंग।
1: आगे बढ़ते हुए कुमार साहब, बस इतना सा पूछना चाहूंगा आपको, हम कोशिश ये करेंगे कि आपको समझें और आपके संगीत को समझें, तो आपकी जिंदगी को समझ लेते हैं पहले, संगीत के ऊपर आ ही जाएंगे, आपके गाने हम सुन ही रहे हैं, मजा आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कुमार साहब, जिस वक्त आप छोटे बच्चे थे, अपने बचपन की कोई शानदार शैतानी, कोई शरारत याद है आपको, बताइए ना।
2: शानदार शैतानी तो मैं बहुत था अभी भी जरा जरा झलक झलक अभी भी झलक जरा है उसकी,
1: आपकी आवाज में सुनाई दे रही
2: है, बहुत मस्ती और बहुत सारे मजाक भी करता, नकल भी बहुत करते थे और मजाक बहुत करते थे। आई लाइक टू बी ऑलवेज ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड पीपल, आई लाइक दिट।
1: ओके, तो
2: लाइफ इज, लाइफ शुड बी, या
1: तो कोई शैतानी याद हो तो हमें बताइए ना।
2: शैतानी तो याद है, ऐसे कोई मेरे कोई रिलेटिव को मैंने फोन किया, फोन करके उनको जरा उसको जरा वो बताया कि अरे आप मुझे जानते हैं कि नहीं, आप मेरे बचपन के दोस्त है, तो ही कुडंट रिकलेक्ट इट एंड ही वाज यू नो, तो बहुत हंसी आ रहा था। फिर बाद में वो बहुत परेशान हो गया, घर पे आके बोला कि ऐसे एक लड़का, मैं कोई आदमी मुझे आज बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा बोलता है, मेरे बचपन से जानते नाम बोलता है। तो फिर बाद में आखिर में मुझे उनका सिचुएशन देखे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने बता दिया, मैंने बोल के आपको तो ऐसे बहुत मस्ती बहुत कर रहे थे हम।
1: दैट्स वेरी नाइस। तो देखिए, नहीं, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी यू नो, बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार्मलेस है। अगर आपने किसी को फोन किया और आपको लग रहा कि वो परेशान हो रहे हैं,
2: हमारे घर के रिलेशन अच्छे थे आदमी, तो आई नो दैट ही विल टेक इट स्पोर्टिंगली, सो दैट इज व्हाई आई
1: कॉल्ड। ये चीज का ख्याल,
2: आई वुड यू नो, नॉट टू एनी स्ट्रेंजर, नॉट लाइक दैट, ही इज नोन, वेरी नोन टू अस, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
1: तो दोस्तों, जस्ट इन केस कुमार साहब की बात सुनकर हमारे मन में ऐसा विचार आए, तो हमें ये चीज को चेक कर लेना चाहिए कि जिसके साथ हम ऐसा करने वाले हैं वो उस चीज को स्पोर्टिंगली लेगा या नहीं, है ना।
2: या ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी,
1: ये बहुत जरूरी है।
2: We should not hurt anybody's feelings or make him, may not give any mental agony to him. For the time being, okay.
1: Absolutely, absolutely. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीतों का आनंद उठाएं, कुमार सुब्रमण्यन साहब के ही गाए हुए, आइए सुनते हैं ये प्यारे से गीत।

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही सुंदर गायकी। कुमार साहब एक ट्रिक क्वेश्चन पूछूं आपसे?
1: हाँ जी जरूर।
0: लोग कहते हैं और हमेशा लिखा भी हुआ है हर जगह कि गलती से सीख लेनी चाहिए,
1: गलती से
0: सीख लेनी चाहिए ना, गलती से अगर हम गलती हो जाए तो हम लोगों को
1: जरूर जरूर यस यस
0: और गलती
1: आज भी मैं मानता हूँ
0: जी, और कहते हैं कि गलती करनी नहीं चाहिए।
1: सही बोला आपने।
0: तो जब गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे सर?
1: नहीं कोई बात नहीं, आप अगर आपकी इच्छा है वो तो है, लेकिन गलती किया नहीं करना चाहिए तो मैं सही बोला आपने, लेकिन गलती करने ये महसूस किया कि आपने गलती किया तो महसूस किया तो और उसको दोबारा नहीं करना चाहिए, ये बड़ी जिंदगी में बहुत बड़ी अच्छी चीज हम सीखना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली। तो कुमार साहब कभी ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल आप देख लेना, सुरक्षित तरीके से सेफ तरीके से ही हमें बताना। कभी ऐसी कोई गलती हुई जिससे आपने कुछ लेसन ले लिया और अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान बनाया?
1: हाँ वो तो हुआ है ऐसे, देयर आर मेनी इंसिडेंट्स देयर जहाँ पे मैं अपने आप को आ बैल मुझे मार ऐसा स्थिति में मैं ऐसा स्थिति में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ।
0: हाँ दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है, अननेसेसरली जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी वेल रिमेम्बर एक ये जो एनिमेशन मूवी आई थी जिसमें सिम्बा और मफूसा थे, उसमें मफूसा हुज अ फादर ऑफ सिम्बा वो कहते हैं बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन यू गो आउट एंड लुक फॉर ट्रबल। बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पंगा ले जाके। केयरफुल रहने में कोई बुराई नहीं है। चलिए
1: बुराई नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: आइए कुमार साहब की ही आवाज में गाए हुए ये गीत सुने और इसके बाद वापस आए कुमार साहब से ही बात करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल।
1: शुक्रिया।
0: कुमार साहब, चलिए अब आपके संगीत पर आते हैं।
1: हाँ जी,
0: अपनी पसंद के सबसे अच्छे, जो भी आपको बिल्कुल फेवरेट हो, एक एक जस्ट वन प्लीज, एक गायक का नाम बताइए। और हमें यह बताइए कि आपको पर्सनली किस तरीके का म्यूजिक पसंद है। चूज कीजिए, फोक म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में, बॉलीवुड में, गजल में, भजन में या रीजनल।
1: जी
0: सो आई हैव आस्क्ड यू टू क्वेश्चंस। पहला तो अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताइए।
1: वैसे तो फेवरेट सिंगर सभी है, बिकॉज उस जमाने के जो भी सिंगर थे सब लेजेंड्स, दे आर टेक्निकली वेरी साउंड इन देयर ओन वे। बट मैं जिससे ज्यादा प्रभावित हुआ, दो सिंगर थे, एक सिंगर का नाम लेना पड़ेगा ना आपको, तो एक ही
0: ओके, दो ले लीजिए,
1: वो जरा,
0: चलिए
1: बिकॉज दोनों दोनों मेरे दिल के
0: बहुत नजदीक
1: मूड के,
0: है।
1: एक एक एक एक मूड के लिए एक सिंगर इतना मेरे दिल में जमता है, और दूसरा मूड के लिए दूसरा सिंगर। तो पहला मेरा मोहम्मद रफी साहब, तो
0: ओके
1: जैसे आपने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक, मोहम्मद रफी साहब ऐसे सिंगर थे जो हर किस्म के गाने गाते थे। तो आई नॉर्मली प्रेफर टू सिंग ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, लाइक
0: वाह,
1: गजल, कव्वाली, क्लासिकल,
0: ओके
1: लाइट,
0: ओके
1: यू नो, मस्ती के गाने, ये सब गाना पेश भी किया हूं मैं,
0: ओके
1: कुछ प्रोग्राम में किया हूं मैं। तो सेकेंड आके तलत महमूद है मेरे,
0: ओ
1: जो दर्द को जो जानता है, द
0: ओके क्या
1: इंटेंस फीलिंग, दैट इज तलत महमूद।
0: बात है,
1: सो
0: क्या
1: इन
0: बात
1: दोनों
0: है,
1: मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है मुझे।
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जस्ट इन केस आप तलत महमूद साहब के साथ गाना गाने का आपको मौका मिले, वो अवतार ले लें, आपके पास आए कि चलो कुमार साहब गाना गाते हैं
1: बहुत बहुत क्या बात है
0: तो
1: एकदम
0: उनके साथ मिलकर कौन सा गाना गाना चाहोगे आप?
1: उनका गाना, बहुत सारे गाने हैं, तो उनका गाना मुझे अभी क्या बोलेगा, एक गाना है उनका खुद पर्दे में वो पेश आते हैं, शुक्रिया शुक्रिया ए प्यार तेरा।
0: ओहो वाह,
1: हाँ,
0: दैट इज सो ब्यूटिफुल।
1: दिल को कितना खूबसूरत गम दिया
0: हाँ,
1: शुक्रिया, दिल को कितना खूबसूरत गम दिया शुक्रिया,
0: क्या बात है, क्या बात
1: अनिल
0: है
1: बिश्वास जी का।
0: अरे वाह, मतलब बोल ही इतने प्यारे हो रहे हैं, दिल को इतना गम दिया उसका शुक्रिया। मतलब देखिए, जो बंदा आपको चोट पहुंचाता है उसको भी आप शुक्रिया कहते हैं।
1: उस पे भी वो मुस्कुरा कर कहता है शुक्रिया, कोई बात नहीं, हम आजमा लेंगे ये भी।
0: वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से ख्यालात के साथ ये गीत सुने कुमार साहब के, एंड देन विल कम बैक।

0: बहुत खूब।
1: कुमार साहब, हमें ये बताइए ना कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं? ग्रेटिट्यूड किस चीज की तरफ आपका सबसे ज्यादा होता है? किस चीज की तरफ आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए नहीं थकते?

0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बात करूं। तो चलिए दोस्तों, इसी विचार को विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये गीत पेश करता हूं कुमार साहब के ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर कुमार साहब, वक्त की पाबंदी, हमें सब लोग को बंधे रहना पड़ता है, तो बस
1: हाँ जी
0: चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए जो भी आपके मन में आए कह दीजिए, बात कीजिए उनसे।
1: मेरे सुनने वाले प्यारे संगीत प्रेमियों, आप सबके शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप हमारे गीत सुन के आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसा मुझे मैं उम्मीद करता हूँ। और धन्यवाद एसएन रेडियो और समीर जी को और सभी उनकी टीम को, उन्होंने मुझे एक बेहतरीन मौका दिया आज इस मंच में खाने के लिए, शुक्रिया जी।
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप मिले कुमार सुब्रमण्यन साहब से, उनके प्यारे गीतों का लुत्फ उठाया। कुमार साहब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और हमेशा गाते रहिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज, इतनी अच्छी आज की सुबह एकदम यादगार, जिंदगी का यादगार घड़ी होगी मेरे लिए।
0: वाओ, थैंक यू।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, आइए मित्रों, आइए महानुभावों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के इस पवित्र और बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में। जैसा हम हमेशा करते हैं, ये प्रोग्राम है अपने अंदर झांकने का, अपने को पहचानने का, आध्यात्म को समझने का। तो आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, वो हैं सुनीता मैम। मैं सुनीता मैम का बहुत बहुत आभारी हूं, साधुवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि सुनीता मैम अपने बारे में हमें बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
1: जी नमस्ते समीर जी, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया आपके प्रोग्राम पे और ये मेरी खुशनसीबी। मेरा नाम सुनीता हरगुनानी है, मैं बेसिकली हीलर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर
0: जी।
1: और मैं काफी रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और आकाशिक हीलिंग भी आती है मुझे, करुणा रेकी, आकाशिक हीलिंग एंड पास्ट लाइफ के बारे में भी, मतलब रिग्रेशन जो बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी मुझे आता है। तो बेसिकली ये सब एक इसी लाइन में ही डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी में
0: जी।
1: और ऑटोमेटिक राइटिंग भी मुझे आती है एंड लाइक सोल से कनेक्ट करना भी आता है
0: जी।
1: तो ये सब अलग अलग पार्टी हैं इसी लाइन के और मैं प्रैक्टिस करती हूँ काफी टाइम से। अब तो मुझे मेरे ख्याल से 15 साल हो गए,
0: जी
1: ऊपर ही हो गए होंगे तो बस।
0: बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों आपने जाना कि सुनीता मैम बेसिकली एक हीलर हैं, एक चिकित्सक हैं। चिकित्सक मतलब वो जो हील करते हैं, जो हम लोगों को उचित बनाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं। बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, जाहिर सी बात है जब आप हील करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मानसिकता के लिए कोलैबोरेट करते हैं, तो बात जिस विषय में हो रही है इस प्रोग्राम में, मैं उस विषय में आपसे पूछना चाहूंगा। बात आध्यात्मिकता की है, स्पिरिचुअलिटी की है और जैसा मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड है। तो आपके हिसाब से, आपके परसेप्शन से, आपकी समझ से आध्यात्म की क्या परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी?
1: स्पिरिचुअलिटी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इट्स अ पाथ। तो इसमें ये रहता है कि आप अपने आप पे काम करते हैं, मतलब कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आता है
0: जी।
1: तो जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, दिस ये एक पार्ट हो गया आपका स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। ये तो मतलब बहुत लंबी यात्रा रहती है, लंबी जर्नी है। तो ये तो जस्ट एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रही थी कि जब हम खुद ये सोचना या कॉन्शियस होते हैं कि अवेयरनेस होता है हमारे अंदर, बिकॉज यूजुअली लाइफ में क्या भाग दौड़ चलती रहती है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन सबका चलता ही है
0: जी।
1: इसके ओवर एंड अबाउट दैट जब आपको लगता है कि नहीं हमारे ऊपर भी कुछ पावर है, कुछ शक्ति है
0: जी,
1: तो उस शक्ति से जब हम जानना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में हम कोशिश करना चाहते हैं जुड़ने की, तो ये एक चलने लगे हम स्पिरिचुअल पथ पे। तो यही मेरे हिसाब से तो यही है कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लाइफ लॉन्ग तो क्या मतलब लाइफ की जर्नी रहती है स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली हमारा सोल इसीलिए ही जन्म लेता है ताकि हम अपने आप पे काम करते रहें। मेन पर्पस तो हमारा सोल का वही रहता है
0: जी।
1: आत्मा का, कि आत्मा की शुद्धि हो और उसी पे ही कैसे हम अलग अलग अपने विकार जो है वो नष्ट करते जाएं,